ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है, एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 10वीं तिथि, तदनुसार 31 मई सन 2026। इस समय सुबह के 5:57 हुए हैं। हमारी आज की पहली सभा आरंभ होती है।

0: FM बैंड 102.1 MHz पर ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे, प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा

0: करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया। डी के शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकार ने पहली जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क से अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार ये फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीपी ग्रैम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
1: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 200,000 शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25-30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काई का सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काई कास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की आईएसआई और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम करने वाले 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ला ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमा के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मेजबान इंग्लैंड ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच में भारत को 26 रन से हरा दिया। ब्रिस्टल में कल इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बनाए। जवाब में भारत की टीम 9 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। इंग्लैंड की फ्रिया कैंप को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने केवल 13 गेंद में 39 रन की शानदार पारी खेली। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच मंगलवार को टोंटन में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: यह है विविध भारती।

आज का चिंतन। महर्षि दयानंद सरस्वती का ये विचार है कि अज्ञानी होना गलत बात नहीं है, पर अज्ञानी बने रहना हमारी सबसे बड़ी भूल है। ये था आज का चिंतन। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए झरोखा के अंतर्गत सुनिए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। झरोखा के ठीक बाद यानी कि 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान भाग 205। सुबह 6:45 पर कार्यक्रम संगीत सरिता विविध भारती के खजाने से, इसके अंतर्गत गायिका आशा भोसले से की गई बातचीत आपको सुनवाई जाएगी। सुबह 7:00 का समय है भूले बिसरे गीत कार्यक्रम का, 7:30 पर हम है राही प्यार के। सुबह 8:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम त्रिवेणी और 8:30 पर चित्रलोक कार्यक्रम। सुबह 9:30 पर कार्यक्रम होगा आज के फनकार, जो केंद्रित होगा संगीतकार अनिल बिस्वास पर। सुबह 10:00 आप सुनेंगे पिटारा के अंतर्गत बॉम्बे टॉकीज, इसमें सुनिए अभिनेत्री साधना सिंह से विधि जैन की बातचीत। सुबह 11:00 माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात। प्रसारण समय याद रखिए 11:00 कार्यक्रम मन की बात। दिन में 12:05 पर कार्यक्रम यादों की महफिल। एक बजे का समय है कार्यक्रम सुरीला सफर के लिए और 2:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम त्रिवेणी। सदा बहार नगमे ये कार्यक्रम सुनिए दिन में 2:30 पर और दिन में 3:00 आप सुनेंगे मन चाहे गीत। नाट्य तरंग, इस कार्यक्रम में नाटक अग्नि चक्र का दूसरा भाग सुनिए। मूल मलयालम लेखक हैं सी एल

जोस हिंदी नाट्य रूपांतरकार हैं पीजी वसुदेव और निर्देशक हैं भारत रत्न भार्गव। इस कार्यक्रम का प्रसारण समय दिन में 3:30 पर। शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत उजाले उनकी यादों के सुनिए कवि प्रदीप की सुपुत्री एवं चित्रकार मितुल प्रदीप से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग। शाम 5 बजे कार्यक्रम होगा छाया गीत और 5:30 पर तराने नए पुराने। शाम 6:35 पर कार्यक्रम होगा संध्या रंजन और 6:45 पर कार्यक्रम संगीत सरिता। शाम 7 बजे कार्यक्रम होगा विशेष जयमाला, सुनिए सैनिकों की शौर्य गाथा। इसके अंतर्गत महावीर चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट जनरल जोरवर चांद बख्शी की शौर्य गाथा आपको सुनवाई जाएगी। शाम 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत साज और आवाज। 8 बजे कार्यक्रम होगा हवा महल, सुनिए नाटिका मूड। इसके लेखक और निर्देशक हैं गंगा प्रसाद माथुर। रात 8:15 पर कार्यक्रम होगा चित्रलोक और रात 9 बजे कार्यक्रम आपके लिए। रात 9:30 पर कार्यक्रम आज के फनकार, ये कार्यक्रम केंद्रित होगा फिल्मकार राज खोसला पर। रात 10 बजे कार्यक्रम होगा छाया गीत, 10:30 पर कार्यक्रम ढलती जाए रात और 11 बजे कार्यक्रम विविधा। झरोखा के अंतर्गत ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, प्रस्तुत है रामचरितमानस गान भाग 205।

भरत जी को चित्रकूट के मार्ग पर अग्रसर होते देख देवराज इंद्र के मन में जो सोच और चिंता हो गई थी, देवगुरु बृहस्पति के शीतल वचनों से उसका शमन हो जाता है। यमुना तट पर पहुंच प्रेम विवल भरत की आंखों में प्रेम और व्यथा के आंसू उमड़ आते हैं। श्री राम के विरह रूपी सागर में डूबते उतराते उनका विवेक जागृत होता है कि शीघ्र ही उन्हें अपने आराध्य के दर्शन होंगे। निषाद राज की सेवा और सहायता से उन्हें पूर्ण संतोष मिला है। मार्ग में जहां जहां श्री राम सीता तथा लक्ष्मण ने विश्राम किया था, उन स्थानों को वो श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हैं। आसपास के गांवों के स्त्री पुरुष भरत का रूप और भ्रातृ प्रेम देख परम आनंदित हैं।

0: मित्रों नमस्कार। संगीत सरिता में आज विविध भारती के खजाने से हम चुन लाए हैं ऐसा नायाब हीरा जिसकी रोशनी से, या कहें कि जिसके अलग अलग पहलुओं से उठती किरणों से हम सभी की आंखें चकाचौंध हैं। ये कार्यक्रम वर्ष 1982 में पहली बार प्रसारित किया गया था। आइए उस दिन को ताजा करें। संगीत सरिता कार्यक्रम की संकेत धुन वही जो 1982 में हुआ करती थी और उद्घोषणा भी उसी दिन की। आइए सुनते हैं।
1: ये आकाशवाणी का पंचरंगी कार्यक्रम है विविध भारती। संगीत सरिता। आज आप सुनेंगे हमारा संगीत सरिता का विशेष कार्यक्रम। आज हम आपको मिलवाते हैं सुप्रसिद्ध गायिका आशा भोसले से। भेंट कर रही हैं डॉक्टर अचला नागर।

0: है कि इसके पीछे शास्त्रीय संगीत की लंबी साधना रही है। क्या सच है?
1: साधना साधना तो है, लेकिन ज्यादा अगर क्लासिकल हम बहुत ज्यादा रियाज करें, जैसे कि क्लासिकल सिंगर करते हैं, यानी 8-8 घंटे तक गाना, अगर इतना रियाज अगर सुगम संगीत वाले करें तो उनके आवाज में वो लोच और एक मुलायम जो होती है मुलायमियत, वो रहती नहीं है। इसलिए हमें उतना रियाज नहीं करने दिया गया, लेकिन हमने रियाज किया है। रियाज यानी सुबह बहुत जल्दी उठना अंधेरे में और खर्च लगाना, उसके बाद 1 घंटे तक कम से कम हम लोग, मतलब मैं रियाज करती थी।
0: तो आपको मतलब घर में ही किसी से शिक्षा मिली या?
1: जी हाँ, मेरे पिताजी, मैंने आपको मालूम ही होगा
0: जी, हाँ,
1: दीनानाथ मंगेशकर जी क्लासिकल सिंगर थे, उनसे हमें थोड़ा बहुत सीखने को मिला, क्योंकि मेरी बदकिस्मती से बहुत जल्दी, मैं छोटी थी जब वो चल बसे। उसके बाद मैं मास्टर नवरंग जी से गाना सीखती रही और व्यास संगीत विद्यालय की मैंने 4 किताब की परीक्षा भी दी है। अब वो किताबों की जो परीक्षा दी थी, अब मुझे वो सब याद नहीं है। और उसके बाद बड़े गुलाम अली खान साहब, इनका आईना बालम, ये गाना मैं कॉपी किया करती थी।
0: अच्छा,
1: मुझे उनका गाना बहुत बहुत ज्यादा पसंद है। और नजाकत सलामत, इतना हर तरह से बेहतरीन गाना, बहुत मुश्किल होता है मेरी नजर में, बहुत बड़े क्लासिकल सिंगर हैं वो।
0: अभी आपने बहुत चोटी के संगीतकारों के कुछ के नाम लिए आशा जी, तो मैं ये आपसे सवाल इसलिए करूं, इसलिए नहीं कि आप क्लासिकल की बहुत जानकार है, मुझे मालूम है आप संगीत के कलाकार हैं, लेकिन एक श्रोता तो ही, स्वरों का आपको ज्ञान है। ये जो खान साहब की, गुलाम अली खान साहब की जो आवाज थी, उसकी क्या चीज आपको अपने मतलब व्यक्तिगत रूप से आपको क्या पसंद थी?
1: देखिए, एक तो संगीत के लिए, गाने वाले के लिए पहली चीज चाहिए वो आवाज और सुर, तान स्पष्ट, और जो बोल है, अगर वो ठुमरी गा रहे हैं तो वो बोलों की अदायगी क्लासिकल गाते हुए भी, तान लेते हुए भी इतनी अच्छी करते थे कि वो मन को लग जाती थी। बचपन से मुझे, मैं छोटी थी तब, तो उनके मैं गाने सुनती थी, तो मुझे यही लगता था कि इनकी मींड उतनी ही अच्छी है, उतनी तान भी स्पष्ट है, छोटे कण कण दिखा के वो चीज को लेते थे। वैसे नजाकत सलामत, उनके जितना फास्ट तान मैंने आज तक सुनी नहीं, इतनी फास्ट तान, और सरगम उतनी ही उनकी फास्ट थी, और जब वो स्लो गाते थे तब भी उनका संतुलन आवाज का, और तान जब फंस जाते थे तब का, वो कमाल का था मेरी नजर में, एक आर्टिस्ट की नजर में।
0: हाँ जी, वैसे देखिए ये बिल्कुल स्पष्ट है कि शास्त्रीय संगीत और हमारा फिल्म संगीत दो अलग अलग चीजें हैं, और दोनों को मिलाने की कोशिश करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों की अपनी अपनी एक अहमियत है, महत्व है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि हमारे जिन कुछ फिल्मी गानों में शास्त्रीय संगीत का पुट दिया गया है, वो सालों साल वैसे ही ताजा रहते हैं, सुनते हैं तो तब ऐसा लगता है कि कानों को वैसे ही मीठे लगते हैं। तो ये बताइए कि शास्त्रीय संगीत का उपयोग कहाँ तक फिल्मी गानों में किया जा सकता है?
1: पहली बात तो ये है अचला जी कि शास्त्रीय संगीत से हर गाना बनता है। शास्त्रीय संगीत नींव है, फिर इमारत खड़ी रहती है। तो आप कोई भी गाना लीजिए, उसमें शास्त्रीय संगीत होना बहुत अच्छा लगता है। अब जैसे आप कहती हैं कि शास्त्रीय सुगम संगीत में शास्त्रीय संगीत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है कि अगर आप एक शुद्ध राग रखेंगे तो वो एक जैसा लगेगा। जैसे मालकंस का गाना, अगर आप 4 गाने बनाएंगे तो एक जैसा लगेगा।
0: अच्छा।
1: क्योंकि वो जो सुर हैं वो ही रहेंगे, इसीलिए वो एक जैसा। लेकिन उसमें अगर दूसरे सुर मिलावट करेंगे तो वो थोड़ा अलग लगेगा और अच्छा लगेगा। और फिल्म के लिए बहुत जरूरी है कि राग में मिलावट करें, और बहुत खूबसूरती से मिलावट करें तो बहुत अच्छा लगता है।
0: मतलब ये कि ज्यादा उसमें अलाप और मुर्कियां और हरकतें, ये
1: नहीं, हरकतें मुर्कतें सब हो।
0: हाँ।
1: लेकिन एक राग की, जैसे 7 सुर, एक कोई भी राग लीजिए आप, अगर वही सेम राग में अगर आप 10 ट्यूने बनाएंगे तो वो एक जैसी लगेंगी।
0: अच्छा।
1: इसीलिए मिलावट करने से वो अलग अलग लगेंगी और अच्छी भी लगेंगी।
0: एक सवाल है तो बहुत साधारण, लेकिन आपके मुंह से ही इसका हम उत्तर सुनना चाहते हैं कि जैसे कि नियमित रूप से किसी का पेशा है गाने का, वो रोज गाता है, गाया आके वापस लौटा है, लेकिन उसके लिए भी क्या जरूरी है कि वो तानपुरा छेड़े और आवाज को खोले, रियाज करे?
1: जी हाँ, मैं आपको बताती हूँ, जो भगवान ने दी हुई आवाज होती है

नमस्कार श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में। मैं हूं मंजू द्विवेदी। पहला जो गीत है ये किस्मत फिल्म का गाना अमीर भाई कर्नाटकी और अरुण कुमार की आवाजों में, कवि प्रदीप का लिखा हुआ गाना, संगीत अनिल बिस्वास का। आज इन गीतों के माध्यम से संगीतकार अनिल बिस्वास को उनकी पुण्यतिथि पर हम याद कर रहे हैं।

0: मैं अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए
3: भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं ज्वार भाटा फिल्म का ये गाना। अरुण कुमार और साथियों की आवाजें, नरेंद्र शर्मा का लिखा हुआ गाना, संगीत अनिल बिस्वास का।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो, बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। अगला जो गीत है ये

बेकसूर फिल्म का ये गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में गाने अभी और भी सुनवाना बाकी है, लेकिन अभी इस वक्त कार्यक्रम में समय हो चला है एक अंतराल का।

मजरू सुल्तानपुरी का लिखा और अनिल बिस्वास का संगीत बद्ध किया। ये गाना गीता रॉय की आवाज में, फिल्म का नाम है हीर।

0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल लगवे।
1: तेरा जवाब नहीं।
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
1: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
1: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए छोटी छोटी बातें। इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। इस गीत को लिखा शैलेंद्र ने, धुन बनाई अनिल विश्वास ने।

कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना लता मंगेशकर की आवाज, प्रेम धवन के बोल, अनिल विश्वास का संगीत, फिल्म का नाम राही।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।
3: विविध भारती से कार्यक्रम जारी है हम है राही प्यार के। धर्म करम इस फिल्म का गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में, मजरू सुल्तानपुरी की बोल, संगीत है आरडी बर्मन का।

अंतराल के बाद हम हाजिर हैं हम है रही प्यार के इस कार्यक्रम के बाकी गानों के साथ। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में एम जे हशमत का लिखा हुआ गाना, शंकर जयकिशन का संगीत, फिल्म का नाम दो झूठ।

मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में लीजिए अब सुनिए मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गाना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, फिल्म का नाम है नाच उठे संसार।

एक महल हो सपनों का, इस फिल्म का गाना मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में, सही लुधियानवी के बोल संगीत रवि का। यह है कार्यक्रम का

0: ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है FM बैंड 102.1 MHz पर। सुबह के 8 बजने को हैं कुछ देर में हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे, प्रतीक्षा कीजिए।
1: घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में दुबके रहने को किया था मजबूर। म्यांमा के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे, कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया

कल से लागू। मौसम विभाग का बुधवार तक केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा।

0: कार्यालय तथा सूचना प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: हमारी सेनाओं ने सटीक हमले करके पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया। हमारी आर्मी और एयरफोर्स ने तो अपनी भूमिका निभाई ही, लेकिन जो भूमिका हमारी नेवी ने निभाई वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हमारी नेवी पूरी ताकत के साथ अरब सागर में उस समय मौजूद, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा, और इसी का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की पूरी नौसेना डरकर अपने बंदरगाहों में दुबक कर बैठ गई।
0: शौर्य वाटिका खुले में बनाया गया नौसेना संग्रहालय है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने युद्ध के लिए तत्परता, सैन्य संचालन तथा प्रतिरोधी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमा के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमा के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। म्यांमा के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वे व्यापारिक मंच में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया था। डॉ डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने कल से शुरू हो रहे पखवाड़े के लिए पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच घरेलू स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
2: सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल के निर्यात पर अब 1.50 रुपए प्रति लीटर और डीजल के निर्यात पर 13.50 रुपए प्रति लीटर का शुल्क लगाया जाएगा। वहीं विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क 9.50 रुपए प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सड़क तथा अवसंरचना उपकर सहित निर्यात शुल्क 27 मार्च से लागू किए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन की औसत कीमतों के आधार पर प्रत्येक पखवाड़े इनकी समीक्षा की जाती है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। संशोधित निर्यात शुल्क कल से लागू होंगे और 15 जून तक लागू रहेंगे। विष्णु पीएस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काईकास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। सरकार ने पहली जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार यह फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म

0: लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन एक दिवसीय दौरे पर आज केरलम पहुंचेंगे। वे कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की आईएसआई और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम कर रहे 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष शाखा के विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ल ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था।
1: कुछ जगहें थी मुंबई में, कुछ रेलवे स्टेशन की इन्होंने सर्वे किया था, रेकी की थी। कुछ मुंबई के पार्क्स थे, पब्लिक पार्क, उसके अलावा कुछ ब्रिजेस थे जिसकी वीडियोस और फोटो इन्होंने ली हुई हैं, जो इन्होंने शेयर की हैं ऑन द अदर साइड। उसके अलावा दिल्ली में कुछ सरकारी भवन, कुछ गैर सरकारी और कुछ पब्लिक प्लेसेस, हाई फुटफॉल एरियाज और सिक्योरिटी पर्सन को हिट करने के लिए, ऐसा उनका प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन से पता चला।
0: कोलंबिया में आज राष्ट्रपति चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान होना है। कुल 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। उम्मीदवार को पहले ही चरण में जीतने के लिए 50% से अधिक वोट हासिल करने होंगे। यदि कोई उम्मीदवार ये आंकड़ा नहीं छू पाता है तो सबसे अधिक वोट पाने वाले दो उम्मीदवारों के बीच 21 जून को दूसरे चरण का चुनाव कराया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसस ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य युगांडा में इबोला के प्रकोप के कारण यात्रा प्रतिबंध लगाने तथा सीमाएं सील करने वाले देशों से अपने इन फैसलों पर दोबारा विचार करने का आग्रह किया है। उनका मानना है कि इस तरह के कदमों से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में रुकावट आ सकती है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन तंबाकू के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण वैश्विक पहल का हिस्सा है। इस वर्ष का विषय है अपील का अनावरण, निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना। महाराष्ट्र के पुणे में जहरीली शराब से मृतकों की संख्या 21 हो गई है। इनमें से 7 लोग पुणे और 14 लोग पिंपरी, चिंचवाड़ा तथा उरुली कांचन क्षेत्रों के थे। इस मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रशासन ने लापरवाही के आरोप में 22 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इनमें 9 पुलिसकर्मी और राज्य आबकारी विभाग के 13 अधिकारी शामिल है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ है आनंद पाठक।
2: खेलों में आज की सबसे बड़ी खबर आईपीएल 2026 के फाइनल से जुड़ी है। अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। ये मुकाबला शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस सीजन में गुजरात टाइटंस ने इसी मैदान पर आरसीबी को मात दी थी, लेकिन बेंगलुरु की टीम भी आत्मविश्वास से लबरेज है। पिछले वर्ष इसी मैदान पर अपना पहला आईपीएल खिताब जीतने वाली आरसीबी ने इस बार भी शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल

0: बाजी ने विपक्षी टीमों के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं। दूसरी ओर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस ने लीग चरण में शीर्ष दो में स्थान बनाया और पहले क्वालिफायर में मिली हार के बाद शानदार वापसी करते हुए फाइनल का टिकट हासिल किया। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आईपीएल 2026 की ट्रॉफी आखिर किस टीम के हाथों में जाएगी। और अब बात महिला क्रिकेट की। ब्रिस्टल में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में बराबरी कर ली है। और अब बैडमिंटन से एक अच्छी खबर है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स फाइनल में आज भारत की स्टार जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोहिबुल फिक्री और फजर आल्फियान की जोड़ी से होगा।
1: केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में बुधवार तक तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी कल तक तेज वर्षा की आशंका जताई है। पूर्वी राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में कुछ स्थानों पर आज बारिश के साथ बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में कल तक कुछ स्थानों पर बिजली गिरने और आंधी चलने की आशंका है। कोंकण और गोवा में आज गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। अगले दो दिन में राजस्थान में कुछ स्थानों पर आंधी आ सकती है। उधर केरलम में आज 6 जिलों में वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: धन्यवाद लवलीन। डीके

0: शिव कुमार को कर्नाटक में विधायक दल का नेता चुने जाने की खबरें सभी अखबारों में हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है, निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने उनके नाम का प्रस्ताव किया। पत्र लिखता है कि वे 3 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का ये कहना कि भारत शक्तिशाली, अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है, जनसत्ता सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने उनके हवाले से लिखा है कि अमेरिका ने भारत की क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए सह उत्पादन की प्रतिबद्धता जताई है। उत्तर भारत में आंधी बारिश, राजस्थान में बवंडर, अमर उजाला ने इसे सचित्र देते हुए लिखा है, राजस्थान में 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से उठा रेतीला तूफान। दैनिक भास्कर ने भीषण गर्मी और सूखे की आशंका के बीच इस चिंता को दिया है कि जलाशयों में संकट उत्पन्न हो रहा है, 22 दिन में 12% घटा पानी। पत्र के अनुसार पानी की कमी की सबसे भयावह तस्वीर दक्षिण भारत के राज्यों में है। ईरान और अमेरिका तथा इसराइल के बीच युद्ध विराम को लेकर किसी सहमति पर न पहुंचने को लेकर दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है कि ये गतिरोध विश्व अर्थव्यवस्था के लिए नासूर बन गया है। अब ये गतिरोध रुकना चाहिए क्योंकि पश्चिम एशिया संकट विश्व के करोड़ों लोगों को प्रभावित कर रहा है। लोगों के रोजी रोटी पर ही संकट नहीं है, वे गरीबी के दुष्चक्र में भी फंस रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित CUET UG में तकनीकी गड़बड़ियों के कारण परीक्षा में हुई देरी की खबरें सभी अखबारों में हैं। राजस्थान पत्रिका ने इस संबंध में एजेंसी द्वारा माफी मांगने को प्रमुखता से दिया है। IPL के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच होने वाले फाइनल पर नवभारत टाइम्स लिखता है, घर गुजरात का, दिलों पर RCB का कब्जा। बच्चों पर सोशल मीडिया के बढ़ते असर को हिंदुस्तान ने चिंताजनक बताते हुए लिखा है कि 9 से 17 वर्ष के 49% बच्चे 3 घंटे से ज्यादा समय सोशल मीडिया पर बिताते हैं, जो उन पर बुरा असर डालता है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में दुब के रहने के लिए किया था मजबूर। म्यांमा के राष्ट्रपति उमिन नाउलाइन 5 दिन के भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल डीजल विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। और IPL क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM बैंड 102.1 MHz पर ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है। अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत। यह प्रोग्राम का पहला गीत आवाज लता मंगेशकर की फिल्म का नाम जुर्माना।

बरसात की रात, अभी आपने इस फिल्म का ये गीत सुना। आवाजें थी मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की। इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। आवाज है मन्ना डे की, फिल्म का नाम है सफर। लीजिए सुनिए ये गीत।

ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। कुछ देर में आप सुनेंगे प्रोग्राम नमस्कार, प्रतीक्षा कीजिए।

सारे दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, ये ही तो आपका भ्रम है। जबकि हकीकत तो ये है श्रोताओं कि मन प्रसन्न रखो, सारे दुख अपने आप दूर हो जाएंगे।

जी हाँ श्रोताओ, इसीलिए कहते हैं कि जो संदेह है मुसीबत के पहाड़ों का निर्माण करता है और विश्वास पहाड़ों में से भी रास्ते का निर्माण करता है। तो देख लीजिए कि अगर मन प्रसन्न है तो आपके दुख दूर हो जाते हैं, और संदेह अगर आपके जीवन में है तो उससे मुसीबत के पहाड़ जो हैं वो बन जाते हैं। लेकिन अगर आप रखते हैं विश्वास अपनों पे तो पहाड़ों में से भी रास्ते जो है अपना निर्माण कर

जी श्रोताओ नमस्कार के आगाज के साथ पूरी टीम है तैयार, तो आइए करवा देते हैं आपका परिचय आज की टीम से। चलिए श्रोताओं ले चलते हैं आपको टेक्निकल डिपार्टमेंट की तरफ और आपको बताते हैं कि एचपीटी पर हमारे साथ हैं विक्रम सिंह भाटी और प्रकाश पवार। एफएम पर हमारा साथ दे रहे हैं सीएल सोनी।

अनाउंसर ऑन ड्यूटी हैं सोनिया देवड़ा और हिना खान। श्रोताओं, हमारे प्रोग्राम की थीम तैयार की है हमारे प्रोग्राम प्रोड्यूसर संजय व्यास ने। श्रोताओं, प्रोग्राम में कोऑर्डिनेशन है राजेश लामरोड का। पूरी टीम के साथ मैं हूं सीमा शर्मा।

0: चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
1: सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
2: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु
1: कमला नगर अस्पताल, फाल लिंक रोड, जोधपुर।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

श्रोताओं, कई बार हम कुछ ऐसा काम कर देते हैं और उसे छुपाने के लिए झूठ का सहारा ले लेते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि झूठ के पांव नहीं होते। और कितना झूठ बोलेंगे, ये जो चीज़ें अगर हमारी हैबिट में हो जाती है तो ये भी हमारे व्यक्तित्व को एक गलत दिशा दे देती है। तो कुछ ऐसी ही बात थी, एक बार चार दोस्त थे, कॉलेज में थे और काफ़ी देर तक पार्टी वार्टी करते रहे और खूब मौज मस्ती उन्होंने की। अगले दिन उनका एग्ज़ाम था जिसकी उन्होंने बिल्कुल भी चिंता नहीं की और पढ़ाई भी नहीं की। श्रोताओं, जब सुबह उन्होंने परीक्षा से बचने के लिए बात सोची तो उन्होंने एक प्लान बनाया। उन्होंने अपने शरीर पर खूब सारा तेल मिट्टी लगा ली और पहुंच गए डीन साहब के ऑफिस। वहां पहुंचकर उन्होंने कहा कि वे पिछली रात एक शादी में गए थे और वापस आते समय उनकी गाड़ी का जो टायर था वो पंचर हो गया था, इसलिए उन्हें गाड़ी को धक्का देकर कैंपस तक लाना पड़ा। श्रोताओं, जो डीन साहब थे उन्होंने उनकी दुख भरी कहानी सुनी और फिर विचार किया। उन्होंने उन्हें 3 दिन बाद पुनः परीक्षा देने का जो प्रस्ताव था वो दे दिया। चारों दोस्तों ने डीन सर को धन्यवाद दिया और प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अब क्या था, अब आ गए कॉलेज और कॉलेज से घर और परीक्षा की तैयारी करने लगे। जिस दिन परीक्षा का दिन आया, आकर वो डीन साहब के पास गए तो डीन सर ने परीक्षा के लिए उन सभी को सबसे पहले तो अलग अलग कमरों में बिठा दिया। उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि उन्होंने खूब पढ़ाई अब तक कर ली थी। श्रोताओं, फिर उन्होंने परीक्षा पत्र जब देखा तो उसमें केवल 2 ही प्रश्न थे। क्या आप जानते हैं कि ये 2 प्रश्न कौन से थे? जी हां श्रोताओं, उसमें 2 ही प्रश्न थे। पहला था आपका नाम, जो कि था 1 नंबर का, और दूसरा जो प्रश्न था वो मल्टीपल चॉइस

टाइप था, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न था, जिसमें ये पूछा गया था कि कौन सा टायर फटा, और ये था 99 नंबर का। जी हाँ, जिसमें विकल्प ये दिए गए थे, ए में दिया था बायां आगे का टायर, बी दायां आगे का टायर, सी बायां पीछे का टायर, और डी जो था दायां पीछे का टायर। तो ये जो चीज़ें हैं श्रोताओं की, इस बात से जो डीन साहब थे उन्होंने सच को समझ लिया था कि क्या असली कहानी है। तो हमें यही समझने को मिलता है, यही सीख मिलती है कि झूठ का सहारा जो है वो कभी भी काम नहीं आता। आप अपनी सच्ची बात रख दें, हमेशा जिम्मेदार रहें, समझदारी से निर्णय लें और फिर झूठ को साइड में कर दें और फिर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, क्योंकि झूठ का सहारा जो है वो कभी भी काम नहीं आता है श्रोताओं।

0: प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायक हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
1: RGHS व चिरंजीवी योजना के अंतर्गत निःशुल्क ऑपरेशन, पथरी मतलब विनायक हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।
2: चाहे गर्मी हो या जाड़ा, इलाज हो हर मौसम में प्यारा। इस गर्मी से घबरा कर अपनी आँखों की सर्जरी ना टाले, विजिट डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।

ये शो तो हर दिन अपने साथ कुछ यादें लाता है, कुछ उपलब्धियां लाता है और लाता है कुछ ऐतिहासिक घटनाएं। और ये बात सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि अब हम क्या करने वाले हैं। जी हाँ, आइए समय के पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं कि आज के दिन के इतिहास में क्या क्या खास हुआ था।

जी श्रोताओं, समय की गाड़ी को थोड़ा पीछे ले चलते हैं और देखते हैं कि आज के दिन के इतिहास में क्या दर्ज है। जी हाँ, 1774 में भारत में पहला डाक सेवा कार्यालय खोला गया था। 1867 में बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। 1964 में बंबई में इलेक्ट्रिक ट्राम जो थी वो अंतिम बार चली थी श्रोताओं। और 31 मई 1994 में दक्षिण अफ्रीका गुट निरपेक्ष आंदोलन का 109वां सदस्य राष्ट्र बना था। 31 मई 1996 की अगर हम बात करते हैं तो बेंजामिन नेतन्याहू इसराइल के नए प्रधानमंत्री बने गए थे श्रोताओं। एडोल्फ ट्यूटर

स्लोवाक गणराज्य के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए कृष्ण प्रसाद भट्टराई द्वारा नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण हुई थी 31 मई 1999 को। और श्रोताओं, 2001 में मानवाधिकार आयुक्त रॉबिन्सन का कार्यकाल बढ़ा था। पूर्व सोवियत देशों का राष्ट्रकुल शिखर सम्मेलन मिस्क यानी बेलारूस में सम्पन्न हुआ था 31 मई 2001 को। श्रोताओं, 2007 में सैप ब्लेटर तीसरी बार अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संघ के अध्यक्ष बने थे। और 31 मई 2010 में, जी हां, भारत में मान्यता प्राप्त हर प्राइवेट स्कूल में गरीब बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित करने का कानून बनाया गया था।

जी श्रोता, हम देख रहे हैं कि मौसम जो है वो हर दिन अपने मिजाज बदल रहा है और जैसे जैसे मौसम बदल रहा है चीज़ों की परेशानियां जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, लोगों में आने जाने में असुविधा भी हो रही है। लेकिन यहाँ हम आपको एक बात बताएंगे जो खास बात बन जाती है, क्योंकि आज भी 11 शहरों में अलर्ट जारी किया गया है। मौसम केंद्र के अनुसार अलवर, भरतपुर, दौसा, डीग, धौलपुर, झुंझुनू, करौली, खैरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, सीकर और सवाई माधोपुर में आज तेज आंधी और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। श्रोताओं, हवा की रफ्तार जो है वो 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना जताई गई है। और हम ये देखते हैं कि अलर्ट आने के बावजूद भी लोग जो हैं या तो इसे एडवेंचर समझ लीजिए

या फिर लापरवाही समझ लीजिए, अलर्ट सुनने के बाद भी लोग घरों के बाहर निकलते हैं और खुद के लिए परेशानी का सबब बना लेते हैं। तो बिल्कुल ध्यान रखिए, क्योंकि मौसम जो है वो इस तरह के मौसम का अनुमान है कि 4 से 5 दिनों तक इस तरह का मौसम रहेगा। तो अगर आपका बहुत ज़रूरी काम नहीं है तो घर के बाहर बेवजह ना निकलें और खुद के लिए परेशानी का कारण ना बने। श्रोताओं,

श्रोताओं, हर कोई अपने जीवन में खुशियां चाहता है और अगर ये बात कही जाए कि सबसे पहले खुशियों की दस्तक हर कोई अपने जीवन में चाहता है, लेकिन क्या आप जानते हैं ये जो दस्तक है ना, ये बिना वजह नहीं हो पाती है। उसके पीछे एक छोटे सा एक रीज़न होता है। अगर आप ये काम कर लेंगे तो जो खुशियां हैं सबसे पहले आपके दरवाजे पर दस्तक देंगी। तो ये जो छोटा सा काम है वो क्या है? जी हाँ, वो आपको बता दूं कि जब भी आप दुआएं करते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, तो जो दूसरे लोग हैं उनको भी अपनी दुआओं में शामिल कर लीजिए। फिर आप देखिए कि जो खुशियाँ हैं वो सबसे पहले आपके घर का दरवाजा ढूंढेंगी और कर देंगी नॉक नॉक।

तो 9 बजने वाले हैं और यहाँ आपको पता है हम रुकते हैं न्यूज ब्रेक के लिए और फिर से लौटेंगे इस कार्यक्रम में 9:10 पर।

नमस्कार, कार्यक्रम जारी रहेगा समाचारों के बाद। ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं। कुछ देर में हिंदी में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज सुबह 11 बजे अपने विचार साझा करेंगे। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत 5 दिनों में 7,30,000 से अधिक जल संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम हुए। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ ने मौसम का मिजाज बदला, कई जिलों में रेतीले बवंडर और अंधड़ के साथ बरसात। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस आज, प्रदेश के सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर तंबाकू निषेध परामर्श सत्रों का आयोजन। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। पेश है न्यूज डेस्क से मन की बात कार्यक्रम पर डॉक्टर सालिहा गाजी की रिपोर्ट।
1: साल 2014 से शुरू हुआ प्रधानमंत्री श्री मोदी का मन की बात कार्यक्रम देशवासियों से संवाद का एक प्रभावी मंच है। इसमें प्रधानमंत्री सामाजिक, सांस्कृतिक और विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर अपने विचार रखते हैं, साथ ही आम नागरिकों की उपलब्धियों और प्रेरक कहानियों को भी सामने लाते हैं। ये कार्यक्रम जन भागीदारी को बढ़ावा देने और सकारात्मक बदलाव के लिए एक सशक्त माध्यम बन चुका है। हर महीने के अंतिम रविवार को ये आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाता है। इसका प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज,

0: प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होता है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक ही सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि

0: पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया। हमारी आर्मी और एयरफोर्स ने तो अपनी भूमिका निभाई ही, लेकिन जो भूमिका हमारी नेवी ने निभाई वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हमारी नेवी पूरी ताकत के साथ अरब सागर में उस समय मौजूद, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा, और इसी का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की पूरी नौसेना डर कर अपने बंदरगाहों में दुबक कर बैठ गई।
1: कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि एआई और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है।
2: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
1: फुलेरा के पास हिरनौदा गाँव में थार ड्राईपोर्ट बनाया गया है। उद्योग मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने कल इसका उद्घाटन किया। ये हस्ती पेट्रोकेमिकल और शिपिंग लिमिटेड HPCSL की इकाई है। इससे सड़क और रेल मार्ग के जरिए कंटेनर आवागमन की बेहतरीन सुविधा मिलेगी। इस परियोजना से प्रदेश में लॉजिस्टिक्स, औद्योगिक विकास और निर्यात गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 जन आंदोलन का रूप ले रहा है। अभियान के तहत 5 दिनों में 7,30,000 से अधिक स्थानों पर जल संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। इनमें 92,000 से ज्यादा जल स्रोतों और 42,000 से अधिक सरकारी भवनों की सफाई की गई। 52,000 से अधिक स्थानों पर श्रमदान किया गया। वहीं हरियाणा राजस्थान में पौधरोपण के लिए 36,000 से ज्यादा पिट खोदे गए। साथ ही करीब 32,000 कलश यात्राएं निकाली गईं। अभियान के तहत आज प्रभात फेरी, रैली, श्रमदान, बावड़ियों की साफ सफाई करने के साथ ही नो प्लास्टिक डे मनाया जाएगा। वहीं कल खेती संबंधी कार्यशालाएं और प्रदर्शनियां होंगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ ने मौसम का मिजाज बदला। इससे सीकर, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर और अलवर में रेत का बवंडर आया। इस दौरान 70 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली और समूचे वातावरण में धूल का गुबार छा गया। पीली काली आंधी से दिन के समय ही अंधेरा हो गया और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। तेज अंधड़ से कई जगह घरों और औद्योगिक क्षेत्रों में लगे टीन शेड और सोलर पैनल उड़ गए। विभिन्न स्थानों पर पेड़ गिर गए और बिजली सप्लाई प्रभावित हुई। वहीं खरीद केंद्रों पर रखी गेहूं की बोरियां भीग गईं। उधर अजमेर, भीलवाड़ा, जोधपुर, चूरू और बारा में अंधड़ के साथ बारिश भी हुई। जयपुर जिले में ग्रामीण इलाकों में बरसात के साथ ओले गिरे। बरसात से तापमान में 5 से 7 डिग्री तक की गिरावट आई है। मौसम विभाग ने आज 11 शहरों में आंधी बरसात का ऑरेंज अलर्ट बताया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि भारत की आत्मा साहित्यकारों में बसती है। साहित्य केवल शब्दों का सृजन नहीं है, बल्कि संस्कृति, ज्ञान और आध्यात्मिक चेतना का संवाहक है। श्री बिरला कल कोटा में अखिल भारतीय साहित्य परिषद के महाअधिवेशन में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने लेखकों से प्राचीन साहित्य कृतियों के डिजिटलीकरण करने का आग्रह किया, जिससे भारतीय ज्ञान परम्परा को नई पीढ़ी तक पहुँचाया जा सके।
3: भारत के साहित्यकार, कवि, लेखकों ने अलग अलग कालखंड के अंदर भारतीय संस्कृति को संरक्षण करने का काम किया, देश में रचनात्मक दिशा दी, रचनात्मक दृष्टिकोण दिया और रचनात्मक विचार दिया। आने वाली पीढ़ियों को भारत भारत के साहित्यकार, गीतकार, लेखकों से जो उनके ज्ञान के भंडार

0: ज्ञान लेने की आवश्यकता है ताकि हम भारतीय संस्कृति के विचार दृष्टिकोण को अपने जीवन में लाकर देश और राष्ट्र की प्रगति और देश राष्ट्र की सेवा में लगे रखें।
1: आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। ये दिन तंबाकू के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण वैश्विक पहल का हिस्सा है। इस वर्ष का विषय अपील का अनावरण, निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना है। इस उपलक्ष्य में प्रदेश में 22 मई से विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। 30 मई तक चलाए गए इस अभियान में 2000 से ज्यादा चालान किए गए। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध, शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक सहित अन्य प्रावधानों के तहत कार्रवाई की। आज प्रदेश के सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर तंबाकू निषेध संबंधी परामर्श सत्र रखे गए हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के मौके पर चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने लोगों से तंबाकू, सिगरेट, हुक्का और अन्य नशों से दूर रहने और स्वस्थ जीवन जीने की अपील की है। आईपीएल क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच खिताबी टक्कर होगी। ये फाइनल मैच शाम 7:30 बजे से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज सुबह 11 बजे अपने विचार साझा करेंगे। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत 5 दिनों में 7,30,000 से अधिक जल संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम हुए। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ ने मौसम का मिजाज बदला। कई जिलों में रेतीले बवंडर और अंधड़ के साथ बरसात। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस आज। प्रदेश के सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर तंबाकू निषेध परामर्श सत्रों का आयोजन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: श्रोताओं, समाचारों के बाद आपका फिर से स्वागत है आपके फेवरेट मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में। और जैसा कि आज है 31 मई, और श्रोताओं 31 मई जो है हर वर्ष मनाया जाता है विश्व धूम्रपान निषेध दिवस, यानी कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस, या फिर इसे कहें अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस के रूप में। तंबाकू से होने वाले नुकसान को देखते हुए साल 1987 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के सदस्य देशों ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसके द्वारा 7 अप्रैल 1988 से इस दिवस को मनाने का फैसला किया गया। इसके बाद हर साल 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाने का फैसला किया गया। श्रोताओं, WHO के सदस्य देशों ने 31 मई का दिन निर्धारित करके धूम्रपान के सेवन से होने वाली हानियां और खतरों से विश्व जनमत को अवगत करा के इसके उत्पाद और सेवन को कम करने की दिशा में आधारभूत कार्रवाई करने का प्रयास किया। श्रोताओं, इसी दिशा में हर वर्ष प्रतीकात्मक रूप से एक नारा भी निर्धारित किया जाता है, और हर वर्ष वर्ल्ड नो टोबैको डे को एक अलग थीम के साथ मनाया जाता है। जी हाँ, तंबाकू और उसके उत्पाद, इनके सेवन से जो जुड़े जोखिम है श्रोताओं, और परिवार, समाज और पर्यावरण पर इसके जो बुरे प्रभाव पड़ते हैं, इसके बारे में जागरूकता को बढ़ावा दिया जा सके, ऐसी सबकी कोशिश होती है। आप जानते हैं तंबाकू का सेवन कई प्रकार के कैंसर जैसे फेफड़े, स्वरयंत्र, मुंह, ग्रासनली, गला, मूत्राशय, गुर्दा, यकृत, पेट, इन तमाम तरहों के जो कैंसर है इनका प्रमुख कारण बन जाता है। और ऐसा अनुमान भी है श्रोताओं कि तंबाकू के सेवन से प्रतिवर्ष 1 करोड़ से अधिक लोगों की मृत्यु होती है। तंबाकू न केवल स्वास्थ्य को प्रभावित करता है बल्कि कई तरह से पर्यावरण पर भी बुरा असर डालता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2026 जो है उसका विषय है श्रोताओं, आकर्षण का पर्दाफाश, निकोटीन और तंबाकू की लत का मुकाबला। जी हाँ, ये विषय इस बात को उजागर करेगा कि तंबाकू और निकोटीन उद्योग बच्चों और किशोरों को लुभाने के लिए जो अलग अलग उत्पाद हैं, जैसे ई सिगरेट है, निकोटीन पाउच है और इसी तरह के उत्पाद हैं, उनको किस प्रकार से पुनर्व्यवस्थित और

जी हाँ श्रोताओं, इतने प्यार से जो मनहार की गई कि मत पियो सा, तो बिल्कुल उस बात को मानना चाहिए, क्योंकि जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है यानी कि तंबाकू, उसका बिल्कुल हमें कहते हैं ना बहिष्कार करना चाहिए। मैं मानती हूँ कि एक साथ आदत नहीं छूटती है, लेकिन अगर कोशिश की जाए तो अधिक से कुछ कम पे आएँ और कम से फिर बिल्कुल ख़त्म करने पर आएँ तो कहीं भी मुश्किल नहीं होगी। खैर श्रोताओं, बढ़ते हैं आज की तारीख में आगे और ले चलते हैं आपको उस ओर जहां पर कुछ शख्सियत जो आज के दिन में दर्ज हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। जी हां, 1950 से 1980 के दशक तक हिंदी फिल्मों में शीर्ष निर्देशक, निर्माणकर्ता और पटकथाकारों में से एक थे, जिन्हें देवानंद जैसे

अभिनेताओं की सफलता के लिए श्रेय दिया जाता है, जिनका जन्म हुआ 31 मई 1925 को पंजाब के लुधियाना शहर में। जी श्रोताओं, मैं बात कर रही हूँ राज खोसला की। इनका बचपन से ही जो रुझान था वो गीत संगीत की ओर था और प्लेबैक सिंगर बनना चाहते थे राज खोसला। आकाशवाणी में बतौर उद्घोषक और पार्श्व गायक का काम करने के बाद आप 19 वर्ष की उम्र में अपने पिता के साथ पार्श्व गायक की तमन्ना लिए पहुंच गए मुंबई और वहां मिले जो उनके चाचा देवानंद के पिता जो थे किशोरी आनंद, उनके गहरे दोस्त थे। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई लिंक जो है काम कर जाता है श्रोताओं। और इस तरीके से वो भी दिल में ये तमन्ना लेकर पहुंच गए थे मुंबई। और फिल्मी करियर की अगर शुरुआत की बात करें तो मुंबई आने के बाद राज खोसला ने अप्रोच किया था रंजीत स्टूडियो में, वहाँ अपना स्वर परीक्षण कराया और इस कसौटी पर खरे भी उतरे। लेकिन जो मालिक थे उस स्टूडियो के, सरदार चंदूलाल जी, उन्हें बतौर पार्श्व गायक अपनी फिल्म में काम करने का उन्होंने मौका नहीं दिया। उन दिनों जो ये स्टूडियो था इसकी कुछ आर्थिक हालत ठीक नहीं थी और सरदार चंदूलाल जो थे वो नए पार्श्व गायक की अपेक्षा मुकेश जी पर ज्यादा भरोसा करते थे और उन्होंने अपनी फिल्म में मुकेश को ही पार्श्व गायन करने का मौका देना उचित समझा। लेकिन इन्होंने भी श्रोताओं हार नहीं मानी। राज खोसला द्वारा निर्देशित अन्य फिल्मों में अगर हम बात करें तो मैं तुलसी तेरे आंगन की, दो रास्ते, 16 साल, काला पानी, एक मुसाफिर, एक हसीना, चिराग, मेरा साया, ये वो प्रमुख फिल्में हैं जिनका जैसे जैसे मैंने नाम लिया वैसे वैसे आपके दिमाग में इन फिल्मों के जो पोस्टर्स थे उन्होंने तस्वीर जरूर उकेरी होगी। उनकी कुछ फिल्में ऐसी भी थी श्रोताओं जो 80 के दशक में व्यावसायिक तौर पर सफल नहीं रहीं। और इन फिल्मों की अगर हम बात करें तो इनमें दासी, तेरी मांग सितारों से भर दूं, मेरा दोस्त मेरा दुश्मन और माटी मांगे खून शामिल हैं। हालांकि वर्ष 1984 में प्रदर्शित फिल्म सनी जो थी इसने बॉक्स ऑफिस पर बहुत व्यापार किया और वर्ष 1989 में प्रदर्शित फिल्म नकाब राज खोसला के सिने करियर की अंतिम फिल्म साबित हुई थी। लेकिन अगर हम कुछ पीछे फिर से चलते हैं श्रोताओं तो हम देखते हैं कि गुरुदत्त के तहत उन्होंने अपना करियर शुरू करने के बाद सीआईडी जैसी हिट फिल्म्स जो थी वो बनाते रहे। वो कौन थी, मेरा साया, दोस्ताना और जो इनकी सबसे क्लासिक फिल्म है जैसे मैं तुलसी तेरे आंगन की, जो कि बनी थी श्रोताओं 1978 में। इस फिल्म ने उन्हें फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ मूवी पुरस्कार दिलाया था।

जी श्रोताओं, बढ़ते हैं 31 मई में आगे और आज के दिन में ही एक और ऐसी शख्सियत दर्ज हैं जिन्हें भारतीय हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकारों में जाना जाता है। उन्होंने अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर के अभिनय से सजी फिल्म अजूबा का जो पार्श्व संगीत है वो भी दिया था। तमस, अंकुर, मंथन, मंडी, जुनून और कलयुग जैसी फिल्मों में भी आपने संगीत दिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ वनराज भाटिया की। इनका जन्म हुआ 31 मई 1927 को। वनराज भाटिया को 1988 में गोविंद नेहलानी की फिल्म तमस में सर्वश्रेष्ठ संगीत के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था श्रोताओं, और 2012 में उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। उन्होंने 60 के दशक में कई मशहूर एड फिल्मों का संगीत देते हुए अपने संगीतमय करियर की शुरुआत की थी। श्रोताओं, सन 1989 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी आपको सम्मानित किया गया। वनराज भाटिया ने लंदन स्थित रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक से वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक की शिक्षा ली थी। 70 और 80 के दशक की समानांतर फिल्मों में सुमधुर संगीत देने के लिए आप मशहूर रहे। एक समय सिनेमा जगत में इनका बहुत ऊंचा नाम था और इनके द्वारा संगीतबद्ध किए गए गाने खूब पसंद किए जाते हैं श्रोताओं। करियर की ऊंचाइयों को छूने वाले वनराज भाटिया ने जीवन के अंतिम वर्षों में काफी आर्थिक संकट भी देखा। गायकों, गीतकारों और संगीतकार के हितों का ख्याल रखने वाली इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी जो है उसकी ओर से भी उनकी आर्थिक मदद

की गई थी। जी श्रोताओं, साल 1974 में रिलीज हुई श्याम बेनेगल निर्देशित फिल्म अंकुर बतौर संगीतकार वनराज भाटिया की पहली फिल्म थी। कई फिल्मों में वनराज भाटिया ने पार्श्व संगीत दिया था श्रोताओं, और जिसमें जैसा मैंने आपको बताया था अजूबा थी, दामिनी और परदेस, ये भी जो फिल्में थी इन मुख्य धाराओं की फिल्मों से भी वो जुड़े रहे थे। और साल 2012 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था।

जी श्रोताओं, रविवार की सुबह है प्यारी, लेकर आई किरणें न्यारी। सूरज हंसकर देता संदेश, मेहनत से ही मिलता विशेष। थोड़ा आराम, थोड़ी मुस्कान, खुशियों से भर जाए जहान। बीते सप्ताह की सारी थकान, आज बनी नई उड़ान की पहचान। जी हाँ, रविवार जिसका संबंध

0: सूर्य देव से माना जाता है और इसे ऊर्जा, सकारात्मकता और नई शुरुआत का दिन भी माना जाता है। तो आप समझ गए कि हम बात कर रहे हैं उस स्पेशल सेगमेंट की जिसका रहता है आपको भी बेसब्री से इंतजार, यानी कि मेहमान का रविवार। तो मेहमान का रविवार हमारी कोशिश रहती है कि आपको उस शख्सियत से बातचीत करवाएं, उनकी बातचीत सुनवाएं, उनके रविवार के बारे में कुछ खुद जानें और कुछ आपको उनसे परिचित करवाएं। तो ऐसी शख्सियत जिनका नाम शायद ही ऐसा कोई डांस प्रेमी है या फिर मैं कहूँ स्पेशली क्लासिकल डांस लवर है जो नहीं इनके नाम से वाकिफ हो, ऐसा ही शायद कोई होगा। जी हाँ, आज की जो हमारी शख्सियत हैं, नाम मैं आपको थोड़ी सी देर में बताऊंगी लेकिन उनके बारे में आपको बताना ज़रूर शुरू कर देती हूँ। आपने विशारद की उपाधि ली है कथक डांस में और पिछले 32 सालों से आप इस फील्ड में लगातार अपनी सेवाएं दे रही हैं और हर रोज हर दिन कहते हैं ना, अपने शिष्यों को, अपने स्टूडेंट्स को बहुत कुछ सिखाने की आप में तलब रहती है। साथ ही साथ ये जो जर्नी है आपकी, इस जर्नी में, इस यात्रा में आपने बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल शोज भी किए हैं, बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में भी पार्ट लिया है। आपने अपनी कंट्री को कहते हैं ना कि रिप्रेजेंट भी किया है कंट्रीज लाइक श्रीलंका, मलेशिया, वियतनाम, इन कंट्रीज में आपने पार्टिसिपेट किया और इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान बनाई विनर के तौर पर। आपको बहुत सारे प्रेस्टीजियस ऑनर्स और अवार्ड्स भी मिले हैं श्रोताओं डांस के फील्ड में, जिसमें नृत्य डांस गुरु अवार्ड, रविंद्र रत्न पुरस्कार, बेस्ट कथक गुरु अवार्ड और राजस्थान संगीत अकादमी अवार्ड। जी हाँ, ये सारे जो अवार्ड्स हैं ये तपस्या के बाद मिलते हैं श्रोताओं, और जब 32 सालों से आप इस फील्ड में, इस तपस्या में रंग जोड़े जा रहे हैं तो आपके डेडिकेशन, आपके कमिटमेंट के लिए ये शब्द जो हैं वो काफ़ी छोटे रह जाते हैं। जी हाँ, स्वागत करते हैं हम हमारे प्रोग्राम में अनुपमा वकील जी का। अनुपमा जी, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते अनुपमा जी, आपके लिए सबसे पहले तो हम बहुत बहुत आभारी हैं कि आपने, बहुत बिजी आपका स्केड्यूल रहता है, उसमें से हमारी आकाशवाणी परिवार को संडे में से कुछ वक्त आपने देने की हामी भरी और आप हमसे जुड़े।
1: धन्यवाद मैम।
0: मैम, थोड़ा सा अगर आप लाउड बोलेंगे तो हमारे श्रोता जो हैं उस चीज़ को और अच्छे से समझ पाएंगे, सुन पाएंगे।
1: जी, धन्यवाद मैम।
0: जी मैम, जी मैम, मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि आप जोधपुर में नहीं हैं अभी, लेकिन फिर भी आपने हमारे प्रोग्राम से जुड़ने के लिए हाँ भर दी, तो एक विशेष धन्यवाद उसके लिए भी आपको।
1: जी मैम, एक्चुअली मैं आज हाँ नहीं भरती तो कब भरती, क्योंकि मैं बहुत ज्यादातर हम लोग टूर करते हैं,
0: जी,
1: बच्चों
0: जी,
1: को क्लास लेते हूँ
0: जी,
1: के अलावा जो भी उनको ज्ञान मिलता है तो हम लोग कॉम्पिटिशन के लिए और लेकर जाती हूँ, मैं खुद बच्चों को लेकर जा रही हूँ।
0: जी जी जी।
1: तो फिर कभी तो ऐसा ही आएगा कि मैं नहीं होंगी, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं।
0: ये भी एक नया एक्सपीरियंस हो जाता है मैम की टूरिंग, प्लस हम अपने मन की बात भी कर पाते हैं, अपने संडे को भी इंजॉय करते हैं और कुछ वक्त जो है अपने लिए भी निकाल पाते हैं। तो मैम, शुरुआत करते हैं कि कैसे आप अपना संडे स्पेंड करते हैं, किस तरह से, क्या कुछ स्पेशल इस दिन के लिए होता है, मॉर्निंग में कुछ स्पेशल चीज होती है, कैसे आपके संडे की शुरुआत होती है?
1: एज यूजुअल मैम, मैं कथक डांसर हूँ
0: जी,
1: और एक अब मेरा ऐसा लगता है कि डांसर से ज्यादा मैं टीचर बन गई हूँ
0: जी,
1: तो मेरा ये रहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिखा पाऊँ। तो एज यूजुअल संडे भी शुरुआत तो क्लास से ही होती है मेरी, पर वो होता है कि उस वक्त बच्चे अर्ली मॉर्निंग आते हैं, 7 to 8, 8:30 तक मैं अपना रियाज करके तो 9 o'clock से बच्चे आते हैं।
0: okay.
1: तो शुरुआत मेरी डांस से ही होती है।
0: तो आप,
1: फिर बाद का टाइम है जो थोड़ा सा घर को ठीक करना, फिर बाकी के जो सोसाइटीज के काम होते हैं।
0: मैम, एक ख़ास बात होती है, देखिए ना, जोधपुर है, फूडी जगह है, यहाँ पे फूड लवर्स भी बहुत हैं, तो क्या जैसे संडे के दिन कुछ स्पेशल ब्रेकफास्ट या कुछ स्पेशल खाने के लिए आपका दिल नहीं करता है कि कुछ अलग बनाया जाए, कुछ अलग खाया जाए?
1: जी मैम, करता है, क्योंकि मेरे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको मेरे हाथ से

0: बनाया हुआ खाना बहुत पसंद है।
1: क्या बात है
0: तो
1: जी।
0: संडे को जो हम लोग क्लास रखते हैं उसमें हमारा जो भी शोज होते हैं, कहीं कॉम्पिटिशन होते हैं, उनकी रिहर्सल्स होती है। बाकी दिन तो रेगुलर क्लास होती है, क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो एग्जाम्स भी देते हैं।
1: हाँ जी।
0: और विशारद ये सब अटेंड करते हैं बच्चे, तो वो तब तो रेगुलर क्लास होती है, उस वक्त शोज की प्रैक्टिस कम कर पाते हम लोग।
1: जी।
0: तो संडे को फिर ये होता है कि बच्चे आ रहे हैं, तो मेरा ये होता है कि फटाफट अपना रियाज किया और साथ साथ में कुछ खाना भी। आपको पता है लेडीज का क्या होता है कि मतलब डांस चल रहा है लेकिन किचन में कुकर की
1: जी
0: भी चल रही है, तो
1: बिल्कुल
0: संडे
1: सही।
0: को ऐसा जरूर होता है। तो बच्चों को रियाज से बनाया हुआ खाना पसंद है, राजमा चावल है, सिंपल आलू की सब्जी, और उनको पूरी पसंद है, तो मैं वो बना के रखती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि
1: जी।
0: आती हैं गर्ल्स और सीखती हैं, फिर हम सब साथ में बैठ के खाना खाते हैं, तो मेरा एंजॉय यही होता है, क्योंकि पूरा लाइफ मैंने अपने डांस को दिया है।
1: जी बिल्कुल।
0: संडे होता है कि हम बच्चे सब साथ में बैठ के खाना खाते हैं, कभी कभी कोई बच्चे की मम्मी भी कुछ अच्छा बना रही होती है तो वो भी उनके साथ में भेज देती है, तो हम सब साथ में बैठ करके खाना खाते हैं
1: क्या बात
0: और
1: है,
0: फिर संडे एंजॉय करते हैं।
1: बहुत सुंदर। मतलब आपने जो बात कही ना, मैं उस चीज़ को बिल्कुल इमेजिन कर रही हूँ, और मैं भी एक क्लासरूम में बैठी हूँ जहाँ पे आपके हाथ की गरम गरम पूड़ी और आलू की सब्जी जो है वो भी मैंने टेस्ट की है, तो बहुत सुंदर। और क्योंकि देखिए ऐसा होता है, परिवार के साथ तो हम रहते ही हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी आपकी कंसर्न जो है ये बहुत अच्छी चीज़ शो कर रही है मैम। और बच्चों का आपके प्रति जो लगाव है, प्यार है, वो भी इस बात से हम समझ सकते हैं मैम।
0: क्लासिकल डांस क्या है ना कि बच्चों को डांस तो सिखाता है
1: जी
0: के साथ साथ हमारा जो कल्चर है उसके बारे में उनको जानकारी देना बहुत ज्यादा जरूरी
1: बहुत
0: होती है।
1: जरूरी है, बिल्कुल
0: और
1: जी।
0: आज के समय में पेरेंट्स बिजी हैं, क्योंकि अब किसी भी चीज के लिए एज नहीं रह गई है,
1: सही
0: तो
1: बात है
0: मम्मियां भी हैं, कुछ ना कुछ सीख रही हैं, कहीं ना कहीं कुछ
1: जी।
0: इन्वॉल्वमेंट है उनका। इवन नानी दादी भी, जैसे हमारी नानी दादी तो बिल्कुल फ्री रहती थी,
1: जी
0: उनका एक ही काम है, सुबह पूजा किया और बच्चों को सारा चीज जो भी समझाना है, जब भी टाइम मिलता है स्टोरी सुनाते हैं ये सारी चीजें।
1: जी
0: पर अब वो थोड़ा थोड़ा लुप्त होता जा रहा है,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि
1: सही,
0: नानी दादी भी कहीं ना कहीं बिजी हैं,
1: बिल्कुल
0: तो फिर उस टाइम में टीचर की ड्यूटी मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हो गई है,
1: बहुत इम्पोर्टेंट रोल
0: उनको
1: है जी।
0: सारी चीजें समझाना कि हम डांस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, डांस का मीनिंग, एक्चुअल मीनिंग क्या है।
1: जी
0: तो वो सारी डेप्थ की बातें हैं वो रेगुलर क्लास में नहीं कर पाते हैं, तो ये सब एक्स्ट्रा चीजें एक्स्ट्रा टाइम में करते हैं। तो मुझे तो बहुत मजा आता है कि आज संडे है, बच्चे बोलते हैं मैम पहले डांस पे लेक्चर टाइम, तो उसमें हम बहुत सारी चीजें बच्चों को समझाते
1: नहीं,
0: हैं।
1: बहुत बढ़िया बात है, और ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट आप बता रहे हैं मैम, क्योंकि बिल्कुल आपने सही कहा कि जैसे आजकल मम्मी और इवन जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो लोग भी मतलब उतना टाइम बच्चों को नहीं दे पाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके इन्वॉल्वमेंट से, और एज अ टीचर आपने ये इतना बड़ा कहते हैं ना बेड़ा उठा रखा है, बहुत ही काबिले तारीफ है मैम जी। मैम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और कहीं ना कहीं देखिए आपने बच्चों को संस्कार आप सिखा रहे हैं, डांस के प्रति पूरा आपने जीवन समर्पित कर रखा है, और लेकिन फिर भी कहीं एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हमारे जो दोस्त होते हैं उनकी कमी हमें ज़रूर खलती है, तो क्या कोई ऐसे आपके लाइफ में ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्हें आप संडे जो एक दिन होता है उस दिन में शामिल कर लेते हैं?
0: ऐसा होता है पर
1: जी
0: बहुत रेयर केस में होता है। कभी जैसे लाइक मेरा बर्थडे है, बर्थडे के दिन नहीं हम कभी भी मिल पाते हैं, क्योंकि मेरा बर्थडे लगभग एक महीना चलता है। जितनी भी क्लासेस है वहां पर सब बच्चे अपनी अपनी तरीके से तैयारियां करते हैं, मतलब कितना भी मना कर दो फिर भी
1: फिर
0: उनका
1: भी
0: वो रहता
1: करते
0: है कि नहीं मैम को सरप्राइज करना है हमको किसी भी तरह। हर बार कुछ अलग करते हैं, मतलब किसी
1: जी
0: चीज के लिए अगर मैं उनको मना करती हूँ
1: जी
0: कि अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे, तो कुछ नया लेकर के आ जाते हैं,
1: जी
0: तो वो एक महीने तक चलता है। तो फिर
1: जी
0: मेरे जो फ्रेंड्स थे, जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स थे, वैसे बहुत ज्यादा नहीं है, तीन चार है, तो हम लोग फिर एक महीने बाद, 1.5 महीने बाद ऐसे मिले, तब तक किसी और का बर्थडे भी आ जाता है,
1: लेकिन
0: तो
1: ये भी
0: वो
1: एक नया
0: संडे ये
1: एक्सपीरियंस
0: रहता
1: हो
0: है।
1: जाता है,
0: हाँ
1: रिफ्रेशिंग
0: वो
1: रहते
0: एक संडे
1: हैं।
0: होता
1: जी
0: है।
1: जी
0: जी मैम जी
1: नहीं, बहुत बढ़िया मैम कि जो फ्रेंड से मिलने का जो 1-1.5 महीने बाद जो चार्म रहता है कि भाई आपका बर्थडे जो है मैम वो आपको रिफ्रेश करे रखता है, महीने डेढ़ महीने तक वो चीजें चलती रहती हैं, सेलिब्रेशन चलते हैं, तो इतना सारा प्यार जो आपको मिलता है तो वो तो मतलब सच में दिल भर आता है और ऐसा लगता है ना।

0: बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें इतना सारा प्यार मिलता है।
1: मैं मतलब इस बात में बहुत बहुत ज्यादा धनी हूँ
0: जी।
1: कि मुझे इतने बच्चे हैं जो मुझसे इतना प्यार करते, क्योंकि 32 ईयर्स की जर्नी में
0: जी।
1: मुझे ऐसा लग रहा है शायद 5,000 से ज्यादा बच्चे होंगे जो मुझसे सीख करके
0: क्या
1: आगे
0: बात
1: निकले
0: है
1: हैं।
0: जी।
1: कुछ बच्चे कथक फील्ड में ही आगे अपना करियर बना रहे हैं, कुछ डॉक्टर बन चुके हैं,
0: जी।
1: गायनिक है, उसके बावजूद भी वो कथक को अभी भी अडोप्ट किए हुए हैं।
0: ओके।
1: और वो मुझे बराबर टाइम टाइम पे कॉल करते हैं, बर्थडे है, कभी बर्थडे को याद नहीं रख पाते हैं वो लोग क्योंकि नेचुरली हॉस्पिटल
0: हो
1: में
0: जाता
1: बिजी
0: है।
1: होते हैं ये वो, पर
0: हाँ जी
1: वो मुझे प्रेम इतना करते हैं कि मैसेज भेजेंगे, और कभी जब भी जोधपुर आते हैं तो मिलने भी
0: मिलना
1: आते
0: जरूर
1: हैं
0: होता
1: बच्चे।
0: है जी।
1: और सबसे बड़ा ये लगता है ना कि मेरे साथ में जो भी लोग बाहर चल रहे हैं, सपोज हम एयरपोर्ट पे गए तो कोई ना कोई एयर होस्टेस मिलेगी, आके पैर छुएगी, ये सब देखते ये क्या हुआ। फिर मैं भी एक बार तो ओ तुम यहाँ पे, बोले हाँ मैम अब मेरे यहाँ पर जॉब चल रही है ये वो।
0: जी
1: तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि वो लोग एक ऊंचाई पे पहुंच गए
0: बिल्कुल
1: फिर
0: बिल्कुल
1: भी मुझे भूले नहीं है वो, मतलब एकदम। अब जैसे मैं बच्चे को भूल जाती हूँ, छोटे बच्चे हैं बड़े हो जाएंगे, ध्यान नहीं रहता है कि
0: जी।
1: अब कितने चेंजेस आते हैं, पर वो मुझे रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, मैम आप तो हमें डांस सिखाते थे ना। तो
0: हाँ
1: ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं मतलब बहुत किस्मत वाली हूँ कि इतने बच्चे मुझसे प्यार करते हैं
0: जी।
1: और वो याद रखते हैं। नहीं
0: याद
1: तो आप
0: रखते
1: देखते
0: हैं
1: हो टीचर्स को इतना कोई बाद में नहीं याद रखता,
0: मैम,
1: डांस
0: ये
1: टीचर
0: टीचर
1: तो
0: का
1: मतलब
0: कहते हैं ना अर्निंग यही है, जो इस प्रोफेशन में उनकी अर्निंग यही होती है कि उनके बच्चे वो कहीं भी हों, एक तो ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं और उन्हें याद करते हैं, और जब ये याद करते हैं वो मोमेंट मैम मेमोरेबल हो जाता है फॉर लाइफ टाइम जी। मैम थोड़ा सा एक बार के लिए हम डांस को रोकेंगे, एक बार के लिए हम सारी बात रोकेंगे, मैं आपको वापस ले चलती हूँ आपके घर की तरफ, और वहाँ पे जैसे फैमिली के लिए आपका क्वालिटी टाइम रहता है, तो उसमें आप क्या क्या अपने परिवार के लिए करना पसंद करती हैं?
1: मेरी फैमिली की साइड भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं
0: जी
1: कितना भी बिजी रहूँ उनको तो मुझे देखना ही होता है, बिकॉज मेरे ओल्ड एज पेरेंट्स है, 86 ईयर्स ओल्ड फादर है मेरे,
0: ओके।
1: और मेरी मम्मी है 80 ईयर्स ओल्ड, तो दोनों थोड़ा अब तो इस एज में मेडिकल इश्यूज भी बहुत है,
0: राइट राइट।
1: पर फिर भी मैं जब वो मेरे पास होते हैं, वैसे वो गुजरात में रहते हैं
0: अच्छा अच्छा
1: पर गर्मियों के टाइम में वो मेरे पास आ जाते हैं, फिर यहाँ
0: जी
1: का विंटर उनसे नहीं सहन होता है तो
0: हाँ
1: वापस
0: हाँ
1: चले जाते हैं।
0: जी
1: तो उस टाइम में कभी कभी बहुत ऐसी कंडीशंस होती है कि कैसे मैनेज करूंगी, मम्मा को हॉस्पिटल भी जाना है, क्लास भी करना है,
0: जी
1: कोई प्रोग्राम है तो उनके लिए कॉस्ट्यूम के लिए मिलने जाना है,
0: जी
1: लेकिन फिर भी मतलब मैनेज करती हूँ मैं। और आपको ये मतलब शायद काफी लोगों को पता है, पर मेरे पापा खुद बहुत अच्छे तबला प्लेयर रहे हुए हैं,
0: अच्छा
1: शंकर जयकिशन जी के टाइम में वो तबला बजाते थे उनके
0: क्या
1: साथ
0: बात
1: में,
0: है क्या बात है जी।
1: और मेरे क्लासिकल का जो भी मतलब मेरे अंदर ज्ञान है या उसके लिए जानने की जो उत्सुकता है ना, वो सब
0: जी
1: कुछ मेरे पापा से मुझ में आई है।
0: क्या बात है।
1: वो कथक
0: हाँ
1: मतलब बहुत अच्छा तबला बजाते हैं,
0: जी
1: क्लासिकल सॉन्ग्स बजाते थे वो पहले,
0: जी जी
1: और मेरे जितने भी मतलब सॉन्ग प्लेलिस्ट अगर आप देखेंगे तो सब पुराने पुराने गाने हैं
0: जी
1: जिसका कुछ मीनिंग होता है, और उस मीनिंग को मैं अब जैसे अब तो बड़े हो गए हैं तो उन चीजों को सोचते हैं दुनियादारी के साथ में जोड़
0: हाँ
1: करके,
0: जी
1: तो मुझे कुछ गाने तो ऐसे लगते हैं कि बिल्कुल वो हमारे लिए बने हैं।
0: जी
1: तो मेरे पापा से मुझे बहुत ज्यादा मतलब आज इतने वो बीमार रहते हैं पर फिर भी उनका ये है कि कम से कम 1.5 से 2 घंटा रियाज करना है, मतलब
0: क्या बात है।
1: वो
0: हाँ
1: इतने बीमारी में है फिर
0: जी
1: भी 15-15 मिनट वो तबला बजाते हैं,
0: क्या बात है। देखिए
1: वो
0: डेडिकेशन जो है बिल्कुल।
1: बेड पे ही रखते हैं तबला, 15 मिनट बजाएंगे फिर उनको एकदम से प्रॉब्लम होती है, कहीं लेट जाते तो
0: जी
1: उठेंगे फिर 15-20 मिनट बजाएंगे, तो वो तबला उनके साथ परमानेंट पड़े रहते हैं बेड पे,
0: जी
1: तो उससे प्रेरणा मिलती है कि हमें प्रैक्टिस तो कभी भी नहीं छोड़नी है चाहे
0: बिल्कुल
1: कितने भी
0: सही
1: बड़े हो जाएं।
0: बिल्कुल सही। जो प्रैक्टिस की प्रेरणा है आपको पिताजी से मिली है मैम, और बहुत ही मतलब सुनकर अच्छा लगा कि ये जो डेडिकेशन है, ये जो आज आप जिस ऊंचाई पर हैं, तो ये जो डेडिकेशन, ये समर्पण, ये त्याग, और कहते ना ये संघर्ष, इन सब के बिना ये नहीं मिलता है, और जो सक्सेस है वो ज़रूर दिखती है लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत है वो लोगों को कम दिखाई देती है। तो आपकी बातों से और आपने जो बताया उससे बहुत अच्छा लगा। मैम एक और बात दिल में आ रही है कि आप जिस फील्ड से हैं तो इसमें क्या इनोवेटिव आइडिया एग्जीक्यूट करने की आपकी कोशिश रहती है बच्चों के साथ?
1: मेरा

0: इनोवेटिव तो करते हैं, जैसे नए गाने हैं उनके साथ में कुछ चीजें चीज करती हूँ. वैसे मेरा ये है कि क्लासिकल चीज है, भगवान को किसी के साथ मिला नहीं सकते हैं.
1: राइट.
0: ऐसे कथक को किसी भी गाने के साथ मिक्स करना मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता.
1: जी, जी, जी.
0: क्योंकि मैं भी गुरु शिष्य परंपरा पद्धति से हूँ, तो हमारे गुरु लोग तो बिल्कुल बहुत ही स्ट्रिक्ट होते थे कि फिल्मी गाने नहीं, बिल्कुल भी नहीं.
1: बिल्कुल.
0: लेकिन अब आज की जो जनरेशन है उनको इंटरेस्ट ही तब आता है जब अगर कोई गाना सुनाता है. तो फिर मैं ये करती हूँ कि कोई क्लासिकल सॉन्ग है उसमें उनको बोलती हूँ कि अच्छा चलो तुम्हें कौन सा मतलब फोक आ रहा है तो उसका ट्राई करो
1: जी.
0: और कोई फोक गाना बज रहा है तो मैं बोलती हूँ चलो इसमें क्लासिकल के फुटवर्क करके बताओ. फिर बच्चों को बड़ा मजा आता है. सपोज अपन राजस्थानी सॉन्ग ले लेते हैं तो उसके साथ में उनको बोलती हूँ कि अभी आप अपना फुटवर्क करके बताओ. तो जो बच्चे थोड़ा ज्यादा अभ्यास कर चुके होते हैं 3 साल 4 साल का वो सारे बिट्स को पकड़ के और उसमें वो बता देते हैं. फिर मैं उनको बोलती हूँ अभी कल मुझे इसके बोल लिख करके लाना. तो फिर वो उसके साथ तबले के जो भी बोल सेट हो रहे होते हैं वो उनको करके लाते
1: हैं.
0: तो उस तरीके से क्या है थोड़ा सा नयापन आता है, बच्चों को बहुत मजा आता है. बाकी मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि कथक जहाँ पर भी जाएंगे वो एकदम शुद्ध नृत्य हो, उसमें कहीं पे कुछ
1: मिलावट नहीं हो. बिल्कुल मैम. आपने जी मैम आप कुछ कह रहे हैं.
0: जी.
1: आपने जिक्र किया कि म्यूजिक का जैसे पुराने गीत जो हैं वो आप सुनते हैं, तो संडे में जो आपका कुछ हिस्सा ये गीत भी लेते हैं मैम, ये म्यूजिक.
0: हाँ मैं म्यूजिक सुनती हूँ, ज्यादातर मैं रेडियो सुनती हूँ क्योंकि रेडियो में अचानक से जो सॉन्ग आते हैं ना
1: जी
0: वो एकदम मन को भा जाते हैं
1: जी.
0: और पुराने जो सॉन्ग आते हैं जय माला और ऐसे जो पुराने जो हम छोटे थे तब से
1: सुनते आ रहे हैं, बिल्कुल
0: ऐसी ऐसी चीजें हम सुनते हैं
1: जी.
0: तो उसमें क्या गाने रेंडम जो चलते हैं, अदरवाइज अपना प्लेलिस्ट तो फिक्स है कि अभी नैन से नैन मिला चलेगा अभी ये चलेगा. रेडियो सुनती हूँ उससे मुझे ज्यादा अच्छा लगता है. और अगर मुझे मेरी चॉइस से सुनना है
1: जी.
0: तो मैं जरूर सुनती हूँ. मैं मुझे पाकिजा के गाने सारे बहुत अच्छे लगते हैं
1: जी.
0: और चित्रलेखा के सारे गाने अच्छे लगते हैं. जनक जनक पायल बाजे के सुनती हूँ मैं बिल्कुल पूरा पूरा टाइम. मतलब गाने चलते ही रहते हैं बैक टू बैक. काम चल रहा है साथ साथ में गाने भी चल रहे हैं. कभी कभी ऐसा गाना आ जाते हैं तो चलो छोड़ो थोड़ा सा नाच भी लेते हैं.
1: हाँ एंजॉय मतलब पूरा करते हैं उस गाने को, पूरा अपने में उतार लेते हैं आप.
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल. मतलब पुराने गाने तो मेरे को एक एक बीट उनका ऐसे ध्यान है कि अब ये बजेगा, अब ये गाना है, अब ये ऐसे होगा, ऐसे मुड़की लेंगे क्योंकि हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं. और एक बहुत ही अमेजिंग चीज आपको पता चलेगी कि हमारे घर में
1: जी
0: पुराने टाइम में मतलब जैसे हम लोग बहुत छोटे थे तो रेडियो और एक टेप रिकॉर्डर भी लेकर आए थे पापा.
1: अच्छा.
0: तो उसके अंदर बहुत स्ट्रिक्ट ऑर्डर थे कि जैसे ही कोई दूसरे गाने आते हैं रेडियो बंद.
1: अच्छा.
0: और कैसेट कभी भी हमारे घर में दूसरी सॉन्ग चले ही नहीं, क्लासिकल
1: ही चला.
0: सुबह उठते ही पहले विष्णु सहस्त्रनाम शुभ लक्ष्मी जी उनका चलता था
1: जी जी जी.
0: उसके बाद भजन कीर्तन होते थे क्योंकि हम लोग पुजारी हैं, हम द्वारका से मैं बिलोंग करती हूँ, द्वारकाधीश के पुजारी हम लोग
1: जी.
0: तो घर में पूजा का पूरा माहौल
1: रहता है.
0: तो सुबह ये सब होता है और उसके बाद में तो मतलब आजकल इतना जो वेस्टर्नाइज हो गया है
1: जी.
0: और कथक वाले बच्चे भी करते हैं बहुत अच्छे वाले
1: फ्यूजन्स जी.
0: लेकिन हमको ये इन चीजों में बहुत पीछे है. हिप हॉप और ये नहीं आता है और उसका मुझे बिल्कुल मलाल नहीं है.
1: राइट राइट.
0: मुझे ये नहीं आता है.
1: नहीं बिल्कुल सही है मैम, जो ओरिजिनल तो बेस्ट ही होता है, फ्यूजन और मिक्सिंग तो खैर अलग पार्ट हो जाते हैं. मैम श्रोताओं आपको बताएं कि हमारे साथ हैं अनुपमा वकील जी. आप क्लासिकल डांसर हैं, पिछले 32 सालों से आप इस फील्ड में हैं. मैम अब वक्त हो चला है जब आपने जो दिल के करीब गीत की बात कही कि आप ऐसे गीत सुनती हैं पाकीज़ा चित्रलेखा, तो कोई एक ऐसा गीत आप हमारे श्रोताओं को गुनगुना के बता दें जो आपके दिल के बहुत करीब है और फिर उस गीत को हम भी सुनेंगे और हमारे श्रोता भी.
0: मैम गाने में तो मैं बहुत बुरी हूँ. गुनगुन
1: बिल्कुल मैम आप गुनगुना दीजिए. हाँ जी.
0: गाना मेरा बहुत फेवरेट है
1: जी.
0: वो मैं आपको बताऊंगी. उस गाने को अगर हम सुनेंगे उसके एक एक वर्ड में बहुत बड़े बड़े मीनिंग है उसके. और वो चित्रलेखा सॉन्ग से, चित्रलेखा मूवी से है
1: जी.
0: गाना है अरे मैं गाना तो बहुत गंदा गाऊंगी.
1: कोई इश्यू नहीं मैम.
0: वो है संसार से भागे फिरते हो भगवान को तुम क्या पाओगे.
1: क्या बात है। तो बिल्कुल अनुपमा जी।

0: आपकी जो पसंद का गीत है, बिल्कुल आप और हम और हमारे श्रोता मिलकर सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। आप फोन के माध्यम से हमसे जुड़े और बहुत अच्छी अच्छी आपने अपने एक्सपीरियंस जो है हमसे शेयर किया, बातें शेयर की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद।

0: मन की बात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार सुबह 11 बजे आकाशवाणी के सभी केंद्र सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ। इसके अतिरिक्त दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
1: श्रोताओं 31 मई में बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं कि मराठी रंगमंच में क्रांति लाने वाले अण्णा साहब किर्लोस्कर का जन्म 31 मई 1843 को बेलगांव जिले में हुआ था। संस्कृत कविता और नाटकों में रुचि रखने वाले विद्वान पिता के प्रभाव से बचपन से ही उनकी रुचि नाटकों की ओर हो गई थी। मराठी और संस्कृत की आरंभिक शिक्षा के बाद वे अंग्रेजी पढ़ने गए पूना और पढ़ाई के स्थान पर नाटक मंडली में सम्मिलित हो गए थे। अभिनय किया और नाटक भी लिखे। उनका लिखा हुआ श्री शंकराचार्य दिग्विजय पहला संगीत नाटक था श्रोताओं। बाद में उन्होंने राजपुताना के इतिहास पर नाटक लिखा और कालिदास की अमर रचना के आधार पर संगीत शाकुंतलम नामक नाटक की रचना की थी। श्रोताओं आज के ही दिन में दर्ज है अंग्रेजी और मलयालम की प्रसिद्ध लेखिका कमला दास। इनका जन्म 31 मार्च 1934 को केरल के त्रिचूर जिले के एक उच्च ब्राह्मण नायर परिवार में हुआ। बचपन से ही कविताएं लिखती थी और इनकी माँ जो थी बालमणि अम्मा एक बहुत अच्छी कवयित्री थी श्रोताओं, और उनके लेखन का कमला दास पर खासा असर पड़ा। यही कारण है कि उन्होंने कविताएं लिखना शुरू कर दिया।
2: दुनिया रा सारा सुख एक तरफ, हर माँ बड़न रो सुख एक तरफ,
3: निसंतान दंपत्यारे जीवन में खुशियारी उम्मीद, विनायका हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, गीता भवन रोड, जोधपुर।
1: श्रोताओं आज के दिन में एक और शख्सियत हैं जो भारत के प्रसिद्ध राजनेता, स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार और साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। जी हाँ, द्वारका प्रसाद मिश्र। इनका जन्म हुआ 5 अगस्त 1901 को और उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद को भी सुशोभित किया था। द्वारका प्रसाद मिश्र महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से जुड़ गए थे श्रोताओं। राष्ट्रवादी आंदोलनों में उन्होंने सक्रियता से अपना योगदान निभाया था।
4: राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निशुल्क ऑपरेशन डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल शिप हाउस पावटा जोधपुर।
1: 1964 तक सागर विश्वविद्यालय

0: के कुलपति के रूप में अपना जीवन जो है सेवाएं दी थी। उनके विद्या व्यसन के संबंध में कहा जाता था कि विश्वविद्यालय के किसी प्राध्यापक या विद्यार्थी से अधिक उसके कुलपति जो थे वो अध्ययनरत रहते हैं।
1: बोल बोल के थक गया।
2: क्या हुआ?
1: नया फीडबैक चाहिए।
2: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
1: करेक्ट।
3: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर सीएमएस पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर सीएमएस पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर।
1: चले
2: ले आ गया नया फीडबैक।
4: आरबीआई कहता है
5: पहले अपना बैंक फिर आरबीआई ओम्बुड्समैन।
6: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

अभी आप सुन रहे थे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार 102.1 मेगाहर्ट्ज पर यह एफएम सन सिटी चैनल है। बातें और गीत आपके लिए प्रोग्राम लेकर इस स्टूडियो में आ चुकी हैं सीमा शर्मा।

जी हाँ श्रोताओ, बातों में हो अपनापन, गीतों में हो ढेर सारा प्यार, सुरों की छाओ में बीते ये सुहाना सा संसार, कभी हंसी की फुहारें, कभी यादों की रीत, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम बातें और गीत।

बताना चाहूंगी। एक बार एक गरीब किसान था, अचानक से उसके घर पे एक यात्री जो था वहां से सफर कर रहा था, और क्योंकि रात काफी हो चुकी थी तो एक यात्री आता है। किसान जो था उसके पास भोजन कम था श्रोताओं, फिर भी उसने अपने हिस्से का जो खाना था वो मेहमान को खिला दिया। अगले दिन वही यात्री उसकी मदद का कारण बन जाता है और किसान का जीवन बदल जाता है। इस कहानी का संदेश क्या है? जी हाँ, इस कहानी का संदेश यही है कि सच्ची मेहमान नवाजी जो होती है वो संसाधनों से नहीं बल्कि होती है भावनाओं से। तो इसी कहानी के संदेश में छुपा है हमारा आज का टॉपिक, जो हम बताएंगे आपको इस गीत के बाद।

0: उफ, इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है। कहां कहां इलाज ना करवाया।
1: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज, बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
2: सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
3: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु
2: कमला नगर अस्पताल, पाल लिंक रोड, जोधपुर।
4: जी श्रोताओं, शब्दों की खुशबू, सुरों का संगीत, दिल से दिल तक पहुंचाएंगे गीत, कुछ होंगी बातें, कुछ यादों की प्रीत। स्वागत है आपका कार्यक्रम बातें और गीत में। मैं हूं आपके साथ सीमा शर्मा, श्रोताओं और अनाउंसर ऑन ड्यूटी हैं हिना। और जब ये जोड़ी मिलती है श्रोताओं, तो बातें और गीत जो है उसमें बातों की मिठास और घुल जाती है, गीतों की सौगात कुछ अलग बन जाती है और तैयार हो जाता है कुछ दिलचस्प बातों से, प्यारी प्यारी यादों से और शानदार गीतों के सफर के साथ बातें और गीत कार्यक्रम। जी हां श्रोताओं, बातें और गीत कार्यक्रम में जो आज का टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं, एक स्टोरी के माध्यम से आप

0: चाहे गर्मी हो या जाड़ा, इलाज हो हर मौसम में प्यारा। इस गर्मी से घबराकर अपनी आंखों की सर्जरी ना टालें। विजिट डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
2: श्रोताओं, प्रोग्राम चल रहा है बातें और गीत, और मैं हूं आपके साथ सीमा शर्मा, और प्रोग्राम 102.1 एफएम पर आप सुन रहे हैं। मैंने टॉपिक अभी रिवील नहीं किया क्योंकि यहां पे आपकी कुछ ब्रेन एक्सरसाइज मैं करवा रही हूं। मैंने आपको एक क्ल्यू दिया था, मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी और आपसे ये पूछा था कि आज का टॉपिक क्या हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसी स्टोरी में छुपा था आज का टॉपिक। मुझे समझ में आ गया है कि एक छोटी सी क्ल्यू आप और डिमांड कर रहे हैं, तो चलिए दे देती हूँ आपको एक और छोटा सा क्ल्यू। एक गांव में एक वृद्ध दंपत्ति रहा करती थी। श्रोताओं, एक बरसाती रात में उनके घर आया एक अजनबी। उसने मांगी शरण। घर छोटा था, भोजन कम था, फिर भी उन्होंने उसे अपने परिवार की तरह रखा। वर्षों बाद वही व्यक्ति एक बड़े अधिकारी के रूप में लौटा और उस परिवार की मदद करनी चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि वृद्ध दंपत्ति ने क्या कहा? उन्होंने कहा, हमने आपकी सहायता किसी लाभ के लिए नहीं की थी, बल्कि इंसानियत के लिए की थी। जी हाँ श्रोताओं, यही है सच्ची मेहमान नवाजी। तो आज का जो टॉपिक है वो भी कुछ ऐसा ही है जो हमारे भारत की परंपरा है, यानी कि अतिथि देवो भवः।

0: चाहे गर्मी हो या जाड़ा, इलाज हो हर मौसम में प्यारा। इस गर्मी से घबराकर अपनी आंखों की सर्जरी ना टाले। विजिट डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।
1: पथरी प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायक हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
2: RGHS वचिरंजीवी योजना के अंतर्गत निःशुल्क ऑपरेशन। पथरी मतलब विनायक हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।
3: दुनिया रा सारा सुख एक तरफ, हर माँ बड़न रो सुख एक तरफ,
4: निसंतान दंपत्यारे जीवन में खुशियाँ री उम्मीद। विनायका हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, गीता भवन रोड, जोधपुर।
5: अतिथि देवो भव। जी हाँ श्रोताओं, अतिथि जिसके न आने की तिथि और न जाने की डेट, ऐसा ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है श्रोताओं, बल्कि ये अतिथि देवो भव जो है, ये हमारी संस्कृति की पहचान है, हमारे संस्कारों की पहचान है। हमारे यहाँ मेहमान को भगवान के समान माना जाता है, और कहते ना कि मेहमान जो है भगवान का रूप है। जिस तरह भगवान के आने की और जाने की डेट नहीं पता होती, बिल्कुल उसी तरीके से मेहमान जो है उसे भी अतिथि कहा जाता है। और जब मेहमान यानी कि अतिथि घर पर आता है, तो मेहमान नवाजी में पूरा परिवार एकजुट हो जाता है। और श्रोताओं, ये जो मेहमान नवाजी है केवल चाय पानी परोसने तक सीमित नहीं होती, बल्कि ये होती है सम्मान, अपनापन और प्रेम व्यक्त करने का एक बहुत ही सुंदर माध्यम। तो जब भी आपके घर कोई अतिथि आते हैं, शायद ये भी हो सकता है कि कई बार कोई अनजान लोग भी हमारे घर आते हैं, लेकिन दिल जो है उनकी मेहमान नवाजी में बिल्कुल तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि मेहमान नवाजी का, या मेहमान नवाजी कहें या मेहमानों का स्वागत करना जो है, ये हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है।

0: राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निशुल्क ऑपरेशन डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल शिप हाउस पावटा जोधपुर।
1: उफ़, इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है, कहाँ कहाँ इलाज ना करवाया।
2: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
3: सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
4: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु
3: कमला नगर अस्पताल, पाल लिंक रोड, जोधपुर।
5: श्रोताओं, भारत की संस्कृति में अतिथि को देवता का स्थान दिया गया है और ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में मेहमानों का सम्मान होता है वहां खुशियां अपने आप रास्ता ढूंढ लेती हैं। जी हाँ, मेहमान नवाजी केवल खाने पीने का इंतजाम नहीं है श्रोताओं, ये किसी व्यक्ति को ये एहसास दिलाने की वो आर्ट है, वो कला है कि वो आपके लिए खास है। जी आप पहले के समय की बात याद करिए, बिल्कुल चलिए अपने बचपन में और याद करिए कि जब कोई अतिथि आपके घर आता था तो पूरा परिवार जो था वो बहुत उत्साहित हो जाता था। एक अलग सा माहौल, जैसे कोई सेलिब्रेशन हो, ऐसा माहौल घर में हो जाता था। जो पेरेंट्स हुआ करते थे वो बच्चों को शुरू से ये ट्रेनिंग दिया करते थे कि जब भी कोई अतिथि आएगा तो ट्रे में आप पानी लेकर आएंगे, और ट्रे में जो पानी लाने का तरीका हुआ करता था वो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाया करते थे। और पहले के समय में जब इस तरह से कोई अतिथि आता था तो श्रोताओं बच्चे जो थे वो दौड़कर पानी लाने के लिए चले जाते थे बिना इंस्ट्रक्शन के, और बहुत ही रिस्पेक्टिव तरीके से जो बड़े लोग हुआ करते थे वो कंफर्टेबल किया करते थे, जो भी अतिथि आते थे उनको बिठाते थे। और सबसे प्यारी बात ये हुआ करती थी कि जो भी अच्छी, चाहे क्रॉकरी हो, चाहे अच्छे खाने के बर्तन जो भी हुआ करते थे, बेस्ट जो हुआ करता था वो अतिथि को दिया जाता था, और बेस्ट ऑफ

भोजन भी परोसा जाता था। तो ये तो बात हुई तब जब मेहमान नवाजी को दिल के बहुत करीब पाया जाता था। लेकिन श्रोताओं, आजकल हम देखते हैं, आजकल सुविधाएं बहुत बढ़ गई हैं। आजकल हम कहते हैं ना कि किसी भी तरह का खाना जो है फटाफट ऑर्डर कर सकते हैं, और खाना ऑर्डर करके हम सर्व भी कर सकते हैं। लेकिन समय कुछ कम सा हो गया है, और जो ये समय कम हुआ है, इसने मेहमान नवाजी की जो उस उत्साह को, उस सेलिब्रेशन को भी काफ़ी फीका सा कर दिया है। तो बस हम आपसे यही कहेंगे कि करना क्या है, बस एक मुस्कान और अपनापन, इसमें कुछ भी कीमत नहीं लगती है। श्रोताओं, जब भी कोई अतिथि आपके घर आए, तो एक मुस्कान और एक अपनेपन के साथ आप अपने दिल से बड़ी मेहमान नवाजी कर सकते हैं।

0: डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।
1: कितनी तन्हा हूँ मैं, कितना अकेलापन, ऐसे में कौन मेरे साथ रहे। मेरा मोबाइल और मेरे मोबाइल में मेरा फेवरेट रेडियो सन सिटी। कोई मिल गया। हमेशा मेरे साथ मेरा अपना चैनल रेडियो सन सिटी। सुनते रहिए 102.1 FM रेडियो सन सिटी। इट्स माय चैनल।

जी श्रोताओं, बात चल रही है मेहमान नवाजी की, तो जोधपुर की अपनायत की बात ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। राजस्थान में पधारो मारे देश, इसके जिक्र ना हो तो कैसे हो सकता है। जी श्रोताओं, राजस्थान की जो मेहमान नवाजी है, कोई एक किताब जो नहीं है जिसे हम पढ़ लें, बल्कि अगर मैं यूं कहूं कि यहाँ की जो रेत है, यहाँ के जो महल हैं, यहाँ के जो गांव हैं, उनके कण कण में बसी है ये अनूठी परंपरा मेहमान नवाजी। जी हाँ, राजस्थान की मेहमान नवाजी को पधारो मारे देश के भाव से भी जाना जाता है। यहाँ के सत्कार की कहानी, यहाँ के अपनायत की कहानी बहुत सारी हैं। और आप हमेशा कहते ना कि आप कहीं भी निकल जाइए, कोई भी अनजान जगह पर आपको कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो आपको बहुत ही कंफर्ट जोन में ले आएगा, बहुत ही परिचित सा माहौल देगा। जी हाँ, राजस्थान में मेहमान नवाजी की शुरुआत अक्सर शुरू होती है उस मीठी सी चाय की चुस्की के साथ, या फिर कहते हैं कोई मीठा ठंडा पेय, यानी कि मीठा ज़रूर होना चाहिए, चाहे तो ठंडा हो या फिर गर्म चाय की मनुहार। गाँव में किसी भी मेहमान को बिना चाय पानी पिलाए जाने नहीं दिया जाता, चाहे वो अनजान व्यक्ति ही क्यों ना हो। यहाँ तक कि कई बार मीठे जल या छाछ जो होती है श्रोताओं, उससे भी आगंतुकों का स्वागत किया जाता है। आप जानते हैं, ऐतिहासिक रूप से अगर हम बात करें तो जब राजा महाराजाओं के दरबार में मेहमान या अन्य रियासतों के राजा आते थे तो उनके स्वागत में तोप की सलामी दी जाती थी, भव्य दावतें की जाती थी और लोक नृत्य संगीत का आयोजन किया जाता था। जी हाँ, अपनी जान देकर भी मेहमान की रक्षा करना राजस्थान के राजपूतों का परम धर्म रहा है।

श्रोताओ, हमारे देश में तो ये परंपरा सच में अनूठी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अलग अलग संस्कृतियों में भी इसे अलग अलग तरीके से निभाया जाता है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मेहमानों के स्वागत के अपने खास और रोचक तरीके हैं। जी हाँ, अगर हम जापान की बात करें तो यहाँ मेहमानों के स्वागत के लिए चनोयू या फिर टी सेरेमनी, जिसे हम चाय समारोह कहते हैं, ये की जाती है। जी हाँ, तो जो हम बात कर रहे हैं जापान की, यहाँ मेहमानों के स्वागत के लिए चनोयू या फिर टी सेरेमनी की जाती है, जो शांति और आदर का प्रतीक है। अगर हम मिडिल ईस्ट और अरब कंट्रीज की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे इस संस्कृति में मेहमानों का स्वागत कहवा यानी कि अरबी कॉफी और खजूर पेश करके किया जाता है। मेहमान को कभी भी खाली कप नहीं दिया जाता, श्रोताओं। और अगर हम रशिया की बात करते हैं तो यहाँ मेहमानों का स्वागत पारंपरिक ब्रेड यानी कि खारा वाई जो होती है और नमक देकर किया जाता है, जो प्रतीक है स्वास्थ्य और समृद्धि का। ग्रीस की तरफ अगर हम चलते हैं तो ग्रीक संस्कृति में मेहमान नवाजी के लिए फिलोस्किसिनिया शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ होता है अजनबियों के प्रति प्यार।

0: कसम, खाओगे ना?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं।
0: हाँ।
1: तेरी कसम, आऊंगा।
2: आकाशवाणी के खजाने में खूबसूरत हर जमाने के गीत, आकाशवाणी के प्रोग्राम पेश करने वालों की बेमिसाल आवाजें।
3: नमस्कार।
4: दिल ये चाहे हवाओं से खेलो,
3: अपना शहर अपनी शान।

0: मेरा फेवरेट रेडियो सन सिटी,
1: जो बातें सुनता है जो बातें करता है।
2: FM सन सिटी
3: जोधपुर FM, हार्ट बीट ऑफ जोधपुर,
4: नए अंदाज में।
5: जो दिन भर घर घर में गूंजती है,
6: ट्यून कीजिए FM।

जी अशोदा, मेहमान नवाजी के बहुत सारे लाभ भी हैं, क्या आप जानते हैं? जी हाँ, इसके सामाजिक और वैज्ञानिक लाभ के बारे में आपको बताऊं कि अगर हम सामाजिक लाभों की बात करें तो रिश्तों में मजबूती आती है। जब आप किसी का दिल से स्वागत करते हैं तो आपसी विश्वास बढ़ता है, प्यार बढ़ता है और जो आपके रिश्ते हैं उनमें मजबूती आती है और बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग हो जाता है। मानसिक शांति और खुशी मिलती है। श्रोताओं, वैज्ञानिक लाभ हमने कहा तो उसके लिए आपको बताऊं कि कई अध्ययनों से ये बात सामने आई है कि दूसरों की मदद करने और उन्हें खुश देखकर हमारे मस्तिष्क में खुशी का हार्मोन यानी कि एंडोफ्रिन जो होता है उसका स्राव बढ़ता है। और जब इस हार्मोन का स्राव बढ़ता है यानी कि ये फ्लो ज़्यादा करता है तो खुशी का हार्मोन इसे कहा जाता है। तो आप देख लीजिए कि आपको खुशी महसूस होती है। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट एडवांटेज जो है मेहमान नवाजी का वो ये है कि नेटवर्किंग और संस्कृति का आदान प्रदान। जी हाँ, इसके जरिए नई संस्कृतियाँ, नए विचार, नए अनुभव, इनको जानने और समझने का मौका मिलता है। तो जब इतने सारे फायदे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि एक दूसरे से रिश्तों में मिठास, प्यार, विश्वास, ये सब कुछ बढ़ने का छोटा सा तरीका है मेहमान नवाजी, तो क्यों ना करें इसे।

शादियां शुदा मेहमान घर की रौनक होते हैं। अच्छी मेहमान नवाजी महंगे पकवानों से नहीं मीठे व्यवहार से होती है। दरवाजे से पहले खुलने चाहिए दिल। जी हाँ, अपनापन सबसे बड़ा उपहार है। आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी बातें

रखनी है, नहीं ये सब बातें अप्लाई करते हैं तो अपने आप ऑटो मोड में हमारे बिहेवियर में आ जाती हैं। तो श्रोताओं, आज हमने मेहमान नवाजी की उस परंपरा की बात की जो हमारी संस्कृति की पहचान है। चाहे समय कितना भी बदल जाए, सम्मान, प्रेम और अपनापन कभी पुराने नहीं होते। तो आज का बातें और गीत यहीं तक। दीजिए अनुमति हमारी पूरी टीम को। घर की सुंदरता दीवारों से नहीं, वहां मिलने वाले सम्मान से होती है। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध न हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शब्द कीर्तन,
3: कोई बोले राम राम।
2: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना चैनल।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा।

0: अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: बोल बोल के थक गया। क्या हुआ? नया किरदार चाहिए
3: तो पहले कैप्टन से बोलो। नहीं सुना तो मैनेजर से।
2: करेक्ट। तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर सीएमएस पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर सीएमएस पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर। चले ले आ गया नया किरदार।
4: आरबीआई कहता है
5: पहले अपना बैंक फिर आरबीआई ओम्बुड्समैन।
6: पर्सनल लोन ऑफर
7: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
6: फ्री ट्रिप टू दुबई
7: ये भी ब्लॉक? कितना ब्लॉक करूं यार?
8: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
7: तो क्या करूं?
8: कॉल उठाओ फिर ट्राई डीएनडी ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो बैंकिंग ट्रैवल इंश्योरेंस और सबमिट, बस कुछ सेकंड्स का काम।
7: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
8: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है, सिर्फ ब्लॉक नहीं रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई डीएनडी ऐप डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
9: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
10: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आपसे जुड़कर मुझे बेहद खुशी हो रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे देश के लोग देश हित में समाज हित में ऐसी अद्भुत चीजें कर रहे हैं और जब उनके विषय में सुनते हैं तो हमें एक नई प्रेरणा मिलती है। आज कार्यक्रम की शुरुआत मैं एथलेटिक्स में देश की ऐसी ही उपलब्धि से करूंगा। कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया, देश भर से आए थे। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं सबसे पहले तो इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों एक इवेंट जिसकी देश भर में बहुत चर्चा हो रही है वह है 100 मीटर रेस, 100 मीटर की दौड़। महज 2 दिनों के भीतर मेंस 100 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड 3 बार टूटा। जिन 2 एथलीट्स ने यह कमाल दिखाया है वे हैं गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर। मैंने सोचा इस बार मन की बात में इन दोनों खिलाड़ियों से बात की जाए। अनिमेश जी नमस्कार, गुरिंदर वीर आपको भी नमस्कार, सत श्री अकाल।
11: नमस्कार सर। नमस्कार।
12: नमस्कार सर।
10: अच्छा भैया आपने तो बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, आपकी जोड़ी ने भी बड़ा कमाल किया है। हमने संगीत में तो जुगलबंदी देखी थी लेकिन चुनौती में भी जुगलबंदी होती है कि एक बार एक चुनौती दे फिर दूसरा उस चुनौती को उठा ले फिर तीसरी बार कर ले। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय रहा है आपका। मैं चाहता हूं कि मन की बात के श्रोताओं को पता चले कि आप लोग के विषय में उनको जानकारी हो, आपने जो पराक्रम किया है उसका पता चले।
11: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। मैं 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूं एंड मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूं सर एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया एंड मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ, मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर से पास आउट हूँ एंड मैं पहले फुटबॉल खेला करता था एंड मेरे पेरेंट्स कोविड के समय मुझे थोड़ी बहुत छूट देते थे कि तू जाके बाहर दौड़ ले या खेल ले। तो जब कोविड खत्म होने लगा तो मेरे फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर एंड मैं पार्टिसिपेट किया एंड मुझे पता नहीं था कि वहां से नेशनल

0: मेरा सिलेक्शन है, मैं वहां से नेशनल का सिलेक्ट हुआ एंड आज मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली। नमस्ते
1: और गुरिंदरवीर जी का क्या है?
0: सर, मेरा नाम गुरिंदरवीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ और मैं इंडिया का सबसे तेज स्प्रिंटर हूँ। अभी मैंने 100 मीटर में 10.09 का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है और मैं पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ। मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर दोनों स्पोर्ट्स करते थे, तो हमारे इंडिया का कल्चर है जब भी कोई त्यौहार होता है जैसे दिवाली जैसे नया साल, तो हम अपने घर की सफाई करते हैं। तो मैं अपने फादर की ट्रॉफीज और मेडल्स की सफाई करता था, तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता था। मैं बहुत खुश होता था जब मैं कोई ट्रॉफी साफ करता था, तो मैं पूछता था अभी ये ट्रॉफी कहाँ जीती, ये मेडल कहाँ जीता, ये फोटो कब किया है। तो फिर मेरे को वो अपनी

0: ट्रॉफी कहाँ जीती, ये मेडल कहाँ जीता, ये फोटो कब किया है, तो फिर मेरे को वो अपनी कहानी सुनाते थे भी मैं यहाँ खेलने गया, मैंने ये नेशनल मेडल जीता, ये मैंने अपनी टीम को इतना जिताया। तो फिर मैं भी उनको बोलता था भी मैं भी कोई स्पोर्ट्स करनी है। वो रनिंग करने जाते थे मॉर्निंग में, तो मैं उनको बोलने लगा भी मेरे को भी लेके जाया करो आप अपने साथ। तो मेरे को लेके जाने लगे, जो उन्होंने अपनी गेम स्पोर्ट्स में सीखा था तो मेरे को सिखाने लगे, तो मेरा इंटरेस्ट बनने लगा। मैंने यूसेन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटता हुआ देखा। तो एक स्टोरी है ऐसे फनी, मैं अभी टीवी देख रहा था तो मम्मी ने मेरे लिए टीवी बंद कर दिया, अभी अभी बेटा पढ़ने का टाइम हो गया, आप पढ़ो। तो मैं कभी ठीक, आप मेरे को टीवी नहीं देखने देते, एक दिन ऐसा आएगा आप मेरे को टीवी में ढूंढोगे भी, देखो वो गुरिंदर दौड़ रहा है। तो मेरे को भी खुशी होती है जब मेरी माँ मेरे को टीवी पे दौड़ता हुआ देखती है।
1: वाह वाह, बड़े शानदार बात है भी आपकी तो।
0: हाँ जी, मिडिल क्लास फैमिली है सर। फिर मेरे फादर वो भी वॉलीबॉल खेलते थे, घर की प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स छोड़ दी। उनका जो सपना पूरा करने वाला रह गया, तो उन्होंने मेरे अंदर वो सपना देखा भी मेरा बेटा वो सपना पूरा करेगा। तो मैं उनसे बातें करता था, फिर सुनता था मिल्खा सिंह इतनी मेहनत करते थे, मैं उनको बोलता था मैं भी एक दिन आपका सपना पूरा करूंगा। तो बोलते सपना पूरा ऐसे नहीं होता, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। मिल्खा सिंह जी खून की उल्टियां करते थे, धूप में भागते थे, सारा सारा दिन ट्रेनिंग करते थे। तो वो चीजें मेरे को इंस्पायर करती थी, मेरे फादर मेरे को इंस्पायर करते थे कि मैं भागूंगा अपने देश के लिए मेडल लाऊं, जीतूं। और ये भी था भी जब मैंने इवेंट चूज किया 100 मीटर, सभी मेरे को बोलते थे भी 100 मत करो, 100 इंडियंस का इवेंट नहीं है, इंडियंस की बॉडी 100 मीटर के लिए बनी ही नहीं है। तो मैं और मेरे फादर हमेशा बोलते थे भी गुरिंदर हमने ये चूज किया है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, जो हमें बोलते हैं भी हम नहीं कर सकते, हम उसको करके दिखाएंगे और तू करके दिखाएगा, मुझे तेरे पे भरोसा है। तो वो भरोसा जब मेरे को मेरे फादर ने मेरे पे किया, तो मैं उस भरोसे को अपनी हिम्मत बना के मैं चला और मैं आज हर इंडियन बोलता भी इंडियन स्प्रिंट कर।
1: देखिए आप दोनों ने बहुत बड़ा कमाल किया है, और सिर्फ 2 दिनों के भीतर आप दोनों ने 3 बार नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है 100 मीटर रेस में दौड़ना। और जैसा गुरिंदर वीर जी ने कहा कि लोग कहते हैं कि भारत के लोगों का तो बदन इस काम के लिए है ही नहीं, इतना मुश्किल होते हुए भी आपने काम किया। तो ये दोनों से मैं जानना चाहूंगा और मन की बात के श्रोता भी सुनना चाहेंगे कि कौन सा जज्बा था, क्या जीत थी, क्या सोचा था और कैसे कर रहे थे, ये कितना मुश्किल होता है।
0: जी सर, मैं गुरिंदर, मैं जब स्टार्टिंग में सर बहुत स्ट्रगल था, बहुत बार डाउट भी आया कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही चूज किया, क्योंकि हर बार आप नहीं जीते, कभी कभी आप सीखते हो। जब मैं हारता था, जब मैं सही परफॉर्मेंस नहीं आती थी, कोई इंजरी आ जाती थी, तो मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट करते थे भी कोई नहीं, एक दिन बुरा चला गया, एक साल बुरा चला गया, तो इससे जिंदगी खराब नहीं होती, सपने देखना नहीं छोड़ते। तो मेरे कोच ने भी मेरे को ये सिखाया, अगर तू नहीं करेगा तो कोई और नहीं कर पाएगा। तो ऐसे जब हमारी कम्युनिटी, हमारे आसपास के लोग हमें उत्साहित करते हैं, तो हमारा कभी वो मोटिवेशन नहीं टूटता।
1: अनिमेश जी,
2: सर मुझे तो सारे लोग बोलते थे कि जब मैं 2021 में चालू किया एथलेटिक्स, तो मुझे बोलते थे कि देख ये नया नया फील्ड है, तू कर पाएगा कि नहीं। तो मैं बोला कि अब मैं इस फील्ड में घुसा हूँ तो करूंगा ही। मेरे पापा भी हमेशा मुझे बोलते थे कि तू इस फील्ड में घुसा है तो कभी पीछे मुड़ के देखना मत, क्योंकि सोचते तो सभी हैं कि ये करना है वो करना है, बट करके बहुत कमी दिखाते हैं। तू बस इस फील्ड में घुसा है तो इस पे अमल रहना, इस पे आगे बढ़ना, एंड देखो सारी फैसिलिटीज सब चीज हम लोग सपोर्ट करेंगे, फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट सब चीज हम लोग करेंगे, बस तू मेहनत कर और इंडिया को दिखा कि इंडियंस भी भाग सकते हैं। क्योंकि ये मुझे भी लोग बोलते थे कि इंडियंस की जीन्स ऐसे नहीं है कि वो sub-10 या sub-10-1 के अंदर भाग सकते हैं या कोई भी स्प्रिंट कर सकता है, बट अभी हम दोनों ने ऐसे प्रूफ किया कि इंडियंस भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड नहीं है हमारे लिए, हम भी सब कुछ कर सकते हैं। तो सर ये सारी चीजें मुझे बहुत मोटिवेट करती है, एंड जैसे जैसे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं हम और टाइमिंग तोड़ रहे हैं अपना, एंड बाकी इंडियंस को भी ये चीज दिख रहा है कि इंडियंस भी कर सकते हैं, एंड हम और करेंगे सर अभी। एंड अभी हम दोनों का सिलेक्शन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी हुआ है, तो वहाँ अपकमिंग कॉम्पिटिशन में हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे।
1: अच्छा देखिए, मेरे मन में भी एक कुतूहल है और लोगों को भी होगा, मैंने सुना है कि आप दोनों अच्छे दोस्त भी हैं, आप दोनों ने कुछ ठान रखा था क्या कि तुमने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा तो मैं तेरा रिकॉर्ड तोड़ दूंगा? पहले अनिमेश बता दे।
2: सर जी पहले रिकॉर्ड 10.18 का था जो कि मेरा ही था, एंड देन उसको गुरिंदर ने सेमीफाइनल में तोड़ दिया 10.17 करके, एंड मैंने फिर से उसको सेमीफाइनल 2 में 10.15 करके तोड़ दिया। तो उस समय जब मेरा सेमीफाइनल हुआ तो हम दोनों ही खुश थे कि हाँ चलो ठीक है।

0: आज रिकॉर्ड टूटा है एंड चलो हम दोनों ने तोड़ा है ऐसा, क्योंकि उस समय कंपटीशन में राइवलरी रहती है, बट हम दोनों ठान के रखे थे पहले से ही कि उससे पहले हम लोग सऊदी अरेबिया भी गए थे कंपटीशन करने के लिए, तो वहां भी हम दोनों रूममेट थे, तो हम दोनों वहां भी ऐसा बात करते थे कि इंडिया के स्प्रिंटिंग को आगे लेके जाना है एंड हमारे हाथों में है वो चीज, हम जो करेंगे वही बाकियों को मोटिवेट करेगा।
1: गुरिंदर वीर क्या कहना चाहेंगे?
0: हम दोनों ने डिसाइड किया था कि हम दोनों अच्छा भागेंगे, तो कभी भी सर एक दूसरे को जरूरत होती है तो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। जैसे अभी रिकॉर्ड करने से पहले जब मैंने रिकॉर्ड किया फिर अनिमेश ने किया, तो जब हम वार्म अप कर रहे थे तो मैं अनिमेश को बता रहा था अभी अनिमेश वो ब्लॉक सही है उस पे जाके बैठ, वहां पे स्ट्राइड कर ले, हम वार्म अप यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे वार्म अप सही होगा। तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब, तो दूसरा भी इम्प्रूव करता है, हम भी इम्प्रूव करते हैं। तो दोस्ती भी चाहिए सर, बट जब हम ग्राउंड के बाहर हैं कंपटीशन के बाहर हैं तो हम दोस्त हैं, बट जब हम ग्राउंड में चले जाते हैं तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो जाते हैं। तो ये होता भी मैं इससे फास्ट भागूंगा, मैं इससे फास्ट भागूंगा।
1: देखिए, आप लोगों ने जो स्पर्धा की है ना, वो देश का मान बढ़ाने के लिए की है, देश को भविष्य में इस जगह पे पहुंचाने के लिए की है और एक पॉजिटिव स्पिरिट से की है। और मैं मानता हूं कि आपका ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, खेलना भी है, एक दूसरे को चुनौती भी देना है और फिर आगे निकलने के लिए प्रयास करना है और फिर आगे जाने के लिए एक दूसरे की मदद करना है, ये अद्भुत काम किया है आप लोगों ने। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप देश का नाम भी रोशन करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, बहुत प्रगति होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी।
0: शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका सर,
1: बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है, तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं। साथियों, हमारे यहां गर्मी से लड़ने का तरीका कई बार रसोई में भी मिलता है, आपने भी देखा होगा। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे घर की रसोई का स्वाद बदल जाता है, रसोई का प्रकार बदल जाता है, कहीं मटके का पानी निकल आता है, कहीं दही जमने लगता है, तो कहीं कच्चे आम उबलने लगते हैं, और फिर शुरू होता है देसी पेय का दौर। देसी पेय से आप भी परिचित हैं, अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो काफी जगह आपको मिलेगा आम पन्ना, कच्चे आम का स्वाद और गर्मी से राहत भी। पंजाब हरियाणा जाइए तो लस्सी मिल जाएगी, बड़े गिलास वाली लस्सी, राजस्थान और गुजरात में छाछ, जैसे हर खाने की साथी बन जाती है। और बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है, पेट भी भरे ताकत भी दे। कोंकण और गोवा में कोकम शरबत, सोल कढ़ी, दक्षिण भारत में पानकम, नीरमोर, संबारम और ओडिशा में बेलपना, वो सिर्फ पेय नहीं, भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है। और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है, हमारे खेत खलिहान से निकली है, कोई बड़ी ब्रांडिंग नहीं है, लेकिन पीढ़ियों का अनुभव उनमें समाया हुआ है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए। साथियों, गर्मी आते ही एक और चर्चा हर घर में शुरू हो जाती है और वो है आम। आम आम चर्चा का विषय होता है। भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की बात न होती हो। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की एक खास बात होती है, पकने के बाद भी उसका

रंग कई बार हरा ही रहता है। बिहार का जर्दालू, जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाए, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगन पल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। और साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। आज मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए। साथियों, गर्मी के इन दिनों में ऐसे तो स्कूलों की छुट्टियां होती हैं, लेकिन मैं एक ऐसे क्लास की बात करूंगा जिसमें आपका एडमिशन करने का मन कर जाएगा। साथियों, एक स्थिति की कल्पना कीजिए, एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे भी आते हो, युवा भी और बुजुर्ग भी, जहां कोई फीस ना हो, कोई बड़ी बिल्डिंग ना हो, कोई क्लासरूम भी ना हो, और सबसे रोचक बात, वहां क्लास नदी में लगती हो। साथियों, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्चा प्रयास है। केरलम के आलुवा में साजी वला शेरिल जी ऐसा ही एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहां तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। इस प्रयास के पीछे एक पीड़ा भी छिपी है। कुछ वर्ष पहले एक नौका हादसे में कई छात्रों की मृत्यु हो गई थी। उस घटना ने साजी जी को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, अगर बच्चों को तैरना आता होता तो शायद कई जानें बच जाती। बस यहीं से शुरू हुआ उनका ये अभियान। साथियों, साजी वला शेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, बीते दिनों मुझे यूरोप के नीदरलैंड जाने का अवसर मिला। वहां मैं कई मीटिंग में शामिल हुआ। इसी दौरान एक ऐसा क्षण आया जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। नीदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर मुझे देश विदेश से लगातार संदेश मिल रहे हैं। लोग खुशी जता रहे हैं, गर्व व्यक्त कर रहे हैं। दुनिया भर के तमिल समुदाय में भी इसे लेकर विशेष उत्साह है। साथियों, इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है, इसलिए आज मैं इससे जुड़ी कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इन ताम्र पट्टिकाओं में चोला वंश की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। साथियों, हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए
लगातार प्रयास कर रही है।

इसी क्रम में किन्यान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहां तीन दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। ये पांडुवंशी राजवंश के महर्षि बालार्जुन के शासनकाल से जुड़ी मानी जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस छठी सातवीं सदी के हैं, यानी 1400-1500 साल पुराने। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। साथियों, हम भारतीयों में खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी को लेकर हमेशा विशेष आकर्षण रहा है। हमारे देश में आज भी सदियों पुरानी ऑब्जर्वेटरीज मौजूद है। यहां अद्भुत मैथमेटिकल डिस्कवरीज हुई है। नेविगेशन हो, पंचांग हो या हमारे पर्व त्योहार, इन सब का संबंध आकाश और तारों से रहा है। हमारे यहां एस्ट्रोनॉमी ने हर पीढ़ी में कौतूहल जगाया है, उसे एक्सप्लोरेशन के लिए प्रेरित किया है और आज के युवाओं में भी इसे लेकर काफी उत्साह दिखाई देता है। आजकल आप भी देखते होंगे, देश भर में एस्ट्रोनॉमी क्लब्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, स्कूलों से लेकर पार्कों तक इनकी गतिविधियां दिखाई देती हैं। मुझे बेंगलोर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के बारे में जानकारी मिली। यहां ऑब्जर्वेशनल सेशंस आयोजित किए जाते हैं। इस संस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में एस्ट्रोनॉमी को लोकप्रिय बनाने का मिशन भी शुरू किया है। खगोल मंडल नाम की टीम ने 30 घंटे का एक बहुत इनोवेटिव कोर्स शुरू किया है। साथियों, रात में तारों को निहारना अपने आप में अद्भुत अनुभव होता है। एस्ट्रो केरला नाम की एक संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप और वर्कशॉप आयोजित करती है। यहां युवा साथी टेलीस्कोप बनाना और स्टार मैप्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं। राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए हैं। ज्योतिर्विद्या परिसंस्था भी एस्ट्रोनॉमी के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। यहां ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज के साथ साथ बुक्स, लाइब्रेरी और टेलीस्कोप लाइब्रेरी की सुविधा भी है। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि वे किसी एस्ट्रोनॉमी क्लब से जरूर जुड़े और इन छुट्टियों में किसी प्लेनेटेरियम को भी जरूर देखने जाएं। साथियों, मन की बात कार्यक्रम को जो लोग टीवी पर देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा एक वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो पिछले दिनों बहुत चर्चा में रहा। इसमें कुछ लोग बहुत धैर्य से, बहुत सावधानी से एक गंगा डॉल्फिन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, इस पूरे प्रयास में करीब 13 घंटे लगे और आखिरकार वो डॉल्फिन बच गई। साथियों, इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस की। ये घटना उत्तर प्रदेश की है। वहां एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गई थी। ऐसे समय में नमामि गंगे अभियान के तहत बनी ये एम्बुलेंस उसके लिए उम्मीद बनकर पहुंची। फिर बहुत सावधान

आसानी से उसे बाहर निकाला गया, उसकी जांच की गई, उसका इलाज किया गया और उसके बाद उसे सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दिया गया। एक तरह से कहें तो एक जीवन फिर अपने घर लौट गया। साथियों, ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है। साथियों, जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचाते, हम गंगा की जैव विविधता को बचाते हैं, नदी के पूरे जीवन तंत्र को बचाते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर भी बचाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आप में से बहुत लोगों की नदी, तालाब और कुएं के पानी से जुड़ी यादें जरूर होगी। किसी को तालाब में तैरना याद होगा, किसी को दोस्तों के साथ तालाब किनारे खेलना, किसी को उस मिट्टी की खुशबू याद होगी। बचपन की ऐसी यादें जीवन भर मन में बसी रहती है। साथियों, ऐसी ही यादों को बचाने की एक प्रेरक गाथा उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सामने आई है। बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे, क्योंकि जिस नदी को उन्होंने बचपन में साफ और जीवंत देखा था, समय के साथ उस नदी में प्लास्टिक जमा होने लगा था, गंदगी बढ़ती चली जा रही थी। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। शिकायत नहीं, शुरुआत मंत्र बन गया। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे, प्लास्टिक और कचरा बाहर लाते थे। कई बार एक दिन में 50-60 किलो तक कचरा नदी से निकाला गया। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी। साथियों, ऐसी ही एक प्रेरक कहानी गोवा से भी सामने आई है। गोवा के बाल कृष्ण अय्या जी रिटायर्ड टीचर हैं, लेकिन समाज के लिए काम करने का उनका उत्साह आज भी वैसा ही है। उन्हें मड्डी तोलाब इलाके में पानी की समस्या बहुत परेशान करती थी। उन्होंने भी समाधान के लिए काम शुरू किया। बालकृष्ण जी ने पाइपलाइन बिछाने के काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे कई घरों तक पानी पहुंचा। जिन परिवारों को पानी के लिए रोज संघर्ष करना पड़ता था, उनके लिए यह बहुत बड़ी राहत बनी। साथियों, पिछले महीने मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ। इसका संबंध मन की बात से भी जुड़ा है, इसलिए आज मैं इसकी चर्चा आपसे करना चाहता हूँ। तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरिजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन

0: एक रुपया योगदान दे, यानी एक साल में हर स्टूडेंट की ओर से 365 रुपये जमा हुए। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपये इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है। मैं इससे जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उन स्टूडेंट्स की भी विशेष सराहना करता हूँ जिन्होंने अपने वीर सैनिकों के लिए योगदान दिया। साथियों, भारत के हर गांव में, हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें प्रेरणा देता है। कई बार इन प्रयासों की ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन जब हम इन्हें जानते हैं तो ये विश्वास और मजबूत होता है कि देश अपने लोगों की शक्ति से आगे बढ़ रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, अपने आसपास के ऐसे प्रयासों को जरूर देखिए। जो लोग समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें पहचानिए, उनकी सराहना कीजिए, उनसे सीखिए और हो सके तो खुद भी किसी अच्छे काम से जुड़िए। अगले महीने मन की बात में कुछ और प्रेरक गाथाओं के साथ मैं फिर आपसे जुड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली है, लीजिए सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद।
3: मम प्रियाः देशवासिनः नमस्कारः। मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे पुनरेकवारं भवद्भिः सह संयुज्य अहम् अत्यन्तम् आनन्दितः अस्मि। देशस्य विभिन्नेषु भागेषु अस्माकं देशवासिनः देशहिते समाजहिते च एतादृशानि अद्भुतानि कार्याणि कुर्वन्तः सन्ति। वयं च यदा तद्विहितानां कार्याणां विषये शृणुमः तदा वयं नूतनां प्रेरणां प्राप्नुमः। अद्य कार्यक्रमस्य आरम्भम् अहम् एथलेटिक्स इत्येतस्मिन् क्रीडाक्षेत्रे देशस्य अनयैव उपलब्ध्या करिष्यामि। कतिपयेभ्यः दिनेभ्यः पूर्वमेव झारखण्डराज्यस्य राँचीनगरे नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन इत्याख्या प्रतियोगिता समायोजिता। एतस्यां प्रतियोगितायां देशस्य विभिन्नेभ्यः भागेभ्यः आगताः प्रायः 800 क्रीडकाः सहभागितां कृतवन्तः। एतस्मिन् नवधौ भिन्नासु चतुर्षु स्पर्धासु चत्वारि राष्ट्रियमानाङ्कनानि भग्नानि जातानि। गुरिन्दरवीरसिंहः, विशाल टीके इत्यसौ, तेजस्विन् शङ्करः, देवमीणा, कुलदीपकुमारश्च एतैः मित्रैः विभिन्नेषु वर्गेषु नूतनानि कीर्तिमानानि रचितानि। सर्वप्रथमम् अहम् एतान् सर्वानपि भूरिशः वर्धापयामि। सखायः, एकस्याः स्पर्धायाः अधिदेशं बहु चर्चा जायमान अस्ति। सा च अस्ति शतमीटरमितधावनस्पर्धा इत्येषा, अर्थात् शतमीटरमितः धावनक्रमः। केवलं दिनद्वये पुरुषवर्गीये शतमीटरमिते धावनक्रमे राष्ट्रियमानाङ्कनं वारत्रयं भग्नं जातम्। याभ्यां क्रीडकाभ्याम् एतत् भद्रप्रदर्शनं कृतं तौ स्तः गुरिन्दरवीरसिंहः, अनिमेषकुजूरश्च। अहं चिन्तितवान् ऐषमः मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे एताभ्यां क्रीडकाभ्यां सह वार्तां कुर्याम्। प्रधानमंत्री।

प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम मशहूर पार्श्व गायक केके को याद कर रहे हैं। यह है इस कार्यक्रम का पहला गीत। फिल्म का नाम है सॉरी भाई। आवाजें केके, सुनिधि चौहान और अभिषेक नलवाल की। गीतकार हैं अमिताभ वर्मा और संगीत दिया है विवेक ने।

ये गीत। और आइए अब सुनते हैं के और तुलसी कुमार का गाया फिल्म नहले पे दहला। इस फिल्म का गाना गीतकार हैं पंछी जालोनवी और संगीतकार हैं आनंद राज आनंद।

0: जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं की जरा याद करो।
0: कार्यक्रम का अगला गीत हिमेश रेशमिया के संगीत निर्देशन में सुधाकर शर्मा का लिखा हुआ, गाने वाले कलाकार के और सुनिधि चौहान, फिल्म का नाम हमराज।

कार्यक्रम का अगला गाना प्रीतम के संगीत निर्देशन में अनिल भारद्वाज का लिखा हुआ सुनिए। आवाजें हैं केके और राकेश पंडित की और ये फिल्म है स्टम्प्ड।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: फिल्म का नाम है भूल भुलैया, आवाज केके की, गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं प्रीतम।

कार्यक्रम का अगला गीत अनु मलिक के संगीत निर्देशन में नितिन उरेकवार का लिखा हुआ, इसे आवाजें दी हैं केके और सुनीति चौहान ने। फिल्म का नाम है रूढ़।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य जवान।

0: ये आवाजें के अलीशा चिनॉय और जयेश की थी। फिल्म का नाम था दिल ने जिसे अपना कहा। इस गीत को समीर ने लिखा और धुन बनाई हिमेश रेशमिया ने।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: कार्यक्रम का अगला गीत प्रीतम के संगीत निर्देशन में सईद कादरी का लिखा हुआ, आवाज केके की, और ये फिल्म है मेट्रो।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई।

0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग। हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
1: कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं विपिन पटवा के संगीत निर्देशन में डॉक्टर सागर की रचना, स्वर के और अन्वेषा सरकार की, फिल्म का नाम है लव यू सोनियो।

इस गाने के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज इस कार्यक्रम में हमने मशहूर पार्श्व गायक केके को याद किया।

प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम सुरीला सफर। कार्यक्रम सुरीला सफर के सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी की ओर से प्यार भरा नमस्कार। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और इस कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, है ना? सच सच बताइएगा, इंतजार था ना इस कार्यक्रम का? और मेरा भी जी, इंतजार तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब कोई जीवन से चला जाता है तो वो पल उतना ही दुखदायी हो जाता है, है ना? तो बस आज हम उन्हीं कुछ पलों पर बात करने वाले हैं कि कई बार जीवन में किसी के चले जाने से, हमारे जीवन से, हमारे घर से, हमारे विचारों से, हमारे दिल और दिमाग से कहीं जब कोई चला जाता है तो आप समझ सकते हैं कि वो एहसास कितना पीड़ादायी होता है। और इसी पर आज हम ये कार्यक्रम लेकर आए हैं। हमने हमारी इबारत लिख भी दी है कि किसी के जीवन, घर, विचार से कहीं चले जाने का एहसास बहुत पीड़ादायी होता है साजना, और दीवाने रूठ कर न जाने कहां चले जाते हैं कि फिर उनके बगैर नींद भी नहीं आती। किसी के छोड़कर कहीं चले जाने पर दिल उनकी धुन में रोता जाता है और जोगी बन जाता है। तो ये है आज का सुरीला सफर। हमने आपको इबारत बता दी है, आपने पढ़ भी ली है, और जो श्रोता फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं उनने भी ये सुन लिया होगा कि आज हमने क्या इबारत रखी है। और साथ ही हम उन शब्दों को भी बता देते हैं जो आज के चयनित गीतों में आएंगे। साजना कहीं दीवाने कहां छोड़ के रूठ कर जाता है नींद धुन दिल और जोगी। जी ये ठीक उसी प्रकार का दुख कह सकते हैं कि आप ये कार्यक्रम अगर बीच में छोड़कर चले जाएंगे तो हमें कितना दुख होगा, है ना? बस इसी प्रकार कोई जिंदगी से जब चला जाता है और जिंदगी को मझधार में रख जाता है तो कैसा लगता है। वो रिश्ता कोई भी हो सकता है, आप समझ सकते हैं कि आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। ठीक बस उन्हीं रिश्तों से हम जब अपने आप को भरपूर महसूस करते हैं और

उसके चले जाने पर, उस किरदार के चले जाने पर हम खुद को तन्हा महसूस करते हैं कि वो हमारी जिंदगी से चला गया है। तो बस इसी जाने पर आज इस सुरीले सफर को हम तय करने वाले हैं, ठीक है? आप है ना हमारे साथ? तो कार्यक्रम का ये है पहला गीत, राजेंद्र कृष्ण की ये रचना है, लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजें हैं, फिल्म का नाम है अदालत। इस गाने से जुड़ा है शब्द साजना।

0: जिस पर थी लता मंगेशकर और आशा भोसले की, फिल्म का नाम था अदालत। जी तो हमारे बहुत सारे श्रोता लगातार अपनी पसंद भेज रहे हैं कि ये गीत हो सकते हैं, और हो सकता है कि हमारी पसंद के गीतों से आपकी पसंद आज मिल भी रही है, हमें लग रहा है ऐसा। तो आप तय करिएगा, सुनते रहिएगा और बताइएगा कि कौन सा गीत हमारी पसंद के गीतों से मिला है, यानी हमने जो अपनी पसंद के गीत आपके लिए रखे हैं क्या उससे आपकी पसंद भी मिल रही है। एक श्रोता लिखती है कि कुछ पीड़ाएं अस्थाई होती हैं, अदृश्य होती हैं और जाना सुखद भी है और दुखद भी। कोई जीवन से अचानक चला जाए, इससे ज्यादा दुखद क्या हो सकता है। और जब मन को पता है कि जाने वाला लौटकर आएगा तो मन को तसल्ली बनी रहती है। कुछ जाने वाले जीवन में रच बस जाते हैं, वे हमारे भीतर रहने लगते हैं। जाना दूरी का विलोम नहीं है, किसी का स्मृतियों से चले जाना हमें वर्तमान से दूर कर देता है। जाना सुखद हो या दुखद, दोनों ही पहलू में एक अव्यक्त बेचैनी छिपी है, मन में एक मानसिक द्वंद हमेशा चलता रहता है। बहुत सुंदर। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आपने जो शब्द हमें दिए हैं इन पर कई अच्छे गाने हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, आपको वही गाने तो ढूंढने हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि किसी आत्मी के जीवन, घर और विचारों से ओझल हो जाने की पीड़ा रूह को झकझोर देने वाली होती है। उसके जाने से घर के कोने सूने और रातें बेगाना हो जाती हैं, जहां पलकों पर नींद नहीं सिर्फ तन्हाई का पहरा होता है। जब कोई अपना रूठकर दूरियों की चादर ओढ़ लेता है तो दिल का धड़कना भी एक मौन प्रार्थना में बदल जाता है। क्या बात है, ये विरही है जो सांसारिक मोह माया छोड़कर दिल को किसी यादों में जोगी बना देता है। आंखों का सूनापन और ख्यालों में गूंजती उनकी ही धुन सुकून के हर पल को चुरा लेती है। नींद भी गवाह बन जाती है कि कोई अपना कितनी दूर जा चुका है। बहुत सुंदर लिखा है आपने। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज इस कार्यक्रम का शीर्षक सुरीला सफर सार्थक हुआ है। क्यों? क्योंकि आज विषय वस्तु और चुनिंदा शब्द स्पष्ट कर दिए गए हैं। एक कहावत है, जो आया है वो जाएगा भी। वास्तविकता भी यही है कि किसी का जाना हमें उदास कर देता है, क्योंकि जाना बिछो को निरूपित करता है और आना मिलन को निरूपित करता है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज इस सुरीले सफर में गीतों के माध्यम से संगीत की दुनिया की सैर करेंगे। सभी को नमस्ते। बहुत खूब। देखिए बीच में छोड़कर जाइएगा नहीं, है ना। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत संबंधों के बिछो में व्यथित हृदय की पीड़ा का बखान है। चाहे ये बिछो प्रेम युगल का हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो या राजनीतिक हो, हृदय से समर्पित व्यक्ति विशेष का अलगाव वेदनापूर्ण होती है। एकमात्र वक्त ही इस शून्यता की पूर्ति कर देता है। सूत्र प्रदान कर आपने आज के सफर को मनोरंजक और रोमांचक बना दिया है। इंतजार रहेगा। शुक्रिया, आप सभी इस कार्यक्रम को इतना पसंद कर रहे हैं। और आपको थोड़ी सी हिंट हमने दे दी है, तो आपने बहुत सारे गाने हमें लिखकर भेजे हैं और बहुत ही शानदार गीत आपने चुने हैं आप सभी ने। लेकिन अब आपकी पसंद मेरी पसंद।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र। आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम नारी वाटिका।

0: सखी वो नहीं जो बस साथ नजर आए, सखी वो है जो खामोश भी समझ जाए।
1: खुशी में तो ये दुनिया संग चल देती है, सच्ची सखी वो है जो गम

0: में भी साथ निभा जाए।
1: महिलाओं के इस खास कार्यक्रम नारी वाटिका में आपका स्वागत है। जीवन की भाग दौड़ में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमारे दिनों को मुस्कान से भर देते हैं और हमारी यादों को सजोते हैं।
0: ऐसे ही भावों और अनुभवों को लेकर आज आपके साथ हैं नेहा और
1: मकसूदन।
0: नमस्कार, नमस्कार।

0: सखियों कुछ नाम समय के साथ धुंधले पड़ जाते हैं, कुछ चेहरे यादों में खो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी हंसी बरसों बाद भी कानों में गूंज जाती है। पुराने एल्बम का कोई फोटो, स्कूल की कोई बात या किसी गीत की कोई पंक्ति अचानक हमें बरसों पीछे ले जाती है।
1: तब याद आता है वह वक्त जब छोटी सी खुशी भी साझा होती थी, जब टिफिन का एक निवाला आधा आधा बांटकर खाया जाता था, जब मन की हर बात कहने के लिए खास मौके की जरूरत नहीं होती थी नेहा।
0: जीवन के इस सफर में कई लोग मिलते हैं, कुछ साथ चलते हैं, कुछ राहों में कहीं पीछे छूट जाते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो दूरी और समय की सीमाओं से परे होकर भी मन के बहुत करीब बने रहते हैं।
1: कभी वो बचपन की शरारतों में मिलते हैं, कभी कामयाबी की रौनक में, और कभी हौसला बनकर, और कभी एक मीठी सी याद बनकर उनकी मौजूदगी जीवन के हर रंगों को खूबसूरती से भर देती है।
0: आज का हमारा कार्यक्रम ऐसे ही एक अनमोल रिश्ते को समर्पित है जो विश्वास से बनता है, अपनत्व से पनपता है और यादों में हमेशा जीवित रहता है।
1: तो सखियों, आइए कुछ पल ठहरें, कुछ पुरानी यादों को फिर से जिएं और बात करें उस खूबसूरत बंधन की जिसे हम स्नेह से सखी कहते हैं।

0: मकसदन जब भी सखियों की बात होती है ना तो सबसे पहले बचपन की यादें मन में ताजा हो जाती है। बचपन की सखियों का रिश्ता सचमुच खास होता है।
1: बिल्कुल नेहा, बचपन की दोस्ती में ना कोई स्वार्थ होता है और ना कोई दिखावा, वहां केवल अपनापन, मासूमियत और साथ बिताए गए खूबसूरत पल होते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। बचपन में हम स्कूल जाते थे, साथ बैठते थे, टिफिन बांटकर खाते थे और छोटी छोटी बातों पर खिलखिलाकर हंसते थे। उस समय शायद हमें एहसास भी नहीं होता था कि हम जीवन की कितनी अनमोल यादें बना रहे हैं।
1: और कई बार तो सखियां एक दूसरे के घर भी उतनी सहजता से आती जाती थी जैसे अपने ही घर में हो। किसी की माँ डांट दे तो दूसरी सखी की माँ समझा देती थी, है ना?
0: बिल्कुल, गांव में तो ये अपनापन और भी अधिक देखने को मिलता था। स्कूल से लौटने के बाद सखियां साथ में खेलती थी, रस्सी कूदती थी, सतोलिया खेलती थी और गुड्डी गुड्डियों का ब्याह भी रचाती थी और घंटों बातें करती थी।
1: और फिर त्योहारों का समय तो जैसे सखियों के लिए बहुत खास अवसर होता था। तीज के झूले हो, गणगौर के गीत हो या किसी विवाह का उत्सव, सखियां हर खुशी में साथ दिखाई देती थी।
0: मकसदन, मुझे लगता है कि बचपन की सखियों की सबसे सुंदर बात तो ये होती है कि वो हमारी सबसे सरल और सच्चे रूप को जानती हैं। उन्हें ना हमारे पद, प्रतिष्ठा और उपलब्धियों से कोई मतलब नहीं होता है।
1: बिल्कुल, सालों बाद जब कोई बचपन की सखी मिलती है ना तो बातचीत वहीं से शुरू होती है जहां कभी छूटी थी। समय बीत जाता है लेकिन अपनापन वही रहता है।
0: कई लोगों की जिंदगी में तो ऐसा भी होता है कि पढ़ाई, नौकरी या मतलब शादी हो जाती है ना, उसके कारण सखियां अलग अलग शहरों में चली जाती हैं, मिलना भी कम हो जाता है, लेकिन यादें हमेशा बनी रहती हैं।
1: सही कहा, कभी कोई पुरानी तस्वीर दिख जाए, कोई स्कूल का गीत सुनाई दे या कोई पुराना रास्ता दिखाई दे तो बचपन की सखियां बरबस याद आ जाती है।
0: बिल्कुल, एक चीज और है मकसूदन, हमारी लोक संस्कृति में भी बचपन की सखियों का ना बहुत वर्णन मिलता है। लोकगीतों में भी अक्सर सखियां साथ में खेलती, हंसती, सपने सजाती हुई दिखाई देती हैं।
1: यही कारण है कि जिंदगी में चाहे कितने नए रिश्ते क्यों ना बन जाए, बचपन की सखी का स्थान कोई भी नहीं ले सकता।
0: बिल्कुल सखियों, यदि आपकी भी कोई ऐसी बचपन की सखी है ना जिससे लंबे समय से बात नहीं हुई है, तो कभी समय निकालकर उसे याद जरूर करना। शायद आपकी एक छोटी सी बात उसके चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कान ला सकती है।
1: क्योंकि बचपन की सखियां केवल दोस्त नहीं होती, वे हमारी यादों, हमारे सपनों और हमारी जिंदगी के सबसे सुनहरे दिनों में साथी होती
0: और
1: हैं।
0: यही कारण है कि बचपन की दोस्ती उम्र भरने के साथ और भी अनमोल

0: मकसूदन, हमारी लोक संस्कृति में सखी का स्थान तो बहुत खास है। विशेष रूप से देखें ना तो लोकगीतों में सखी केवल एक पात्र नहीं होती है, बल्कि वो सुख दुख हंसी खुशी मन की बातों की सहभागी भी होती
1: है। बिल्कुल नेहा, लोकगीतों में ध्यान से सुने तो पाएंगे कि उनमें सखियां बार बार दिखाई देती है। कभी वो झूला झूल रही होती है, कभी तीज त्योहार मना रही होती है, और कभी अपने सखी की मन की बात सुन रही होती है।
0: बिल्कुल सही कहा। पुराने समय में महिलाओं के लिए लोकगीत केवल मनोरंजन का माध्यम तो नहीं थे, और अपने मन की भावनाओं को भी व्यक्त कर पाती थी वो। ऐसे में सखी का उल्लेख स्वाभाविक रूप से इन गीतों में हिस्सा बन गया।
1: और राजस्थान के लोकगीतों में तो सखियों का खास रूप से उसको दिखाई देता है। तीज है, गणगौर है, उसके अवसर पर सखियां एक साथ गीत गाती है, पूजा कर

0: करती है और उत्सव का आनंद लेती है।
1: बिल्कुल, सावन के महीने में जब पेड़ों पर झूले पड़ते हैं तब भी लोकगीतों में सखियों का उल्लास देखते ही बनता है। गीतों में तो वो एक दूसरे को बुलाती हैं और झूलती हैं, अपने मन की बातें भी एक दूसरे को बताती हैं।
0: और शादी शादी के गीतों में तो सखियों की भूमिका बहुत ही खास होती है। दुल्हन की सखियां उसके साथ हंसती है, उसके साथ सजती है, संवरती है और विदाई के समय वो थोड़ी भावुक भी हो जाती है।
1: वो तो है, कई लोकगीतों में सखी बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र हो जाती है, नायिका का संदेश लेकर जाती है, कभी कभी उसकी मन की बात भी इधर उधर बताती है जहां बताने के लिए वो भेजती है, मन की बात समझती है, इसलिए लोकगीतों में सखी को विश्वास पात्र और सबसे निकट का साथी माना गया है।
0: और राधा कृष्ण से जुड़े लोकगीतों को देखें तो वहां भी सखियों का खास महत्व दिखाई देता है। कई गीतों में सखियां राधा और कृष्ण के बीच संदेशवाहक बनती है और उनकी भावनाओं की भी वो साक्षी होती है।
1: बिल्कुल, ब्रज के लोकगीतों में अगर देखें ना तो सखियां कभी राधा को चिढ़ाती हैं, कभी उनकी सहायता करती हैं और कभी उनके मन की स्थिति को भी समझती हैं। इससे पता चलता है कि भारतीय लोक परंपरा में सखी का रिश्ता कितना गहरा, कितना आत्मीय है।
0: लोकगीतों की एक और विशेषता ये भी है कि वह हमारे समाज की जीवन शैली, रिश्तों की झलक भी दिखाती है। उनमें सखी केवल खास दोस्त नहीं बल्कि जीवन के हर खास अवसर की सहभागी होती है।
1: चाहे खेतों में काम करते समय गाए जाने वाले गीत हों, सावन के झूलों के गीत हों या कोई शादी के मंगल गीत, हर जगह सखियों की हंसी और अपनापन सुनाई देता है।
0: यही तो कारण है कि लोकगीतों में सखी का जो चरित्र है सदियों से जीवित है और आज भी उतना ही प्रिय है।
1: तो सखियों, लोकगीत केवल सुर और शब्द नहीं होते, वो हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं और हमारे रिश्तों की अमूल्य धरोहर है। उनमें सखी का उल्लेख हमें मित्रता की मिठास और अपनापन याद दिलाता है।
0: जब भी कोई लोकगीत सुने तो उसमें छिपी सखियों की हंसी, उनकी बातें और उनके प्रेम को महसूस करना ना भूले, शायद यही लोकगीतों की सबसे बड़ी खूबसूरती है।

0: मकसद उन सखी का रिश्ता केवल हमारे जीवन तक ही सीमित नहीं है बल्कि भारतीय साहित्य और कथाओं में भी इसका बहुत खास स्थान है। सदियों से कवियों, लेखकों और लोक कथाकारों ने सखी को एक बहुत ही जरूरी पात्र के रूप में प्रस्तुत किया है।
1: बिल्कुल नेहा, हम साहित्य को ध्यान से देखें ना तो पाएंगे कि सखी केवल मित्र नहीं होती बल्कि वे नायिका की विश्वास पात्र, सलाहकार और सुख दुख की सहभागी भी होती है।
0: बिल्कुल सही कहा। भारतीय काव्य परंपरा में सखी को अक्सर वो व्यक्ति माना जाता है जो नायिका के मन की बात को बिना कहीं समझ लेती है। जब नायिका किसी खुशी या चिंता में होती है तो सबसे पहले अपनी सखी से ही मन की बात साझा करती है।
1: यही तो कारण है कि अनेक कविताओं और कथाओं में सखी का पात्र बहुत महत्वपूर्ण दिखाई देता है। कई बार वो केवल बात को सुनने वाली नहीं, बात को समझकर और मार्गदर्शन को सही देने वाली है।
0: पुराने समय में जब परिवार और समाज के बहुत सारे नियम होते थे ना, तो सखी वो इंसान होती थी जिसे नायिका के मन की हर बात कही जा सकती थी, क्योंकि बहुत सारे नियम होते थे ना, वो अपनी बात अपने घर वालों को, बड़ों को कह नहीं पाती थी, झिझक होती थी, तो वो अपनी सखी को कह दिया करती थी। तो इसलिए साहित्य में सखी को मन का दर्पण भी कहा गया है।
1: और संत साहित्य में भी सखी शब्द का विशेष महत्व है। कई संत कवियों ने सखी का प्रयोग आत्मसंबोधन के रूप में किया। ये केवल मित्रता नहीं बल्कि निकटता और विश्वास का भाव भी व्यक्त करता है।
0: वास्तव में साहित्य और कथाएं हमें यही सिखाती हैं कि सच्ची सखी वो होती है जो केवल अच्छे समय में नहीं बल्कि हर सिचुएशन में आपके साथ खड़ी हो।
1: शायद यही कारण है कि सदियां बीत जाने के बाद भी साहित्य में सखी का जो पात्र है आज भी उतना ही जीवंत और प्रिय लगता है।
0: सखियों, हमारी कथाओं और साहित्य में सखी का जो सुंदर चित्रण मिलता है वो हमें मित्रता, विश्वास और साथ निभाने का बहुत महत्व सिखाता है।
1: इसलिए तो कहा जा सकता है कि सखी केवल एक पात्र नहीं बल्कि भारतीय साहित्य व संस्कृति की एक अनमोल पहचान है।

0: Come on boys, let's go practice.
1: अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया।
0: ये तो बैंक को कंप्लेन करना।
1: बैंक को लिखे एक महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं।
2: तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो।
3: रुक मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेन को एक महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेन सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: मकसूदन, जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें समझ ही नहीं आता कि क्या करें। ऐसे में अक्सर सबसे पहले याद आती है अपनी सखी की।
5: बिल्कुल, क्योंकि सखी केवल हमारी बात सुनने वाली नहीं होती, बल्कि हमें सही और गलत का अंतर समझाने वाली भी होती है। कई बार उसकी छोटी सी सलाह भी प्रॉब्लम दूर कर देती है।
4: जब मन उलझनों से घिरा होता है और भावनाओं में बहकर हम है ना डिसीजन लेने लग जाते हैं कुछ भी, क्योंकि हमें पता नहीं लगता है कि क्या करना है,
5: शांत नहीं होता है ना।
4: तो ऐसे समय में ना सखी हमें शांत होकर सोचने की प्रेरणा भी देती है।
5: खास बात यह है कि सखी की सलाह केवल बड़े मामलों तक सीमित नहीं होती। कभी पढ़ाई की चिंता हो, कभी घर की जिम्मेदारी हो, या कभी किसी नए काम की शुरुआत, सखी हर सिचुएशन में साथ खड़ी दिखाई देती है।
4: मुझे लगता है कि सच्ची सखी वो होती है जो हमेशा हमारी हाँ में हाँ ना मिलाए, बल्कि जरूरत पड़ने पर हमारी गलती भी बताए, जैसे तुम मेरी बताती रहती हो।
5: बिल्कुल, जो मित्र केवल तारीफ करे वह अच्छा लग सकता है, लेकिन जो मित्र सही समय पर सच कहे वही वास्तव में हमारा हितकारी होता है।
4: हमारे बुजुर्ग भी कहते आए हैं कि अच्छे मित्र की सलाह जीवन का मार्ग बदल सकती है। कई बार हम जिस समस्या को बहुत बड़ा समझ रहे होते हैं, सखी उसे एक अलग ही दृष्टिकोण से देखकर ना सरल बना देती है।
5: ये सलाह केवल शब्दों में नहीं होती, कई बार सखी का सब्र, उसका यकीन और उसका साथ ही सबसे बड़ी सलाह बन जाता है।
4: जब कोई कहे घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो

0: आधी परेशानी तो वैसे ही कम हो जाती है।
1: और आज के समय में जब जीवन की गति बहुत तेज हो गई है, तब ऐसे रिश्तों का महत्व और भी बढ़ जाता है। हर व्यक्ति को किसी ना किसी ऐसे मित्र की आवश्यकता होती है जिससे वो खुलकर अपने दिल की बात कह सके।
0: लेकिन एक बात ना और भी जरूरी है, सलाह तो तभी काम की होती है जब खुले मन से कोई उसे सुने। कभी कभी हमारी सखी हमें वो बात समझाती है, बताती है, लेकिन हम सुनना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमें जो लगता है ना कि ये सही है तो हम उसे ही मानना चाहते हैं, उसकी बात हम मानना ही नहीं चाहते।
1: बिल्कुल सच्ची।
0: तो वो बात हमारे लिए ना बहुत ज्यादा जरूरी होती है, लेकिन हम सुनते नहीं है।
1: हाँ, लेकिन सच्ची मित्रता का अर्थ केवल साथ हंसना नहीं है, बल्कि एक दूसरे को बेहतर इंसान बनाने में भी मदद करना है।
0: बिल्कुल। आपके जीवन में भी कोई ऐसी सखी है जो समय समय पर आपका मार्गदर्शन करती है? सखियों, आपकी चिंता करती है और आपको सही राह दिखाने का प्रयास करती है, तो उसको है ना आप रिस्पेक्ट दें, उसकी बात आप सुनें, उसकी बात आप समझें।
1: क्योंकि जीवन की राह में अच्छी सलाह देने वाली सखियां अनमोल धरोहर से कम नहीं होती, वो हमारे जीवन का अनमोल खजाना होती है।
0: और याद रखिए सखी की सलाह केवल समस्याओं का समाधान ही नहीं होती है, बल्कि हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ा देती है।
1: सखियों, मित्रता का सबसे सुंदर रूप वही है जिसमें अपनापन हो, विश्वास भी हो और एक दूसरे को आगे बढ़ाने की भावना भी हो।

0: मकसूदन, जब हम सखी की बात करते हैं तो अक्सर हमारे मन में किसी सहेली की छवि उभरती है, लेकिन क्या सखी का रिश्ता केवल मित्रता तक ही सीमित है?
1: नहीं, मेरा तो मानना है कि सखी वो होती है जिसके सामने हम अपने मन की बात बिना किसी झिझक के कह सकें, जैसे तुम और मैं। ऐसा अपनापन हमें केवल सहेली में ही नहीं, कई रिश्तों में मिलता है, जैसे हमारी सखियाँ जो ये प्रोग्राम सुन रही है।
0: बिल्कुल।

0: कई बार माँ ही हमारी पहली सखी बन जाती है। बचपन में वो हमें चलना सिखाती है और बड़े होने पर जीवन की राहों पर संभल कर चलना भी सिखाती है। जब मन उदास होता है तो उसकी दो बातें ही दिल को सुकून दे देती हैं।
1: सही कहा, उम्र बढ़ने के साथ माँ केवल मार्गदर्शक नहीं रहती बल्कि ऐसी साथी बन जाती है जिससे हम अपनी चिंताएं, खुशियां और अपने सपने भी साझा कर सकते हैं। बहन का रिश्ता भी तो कुछ ऐसा ही होता है। बचपन में खिलौनों को लेकर झगड़ा, कपड़ों को लेकर नोकझोंक और बाद में वो ही सबसे अच्छी दोस्त बन जाती है।
0: हाँ, बहन वो होती है जो हमारी कई बातें बिना कहे ही समझ जाती है। चाहे दूरी कितनी भी हो जाए, उसके साथ बात करते ही अपनापन लौट आता है। कई लोगों के लिए भाभी, ननद, देवरानी या जेठानी की सखी का रूप बन जाती है। रिश्तों की पहचान केवल नाम से ही नहीं होती है, बल्कि उनमें बसे स्नेह और विश्वास से होती है।
1: कभी पड़ोस की कोई दीदी, कभी साथ काम करने वाली कोई साथी, तो कभी परिवार का कोई सदस्य भी जीवन में सखी जैसा स्थान बना लेता है।
0: दरअसल सखी वो नहीं है जो केवल हमारे साथ हंसे, बल्कि वो है जो हमारे मन की आवाज़ सुन सके, हमारी खुशी में खुश हो और मुश्किल समय जब आता है तो वो हमारा सहारा बन सके।
1: ऐसे रिश्ते जीवन को और भी सुंदर बना देते हैं, क्योंकि जब किसी रिश्ते में मित्रता से हम जोड़ते हैं ना, तो उसमें अपनापन और भी बढ़ जाता है।
0: इसलिए सखियों, अपने आसपास के उन रिश्तों को पहचानिए जिनमें आपको एक सखी का साथ मिलता है। हो सकता है कि आपकी माँ हो, आपकी बहन हो या कोई और अपना।
1: क्योंकि जीवन का सबसे सुंदर एहसास यही है कि कोई ऐसा हो जिससे हम बिना किसी डर और संकोच के अपनी मन की बात कह सकें।
0: सच ही कहा गया है, रिश्तों की पहचान नामों से नहीं होती। कुछ लोग माँ होकर भी सखी बन जाते हैं, कुछ बहन होकर भी हमराज बन जाते हैं।
1: यही रिश्ते जीवन को अपना अपनेपन, भरोसे और मुस्कान से भर देते हैं।

0: मकसदन समय बदलता है, जीवन शैली बदलती है, लोगों के रहने और काम करने के तरीके भी बदल जाते हैं, लेकिन एक रिश्ता ऐसा होता है जो हर दौर में अपनी अहमियत बनाए रखता है।
1: वह है सखी का रिश्ता। पहले सखियां रोज मिलती थी, साथ स्कूल जाती थी, पड़ोस में रहती थी और शाम को चौपाल और आंगन पे घंटों बातें करती थी। लेकिन आज का समय किसी के पास वक्त ही नहीं है।
0: बिल्कुल, आज बहुत सी सखियां अलग अलग शहरों में, राज्यों में, अलग अलग देशों में भी रहती हैं, कई बार बहुत दूर भी चली जाती हैं। पढ़ाई, नौकरी और शादी की जिम्मेदारियों के कारण उनकी जीवन की पूरी दिशा ही बदल जाती है।
1: फिर भी मित्रता तो बनी रहती है। पहले हालचाल जानने के लिए मिलने का इंतजार रहता था, लेकिन आज एक संदेश, एक फोन कॉल, एक और वीडियो कॉल से हम दूरियों को काफी हद तक मिटा सके हैं।
0: बिल्कुल, तकनीक ने तो है ना फ्रेंड्स को एकदम पास में कर ही दिया है, लेकिन भावनाओं को नहीं कर पाए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसी भावनाएं होती हैं, जब सखी का संदेश आता है तो हमें चेहरे पर मुस्कान तो आ जाती है, लेकिन हम ऐसे सोचते हैं कि उसके साथ क्यों नहीं बैठ पा रहे हैं।
1: कई बार ऐसा भी तो होता है कि महीनों बात ना हो, लेकिन जब बातचीत शुरू होती है ना, तो लगता है जैसे कल ही मुलाकात हुई थी। और ऐसे में सखियों का साथ बहुत खास हो जाता है। वे केवल हंसी मजाक के साथ ही नहीं रहती, बल्कि एक दूसरे को मोटिवेट भी करती है। कभी किसी को परीक्षा की तैयारी को लेकर, कभी किसी काम की शुरुआत को लेकर, हमेशा मनोबल बढ़ाती है।
0: बिल्कुल, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम कई बार ऐसे होते हैं फ्रेंड्स जो समय निकालना बिल्कुल भूल ही जाते हैं, और ऐसे रिश्तों को समय देना और स्नेह की आवश्यकता होती है।
1: सही कहा। कभी कभी एक छोटा सा संदेश, जन्मदिन की शुभकामनाएं या यूं ही हालचाल पूछना भी बेहद जरूरी होता है।
0: और अभी के समय में देखिए ना, तो सखी केवल हमारी यादों का हिस्सा नहीं, बल्कि हमारे वर्तमान का, हमारे भविष्य का भी हमारे साथ है।
1: वो हमारे संघर्षों की भी साक्षी होती है और हमारी उपलब्धियों की भी, और कई बार हमारे हमारी प्रेरणा भी बन जाती है।
0: बिल्कुल, कितना भी समय क्यों ना बदल जाए, सखी का जो महत्व होता है ना, वो कभी कम नहीं होता। ऐसी ही मित्रता जीवन को ज्यादा सुंदर, सरल और आनंदमय बना देती है।

0: सखियों जीवन में बहुत से लोग मिलते हैं लेकिन हर कोई सखी तो नहीं बन जाता। ऐसे में सच्ची सखी की पहचान क्या होती है वो जानना बहुत जरूरी है।
1: बहुत सुंदर सवाल है। सच्ची सखी की पहचान इस बात से होती है कि वो हमारे साथ कितना समय बिताती है, बल्कि इस बात से होती है कि वह हमारे जीवन में कितना अपनापन और विश्वास हमारे साथ जोड़े रखती है।
0: सच्ची सखी वो होती है जिसके सामने हम बिना किसी दिखावे के अपने मन की बात कह सकें, जिसके सामने हम खुद को बदलने की हमें जरूरत ना पड़े।
1: और साथ में ये भी है कि ये ऐसा ना हो कि वो सिर्फ हमारे साथ खुशियों में ही शामिल हो, हमारा कोई कठिन समय हो, कोई मुश्किल समय हो, उसमें भी हमारे साथ खड़ी रहे।
0: कई बार सच्ची सखी की पहचान उसके शब्दों से नहीं, उसके व्यवहार से होती है, और हमारी सफलता से वो ईर्ष्या ना करे बल्कि दिल से खुश हो।
1: सच्ची सखी कभी हमारी कमजोरियों का मजाक नहीं बनाती, वह हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है और आगे बढ़ने को भी हमें मोटिवेट करती है। आज के समय में मित्र तो बनाना आसान है, लेकिन विश्वास बनाए रखना बहुत कठिन है।

सखियों, आज के कार्यक्रम में हमने एक अनमोल रिश्ते की बात की। वो रिश्ता है सखी का रिश्ता। और आज हम ये बताना चाहेंगे कि सखी

0: की साझेदारी आज भी मेरे मन को मुस्कुराने का कारण बताती है। सच्ची सखी वही होती है जो बिना कहे मन की बात को समझ ले। तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरी यादों की पोटली में एक अनमोल मोती की तरह सजा हुआ है। ईश्वर करे तुम्हारे जीवन में सुख, सफलता, स्वास्थ्य और ढेर सारी खुशियाँ बनी रहे। ये जो संदेश है ना सखियों, ये आपके लिए भी है और आप भी अपनी सखियों को जरूर दें।
1: और ऐसा ही एक संदेश बिछड़ी हुई सखी के नाम। पता नहीं आज तुम कहाँ हो, कैसी हो और जीवन की किन राहों में चल रही हो। समय ने हमें एक दूसरे से दूर कर दिया, लेकिन तुम्हारी यादें आज भी मेरे मन में वैसी ही बसी हुई है। जब भी बचपन के दिन याद आते हैं ना, तो तुम्हारी हंसी, हमारी बातें, साथ देखे गए सपने और वो छोटी छोटी शरारतें आँखों के सामने तैरने लगती है। जीवन ने हमें अलग दिशाओं में भले ही भेज दिया हो, लेकिन दोस्ती की वो गर्माहट आज भी वैसी ही महसूस होती है। शायद हम कभी मिलें और शायद ना मिलें, लेकिन तुम्हारी दोस्ती मेरी यादों का एक खूबसूरत हिस्सा हमेशा रहेगी। जहाँ भी हो, खुश रहो, स्वस्थ रहो और जीवन में खूब आगे बढ़ो। कुछ लोग जीवन में हमेशा साथ नहीं रहते, लेकिन हमेशा याद में बसे रह जाते हैं।

0: सखी, अब देखते ही देखते आज की ये बातचीत अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई। इन पलों में हमने उन यादों को छुआ जो शायद कहीं मन के किसी कोने में चुपचाप बसी हुई थी।
1: हो सकता है आज की इस बातचीत को सुनते हुए आपको भी अपनी कोई सखी याद आई हो। शायद वह आपके पास हो, शायद आपसे बहुत दूर हो, शायद बरसों से उससे बात भी ना हुई हो।
0: अगर ऐसा है तो आज उसे अपने मन की बात भेज दीजिएगा। अपनी बात से उसके चेहरे पर मुस्कान जरूर ला दीजिएगा।
1: फिर मिलेंगे नए विषय, नई बातों और नए यादों के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और अपने रिश्तों में मिठास सहज कर रखिए।
0: आज के कार्यक्रम में कंट्रोल रूम से राइसिंग राव, HPT से सुनील जयपाल, प्रेम किशोर सेन, FM से दिलीप सिंह परमार।
1: नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नारी वाटिका। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। दिन के 2:15 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्रपट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का किया उल्लेख। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने नौसेना

0: प्रमुख का कार्यभार संभाला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के साथ परमाणु समझौता करीब, चेतावनी दी कि यदि वार्ता विफल होती है तो सैन्य कार्रवाई का विकल्प बना रहेगा। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी आज सिंगापुर ओपन के डबल्स फाइनल में इंडोनेशियाई जोड़ी से खेलेंगे और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडुवंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
1: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी से राहत के लिए आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू शरबत, बेल पन्ना, पनाकम, नीरमोर सांभरम, कोकम शरबत और सोल कड़ी का सेवन करने की अपील की है।
1: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
0: प्रधानमंत्री ने काशी के लंगड़ा, महाराष्ट्र के अल्फांजो, गुजरात के केसर और पश्चिम बंगाल के हिमसागर आम की चर्चा करते हुए कहा कि हर क्षेत्र के आम का स्वाद अनूठा और उसकी महक अनोखी होती है।
1: महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, ये तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा, बिहार का जरदालू, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
1: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए।

0: प्रधानमंत्री ने रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता में गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को चार राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने पर बधाई दी। श्री मोदी ने 100 मीटर दौड़ में रिकॉर्ड तोड़ने वाले गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर से बात भी की।
1: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया। मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर, एंड मैं पार्टिसिपेट किया। मैं वहां से नेशनल का सिलेक्ट हुआ, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
2: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
1: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ। पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ।
0: श्री मोदी ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई है। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और अपनी छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील की।
2: राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है।
0: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले वीडियो का भी उल्लेख किया।
2: ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है।
0: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के नागरकोइल में 15 स्कूल चलाने वाली शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की, जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए योगदान देने का संकल्प लिया है। गिरिजा अम्मा ने बहादुर सैनिकों के लिए रोज 1 रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रूपये प्रधानमंत्री को सौंपे।
2: साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से अपील की कि वे अपने आसपास समाज की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे लोगों को पहचानें और स्वयं भी अच्छे कार्यों से जुड़ें। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नवनियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी ने कहा है कि नवाचार के समावेश से सैन्य क्षमताओं के विकास में और तेजी आएगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों, उद्योग, शिक्षा जगत, स्टार्टअप और अनुसंधान तंत्र के बीच तालमेल से आधुनिकीकरण को बल मिलेगा।
3: नेवी, एयरफोर्स,
4: नौसेना, वायुसेना, रक्षा मंत्रालय, रणनीतिक संस्थान और सभी हितधारक भारत की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राष्ट्रव्यापी दृष्टिकोण के तहत एकजुट हैं। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जय एकजुटता, आत्मनिर्भरता और नवाचार।
3: आत्मनिर्भरता एंड इनोवेशन।
0: नव नियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी को आज नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया कि बातचीत विफल होने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला होगा।

0: श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि समझौता होते ही होर्मुज जलडमरू मध्य तुरंत खुल जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाना है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि 29 मई को देश में 15,000 छतों पर सौर पैनल लगाए गए। ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत किसी एक दिन में सौर पैनल स्थापित करने का रिकॉर्ड है। सबसे अधिक पैनल महाराष्ट्र में लगाए गए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आरएन रवि ने कहा है कि भारत बांग्लादेश की खुली सीमा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने पूर्वोत्तर को देश के शेष भाग से जोड़ने वाले चिकन नेक गलियारे को मजबूत बनाने पर बल दिया। पिछली तृणमूल कांग्रेस ने उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद केंद्र सरकार को बाड़ लगाने के लिए जमीन हस्तांतरित नहीं की थी। दक्षिण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास कल शाम एक 4 मंजिला व्यावसायिक इमारत के गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, 5 घायलों की हालत स्थिर है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि अनधिकृत निर्माण के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के डबल्स फाइनल में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोएबुल फिक्री और फजल अल्फयान से होगा। सात्विक साईराज और चिराग ने मई 2024 में थाईलैंड ओपन के बाद से कोई भी खिताब नहीं जीता है। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4-5 दिन में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून दक्षिण पूर्वी अरब सागर, लक्षद्वीप, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और तटीय कर्नाटक में कुछ जगहों पर बिजली के साथ साथ गरज चमक की भी आशंका है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी कल तक कुछ स्थानों पर बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्र पट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का उल्लेख किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं महान संगीतकार अनिल बिस्वास को। आप सभी जानते हैं ना, आज अनिल बिस्वास की याद का दिन है।

अभी आपने फिल्म तराना का दो गाने सुना, आवाजें तलत महमूद और लता मंगेशकर की थी। गीतकार थे प्रेम धवन और संगीत दिया था अनिल बिस्वास ने। अनिल बिस्वास के संगीत निर्देशन में हम आपको प्रेम धवन का ही लिखा गीत सुनवा रहे हैं, स्वर लता मंगेशकर का, और ये फिल्म है परदेसी।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं जरा याद करो।
0: कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम है नाज। गीत को लिखा है प्रेम धवन ने और धुन बनाई है अनिल विश्वास ने।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में फिल्म लाजवंती से लिया है। कृपया इसे दोबारा सुने, फिल्म का नाम है लाजवाब।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गीत अनिल बिस्वास के संगीत निर्देशन में प्रेम धवन का लिखा हुआ, स्वर लता मंगेशकर का और फिल्म का नाम है जीत।

0: न जाए मस्त पवन है कुंतल धारा।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
4: कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म का नाम है अनोखा प्यार, आवाज लता मंगेशकर की, गीतकार हैं जिया सरहदी और संगीत अनिल विश्वास का।

अनिल बिस्वास के संगीत निर्देशन में हम आपको मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत सुनवा रहे हैं। आवाज गीता दत्त की है, फिल्म का नाम है हीर।

कार्यक्रम का आखिरी गीत हमने लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म जलती निशानी से लिया है। गीत को कमर जलालाबादी ने लिखा है और धुन है अनिल विश्वास की।

0: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आप सुनेंगे कार्यक्रम मनचाहे गीत।
1: मनचाहे गीत मन चाहे गीत।

0: 4454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
3: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
1: तो शुरू करते हैं आज का मन चाहे गीत। कार्यक्रम का पहला गीत हमने आप सबकी ख्वाहिश पर चुना है। फिल्म का नाम है बॉबी, आवाजें लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की, गीत को आनंद बख्शी ने लिखा है और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुनना चाहते हैं आप सभी। डोंगरगढ़ गांव, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। और ये खत आया है कृष्णबाग कॉलोनी इंदौर से नियाज मोहम्मद मंसूरी, सरताज बानो, उबैद, रजीह जुनैद, अलीना, आयत, मुआज और मंसूरी का। और इसी गीत को सुनना चाहते हैं लोक सिटी उदयपुर यानी लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से नरोत्तम गौड़ और उनके परिवार वाले। आइए आप सभी सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।
4: मुझे कुछ कहना है,
5: मुझे भी कुछ कहना है,
4: मुझे कुछ कहना है,
5: मुझे भी कुछ कहना है,
4: पहले तुम,
5: पहले तुम,
4: पहले तुम,
5: पहले तुम,
4: पहले तुम,
5: तुम,
4: तुम,
5: तुम,
4: तुम,
5: तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
4: अच्छा मैं कहती हूँ

फिल्म बॉबी का दो गाना अभी आपने लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह का गाया हुआ सुना। अगला खत हमें मिला है उल्हास नगर से पुरुषोत्तम शामतकर, ज्योति शामतकर और चेतन शामतकर का। ये हैं डोंगरगांव जिला राजनांदगांव से, यानी बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से आप हैं रोशन देवांगन, कौशिला देवांगन, हेमलता देवांगन, डिंपल देवांगन और इनके परिवार वाले। और ये खत हमें मिला है धमतरी से रामचंद्र माखीजा, काफिर आर्य, श्रीमती सविता बेबी, स्वाति माखीजा और पूरे माखीजा परिवार का। आप सभी सुनना चाहते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर को फिल्म मन मंदिर में, गीतकार राजेंद्र कृष्ण, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

मनचाही गीत कार्यक्रम का अगला गीत आवाज लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम कच्चे था की। गीत रचना आनंद बख्शी की और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुनना चाहते हैं छत्तीसगढ़ सिमगा से रमेश कुमार यादव, श्रीमती माया यादव, रिंकू सन्नी, कोमल यादव। आप हैं गांव घिटोरनी नई दिल्ली से साबिर हुसैन मिराजी, मोहब्बत बेगम, जावेद, शनाया, तखान और इनके परिवार वाले। और जिला खंडवा मध्य प्रदेश से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम, ज्योति, शुभम, देवी किशन, भावना, मनमानस और कनिका पटेल। आप सभी सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
4: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: थी धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं।
0: मन चाहे गीत कार्यक्रम में अगला गीत सुनना चाहती हैं भोपाल से सुधीर, श्रीमती मालती, चंचल, नवनीत, पुविन, ईशी, गौरिक और इनके अन्य साथी। दतरेंगी छत्तीसगढ़ से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जाविंद्र कुमार वर्मा। हम अपने सभी श्रोताओं से ये करबद्ध अनुरोध करना चाहेंगे कि कृपया अपनी हैंड राइटिंग साफ लिखें ताकि हमें कोई भी नाम या जगह का नाम पढ़ने में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और सही नाम हम पढ़ सकें। हमें उम्मीद है कि अगली बार जब भी आप लिखेंगे तो अपनी हैंड राइटिंग में सुधार करके अपना नाम और अपना पता लिखेंगे। गाने के बोल, कलाकारों के नाम

जो भी आप लिखते हैं साफ और सुंदर हैंडराइटिंग में लिखें। तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद पर फिल्म भीगी पलके का गीत। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, एम जी हशमत की गीत रचना है। सुनते हैं ये गीत। जुगल किशोर और तिलक राज का संगीत है।

इस कार्यक्रम के आखिर में सुनना चाहते हैं आप सभी लता मंगेशकर को फिल्म अनीता में, गीत रचना राजा मेहदी अली खान की है और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की। सुनने की ख्वाहिशमंद आप सभी भाटापारा से मोतीलाल यादव, डॉक्टर बसंत, विनय ठाकुर और इनके परिवार वाले, वहीं से इनके मित्र सुब्रत चौधरी भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। आप हैं राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाजापुर से मनमोहन राजावत राज, मधु राजावत और राशि रक्षित। इसी गीत को सुनना चाहते हैं छत्री तालाब अमरावती से साधना रानी, किशोर गुप्ता, नेहा गुप्ता, कोमल गुप्ता और ये है सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। आप सभी सुनिए लता मंगेशकर को फिल्म अनीता में।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। नाट्य तरंग में आइए सुनते हैं नाटक अग्निचक्र का दूसरा और अंतिम भाग। ये है मलयालम नाटक अग्निवलयम का हिंदी नाट्य रूपांतरण। मूल लेखक सीएल जोस, रूपांतरकार पीजी वासुदेव, निर्देशक भारत रत्न भार्गव। तो चलिए सुनते हैं नाटक अग्निचक्र का दूसरा भाग।
1: क्यों डेजी, इस तरह उदास क्यों रहती हो?
2: नहीं तो मैं कुछ सोच रही थी।
1: देखो डेजी, बहुत सोच विचार के बाद ही मैं इस त्याग के लिए तैयार हुआ था। अब भी अगर तुम इस तरह उदास बनी रही तो मुझे लगेगा कि तुम्हें सुखी बनाने की मेरी कोशिश असफल रही है और इससे मुझे बहुत निराशा होगी। मुझे लगता है ये गिटार तुम्हें बड़ी वेदना पहुंचा।
2: नहीं, बल्कि ये तो मुझे बहुत सांत्वना देता है।
1: डेजी, बीती हुई बातों को भुला देना चाहिए। नए जीवन को सानंद स्वीकार करने पर ही जीवन का अर्थ मिलेगा। लो इधर देखो, देखो ना, मेरी बातें समझ में आ रही हैं? ओ डेजी, तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा कितना सुंदर लगता है। अरे हाँ, मैं सोचता हूं दो हफ्ते की छुट्टी ले लूं। हम दोनों के लिए चेंज थोड़ा जरूरी है। हम लोग कुछ दिन

0: में आराम करेंगे, क्या कहती हो?
1: ऑपरेशन से पहले बेनी ने भी ऊटी जाने का प्रोग्राम बनाया।
0: नो, तब ऊटी नहीं जाएंगे, वहां पहुंचकर तुम्हें तरह तरह की दुखद यादें तंग करेगी। लेट्स गो समवेयर एल्स, मैसूर या बेंगलोर का प्रोग्राम बनाए तो कैसा रहेगा?
1: मेरा मन कहीं नहीं लगता, आप कोई प्रोग्राम नहीं बनाए।
0: ओ डेजी, यही तो मौका है जब हम कुछ घूम फिर सकते हैं, अब बाद में जब बाल बच्चे हो जाएंगे तो गृहस्थी से निकलना मुश्किल हो जाएगा। और एक बात कहूं, अगले साल तो हमारे एक बच्चा भी होना चाहिए, प्यारा प्यारा दुल्हारा सा नन्ना मुन्ना।
1: प्यारा प्यारा सा दुल्हारा सा नन्ना।
2: देसी
3: छोड़ दीजिए ना।
2: अरे अरे सुनो तो।
3: नहीं सुनती।
2: ओफो, अरे बात तो सुनो
3: बेनी। देखो देखो तुम्हारी शरारतें बहुत बढ़ रही हैं।
2: ओ डेजी डेजी माय लव।
4: डेजी, हमारे बच्चा नहीं होगा क्या?
1: ईश्वर की कृपा हुई तो।
4: सुनो, मुझे तो नन्ना सा प्यारा सा तुम्हारे जैसा।
1: क्यों, तुम्हारे जैसा क्यों नहीं?
4: अच्छा बाबा, हम दोनों जैसा।

0: सकती। तुम इस तरह खामोश और परेशान से क्यों?
1: नहीं कुछ नहीं।
0: अब चलो सिनेमा चले।
1: नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं, मन बहुत अशांत।
0: अरे मन में शांति लाने के लिए तो कह रहा हूँ। कम ऑन डेजी, दूसरी साड़ी पहन लो, सिनेमा चलेंगे, जल्दी करो। लो ये साड़ी पहन लो।
1: ये साड़ी
0: डेजी, व्हाट इज दिस, क्या है?
1: बेनी के प्रेजेंट की मिसिंग।
0: ओह डेजी, माय गॉड।

0: दिन मैं सिनेमा गई। मैं लॉरेंस को निराश नहीं करना चाहती थी। मुझ निराश्रित विधवा को डॉक्टर लॉरेंस ने सहर्ष स्वीकार किया था। नए जीवन और नई परिस्थितियों में मैं घुल मिल गई और इस तरह एक साल आनंद पूर्वक बीत गया। मैंने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन शिशु जन्म के बाद परिवार की शांति में विघ्न पड़ गया।
1: कैसे?
0: शायद वो एक आंधी का आरंभ था। सुनिए, बच्चे की बीमारी कम नहीं हो रही है।
2: कौन कहता है?
0: मुझे ऐसा लगता है।
2: मुझे तो ऐसा नहीं लगता।
0: लेकिन वो उसी तरह निढाल पड़ा
2: पड़ा रहे, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है।
0: इस तरह पड़े रहने से क्या बीमारी कम होगी?
2: भाई उसे दवा दी जा रही है।
0: लेकिन इस दवा से तो कोई आराम नहीं है।
2: इसका फैसला करने वाली तुम कौन होती हो? मैं डॉक्टर हूँ, मैं जानता हूँ मेरी दवा कितनी इफेक्टिव है।
0: आपकी तेजी आपकी बातों में दिखती है, दवा में नहीं। जोर से मत बोलिए। दो दिन से वो दवा दी जा रही है, लेकिन अभी तक बेबी को जरा सा भी आराम नहीं आया।
2: तो क्या करूँ मैं, आराम इंजेक्ट किया जाए?
0: क्यों इस तरह गर्म हो रहे हो? बच्चे को एक बार एग्जामिन तो कर लो।
2: तुम एग्जामिन कर लो खुद, इत्मीनान हो जाएगा तुम्हें। ये लो स्टेथोस्कोप।
0: अगर इच्छा नहीं है तो सिर्फ मना कर देना काफी।
2: इच्छा नहीं है
0: एग्जामिन करने की या बच्चे की?
2: कुछ भी मतलब निकाल लो।
0: अपने अबोध बच्चे से इतना निष्ठुर व्यवहार।
2: अपने बच्चे से? माय फुट, तुम्हारे बच्चे से कहो तो ज्यादा ठीक रहेगा।
0: क्या कहा? मेरा बच्चा तुम्हारा बच्चा नहीं है।
2: दूसरों की नजरों में कानून के अनुसार भी है, लेकिन आत्मीयता की दृष्टि से नहीं है। मैं इतने कुरूप बच्चे का पिता होने का भार नहीं ढो सकता।
0: दुनिया को एक सुंदर सा बच्चा दिखाना होगा। इस कंडीशन पर मैं मां नहीं बनी हूँ। ईश्वर ने जो हमें दिया है उसे हमें स्वीकार करना होगा, उसे प्यार करना होगा।
2: मैं ऐसे बच्चे को प्यार नहीं कर सकता।
0: लेकिन मैं मां हूँ, मैं प्यार किए बिना नहीं।

0: नहीं सकती।
1: अच्छा छोड़ो, वो डॉक्टर रामदास आ रहे हैं, उनके सामने झगड़ा बंद करो। उन्हें कम से कम ऐसा लगना चाहिए जैसे हम बड़े प्रेम से रहते हैं।
2: हेलो डॉक्टर, आइए आइए डॉक्टर रामदास।
3: भाई वाह वाह वाह, क्या रेडीमेड हंसी के साथ खड़े हैं आप।
2: रेडीमेड हंसी? अरे भाई, हमने तो आपको गेट पे देख लिया था।
3: क्यों जी?
0: जी
3: भाई, बहुत दिनों से इधर आने की सोच रहा था मैं।
0: चलिए कम से कम आज तो आया। आप इतनी जल्दी मुझे भूल जाएंगे, मैं सोच भी नहीं सकती थी।
3: अरे ऐसे क्यों कह रही हो डेजी, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। भाई जैसे ही फुर्सत मिली मैं चला आया। अरे हाँ, ये लो बच्चे के लिए कुछ खिलौने।
2: अरे भाई वो तो अभी खेलने लायक भी नहीं हुआ है।
3: ओ डॉक्टर, वो खुद नहीं खेल पाएगा लेकिन दूसरों को तो खेलते हुए देख लेगा। ये तो पालने पर लटकाए भी जा सकते हैं। अरे चाबी भरकर छोड़ दो, ये सब खिलौने लट्टू की तरह एक साथ घूमने लगेंगे।
0: एक साथ घूमने लगेंगे? आपने बहुत सोच समझ कर खिलौने छांटे होंगे।
3: अरे हाँ डेजी, बच्चा कहाँ है? सो रहा है?
0: वो तो बहुत बीमार है। दो तीन दिन हो गए बुखार चढ़ा हुआ है, हंसना खेलना सब बंद है।
2: अरे भाई बुखार चढ़ने पर तो हंसना खेलना बंद हो ही जाता है, क्यों डॉक्टर?
3: चलिए एक बार मैं भी देख लूँ। ओ लगता है सोया हुआ है। डॉक्टर लॉरेंस, बुखार अभी भी है?
2: Well, but that doesn't matter, doctor. Slight fever only. मैंने दवा दे दी है वैसे।
3: अच्छा मैं चलता हूँ। भाई कुछ जरूरी काम है, चलो डेजी।
2: ओके
0: अच्छा
2: बाय डॉक्टर, बाय।
0: ये अभिनय और कितने दिन चलेगा?
4: जब तक जरूरी होगा।
0: मुझसे अब और नहीं सहा जाता, कई दिनों से आप इस तरह का अभिनय करते आ रहे हैं, आखिर ये नाटक क्यों?
4: अपने लिए।
0: लेकिन अब मेरी बर्दाश्त से बाहर है ये।
4: होगा, ये मेरी इच्छा है और आज्ञा भी।
0: मेरी इच्छा को धूल में मिलाने वाले आप मुझे आज्ञा दे रहे हैं?
2: तुम्हारी कौन सी इच्छा मैंने पूरी नहीं की डेजी?
0: आपसे कहा था जरा बच्चे की जांच कर लो।
2: जांच करके अब कोई खास नतीजा नहीं निकलेगा।
0: ये क्यों नहीं कहते कि आप जांच करना ही नहीं चाहते? कैसी विडंबना है ये, अपने बच्चे को कुरूप देखकर एक डॉक्टर पिता उससे दूर खड़े रहना चाहता है।
4: डेजी, तुम मेरी निराशा नहीं समझ सकते।
0: डॉक्टर रामदास अभी आए थे, उन्होंने भी बच्चे को देखा था लेकिन उन्होंने उसकी कुरूपता के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा।
4: हमारे सामने कुछ नहीं कहा, यही ना, समझदार आदमी है वो। लेकिन क्या ये बच्चे के सुंदर होने का सर्टिफिकेट है?
0: बंद भी करो ये सब, बाहरी चमक को सौंदर्य समझने वाले आप।
4: तुम शायद कुरूपता में सौंदर्य देख सकती हो डेजी, बेनी में भी तो तुमने सौंदर्य देखा था।
0: बेनी को यहाँ क्यों घसीट लाया?
2: मैं घसीट लाया? ये कहो बेनी को तुमने हर जगह बसा रखा है, अपने मन में, विचारों में, इस कमरे में, इस घर के कोने कोने में बेनी बसा हुआ है, और शादी के बाद भी तुमने बेनी की कब्र पर जाने की इच्छा की थी।
0: क्या मैंने कोई गलत बात की थी? इसमें बिगड़ने की क्या बात है?
2: तुम्हारा निकट का संबंध किससे ज्यादा है, मरे हुए बेनी साथ या जीवित डॉक्टर लॉरेंस के साथ?
0: क्या सवाल कर रहे हो तुम?
2: ने मन में कौन बसा रखा है, मैं या बेनी?
0: तुम्हें क्या हो गया है?
2: तुम उससे ज्यादा बेनी के फोटो से प्यार करती हो, तुम इसकी पूजा करती हो, लेकिन लेकिन अब ये सब नहीं होगा, ये फोटो अब यहां नहीं रहेगी।
0: मिल गया संतोष। मुझे क्षमा करना बेनी, मुझे दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए थी, मुझे जीने के लिए तुम्हारी मधुर यादें काफी थी बेनी। कौन कौन है?
3: डेजी, एक चीज भूल गया था मैं, ये डायरी। अरे लॉरेंस कहाँ है?
0: अभी बाहर गए हैं डॉक्टर। डॉक्टर आपको मेरी एक शंका दूर करनी है।
3: कैसी शंका?
0: मेरा बच्चा कुरूप क्यों है? क्या क्या बेनी को सदा

0: डॉक्टर तो रहने से ऐसा हुआ है डॉक्टर?
1: ओह डेजी, तुम्हारा सवाल बड़ा विचित्र है।
0: लेकिन ऐसा हो सकता है क्या डॉक्टर?
1: नहीं।
0: हाँ, मुझे तो लगता है लॉरेंस को ऐसी कुछ शंका है।
1: लॉरेंस को? नो नो, नेवर, वो ऐसी कोई शंका नहीं कर सकता।
0: तब ये हुआ कैसे डॉक्टर?
1: डेजी, इसके कई कारण हो सकते हैं। पति या पत्नी के परिवार में पहले किसी का रंग काला रहा हो, या फिर कोई बहुत कुरूप रहा हो, तभी यह संभव हो सकता है कि उसकी संतान में या संतानों की संतान में इस तरह की एबनॉर्मेलिटी आ जाए।
0: आप ये बात लॉरेंस को समझा सकेंगे डॉक्टर?
1: लेकिन तुम्हारी आवाज क्यों कांप रही है? ये तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों हो रहा है डेजी? क्या हुआ? बोलो डेजी, बोलो क्या हुआ?
0: इस बच्चे के जन्म के बाद से ही लॉरेंस मुझसे और इस बच्चे से नफरत करने लगे।
1: क्या?
0: हाँ डॉक्टर, आजकल मैं एक अग्नि चक्र में से निकल रही हूँ। पहले जब आप आए तब हम केवल अभिनय कर रहे थे।
1: क्या?
0: लेकिन वास्तव में बात डॉक्टर, आप मुझ पर एक कृपा कीजिए।
1: बोलो।
0: प्लीज डॉक्टर, मेरे बच्चे को एग्जामिन कर लीजिए।
1: मैं?
0: डॉक्टर, मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए डॉक्टर, उसकी हालत ठीक नहीं है। प्लीज डॉक्टर, उसे देख लीजिए डॉक्टर।
1: नहीं नहीं डेजी, नहीं, ये ठीक नहीं है। बच्चा डॉक्टर लॉरेंस के ट्रीटमेंट में है। मैं ऐसा करना ठीक नहीं समझता। आई एम सॉरी।
0: प्लीज डॉक्टर, प्लीज मेरे बच्चे को बचाइए डॉक्टर। देखिए ये खिलौने आप इस बच्चे के लिए लाए हैं ना, उस बचा लीजिए डॉक्टर, प्लीज।
1: नहीं डेजी, ये ठीक नहीं है।
0: प्लीज डॉक्टर।
1: अच्छा चलो, मैं बच्चे को देख लेता हूँ।
0: डॉक्टर रामदास बच्चे को एग्जामिन कर ही रहे थे कि बीच में लॉरेंस लौट आए। उन्हें देखते ही वो आग बबूला हो गए। उन्होंने डॉक्टर रामदास का लिखा हुआ प्रिस्क्रिप्शन फाड़ डाला और रामदास को बड़ी निर्दयता पूर्वक घर से बाहर निकाल दिया। और तब मैं अपनी वेदना नहीं छिपा सकी। नतीजा ये हुआ, लॉरेंस ने कस के तमाचा मेरे गाल पर जड़ दिया। और कुछ बाद मेरा कुरूप बच्चा दुनिया से चल बसा। मेरे दुख की कोई सीमा न रही। बच्चे के खाली पालने को देखकर मैं रोती। एक दिन मैंने बेनी के गिटार को बच्चा मानकर पालने पर रख दिया और लोरी गाने लगी। तभी लॉरेंस आ धमकी और गिटार को निर्दयता से जमीन पर पटक कर तोड़ डाला। बोले ये बेनी का प्रेत है।
2: बेनी का प्रेत?
0: हाँ, मैं चीख उठी। थोड़ी देर बाद जब मैंने घर से बाहर निकल जाना चाहा तो देखा सामने से डॉक्टर रामदास आ रहे हैं। मैं खामोश एक तरफ खड़ी हो गई।
1: डॉक्टर लॉरेंस?
2: ओ डॉक्टर रामदास,
1: उस दिन तुमने मुझे जिस तरह दुत्कार कर निकाल दिया था, उसके बाद मेरा यहां आना अशिष्टता ही समझी जाएगी।
2: बैठ जाइए
1: लॉरेंस। आप जैसा चाहते थे बच्चा चल बसाना
2: जी,
1: शायद ये सोचकर कि मेरा ट्रीटमेंट कहीं बच्चे को बचा न ले, आपने मेरा प्रिस्क्रिप्शन फाड़ दिया था।
3: नहीं तो, लेकिन बिना बताए मेरी गैरहाजिरी में आप दोनों को उस खेल ने, उस अभिनय ने मुझे बहुत उत्तेजित कर दिया था और मैं
1: आपको अरे जिसने अभिनय ही अपना स्वभाव बना लिया है, अगर ऐसा लगा तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं।
3: समझा नहीं?
1: कोई कुछ समझ न सके, इसी में तो आपकी जीत है। बिना किसी स्टेज फाइट के तुमने जीवन मंच पर कितना बढ़िया अभिनय किया लॉरेंस।
3: What do you mean, डॉक्टर रामदास, आप क्या कह रहे हैं?
1: बेनी को आपने ही तो मारा था ना
3: डॉक्टर।
1: कांपो नहीं, मेरे सच

0: बोलने पर चौक क्यों पड़े तुम?
1: नहीं नहीं पता नहीं आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं।
0: डॉक्टर लॉरेंस, काश इस समय तुम अपना चेहरा देख सकते। फैक्ट्स कलेक्ट करने के बाद ही मैं ये बात अधिकार पूर्वक कह रहा हूं। रोंगटे खड़ा कर देने वाली इस रहस्य की सूचना मुझे तुम्हारे असिस्टेंट डॉक्टर आशीष ने दी।
1: स्टॉप दिस नॉनसेंस आई से डॉक्टर।
0: नो, इट इज नॉट नॉनसेंस बट ए ट्रुथ, ए बर्निंग ट्रुथ।
1: डॉक्टर रामदास, आधार रहित आरोपों से लोगों को बदनाम मत कीजिए। क्या क्या क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैंने उसे जहर देकर मार डाला?
0: नहीं, तुम इतने बेवकूफ नहीं कि जहर देकर मार डालो। ऐसे ऑपरेशन के बाद तुमने रोगी को वो इंजेक्शन दिया जो उसे कभी नहीं देना चाहिए था। क्यों, ये सच है ना? दो घंटे के बाद ही पेशेंट की हालत बिगड़ने लगी। ड्यूटी नर्स दौड़कर बुलाने के लिए गई लेकिन उस वक्त तक आप बाहर जा चुके थे। ये सब आपने जानबूझकर ही किया। डॉक्टर आशीष दौड़े आए लेकिन उस वक्त तक बेनी मर चुका था।
1: डॉक्टर डॉक्टर दैट वाज मेयर डेथ, एक बिल्कुल नेचुरल डेथ थी।
0: नॉट ए मेयर डेथ, इट वाज ए क्लियर मर्डर।
1: डॉक्टर नो, नो डॉक्टर,
0: तुमने एक हत्या की है डॉक्टर लॉरेंस, तुमने एक हत्या की है। और सारी जानकारी हासिल करने के बाद ही मैं ये बात कह रहा हूं, डेजी के सौंदर्य पर मोहित होकर तुमने बेनी की हत्या की।
1: नो नो, क्यों डॉक्टर,
0: सच है ना? सच है ना? तुमने सबसे यही कहा कि अपने घनिष्ठ मित्र के स्नेह से उर्ण होने के लिए तुमने उसकी विधवा से विवाह कर लिया। क्यों बोलो? अरे तुम पसीने में डूब क्यों गए, इतना हाँप क्यों रहे हो? क्यों डॉक्टर लॉरेंस, ये सब अक्षर अक्षर सच है ना?
1: डॉक्टर डॉक्टर
0: लॉरेंस, मैं कहता हूं साफ साफ कह दो, ये सच है ना? ये सच है ना?
1: सच है, सच है डॉक्टर, लेकिन उससे गलती हो गई डॉक्टर, गलती हो गई।
0: बेचारा बेनी, मैं ये बातें करने इसलिए ऐसे वक्त पर आया हूं जब तुम्हारी पत्नी घर पर नहीं है। खैर डॉक्टर लॉरेंस, जो कुछ हो गया सो हो गया। भविष्य में एक अच्छे पति होकर शराफत के साथ जीवन बिताओ, समझे? इस सेंसिटिव लड़की को और ज्यादा तकलीफ मत पहुंचाओ।
1: डॉक्टर मुझसे गलती होगी डॉक्टर, लेकिन प्लीज डॉक्टर, प्लीज ये सब बातें आप किसी और से नहीं कहिएगा।
0: नहीं कहूंगा।
1: थैंक यू।
0: नहीं कहूंगा।
1: थैंक यू डॉक्टर।
0: क्योंकि तो कहने में ही तुम्हारा भला है। अच्छा डॉक्टर लॉरेंस, मैं अब चलता हूं।
1: मैंने क्या कर डाला है? मैं क्यों भूल गया कि इंसान जो भी करता है उसकी उसकी कीमत एक न एक दिन उसे चुकानी होती है। अरे अरे डेजी, अरे इतनी जल्दी कैसे लौट आई?
2: तुम्हारी आवाज ने मेरे पांव रोक दिए, इसलिए जा नहीं सकी।
1: डेजी डेजी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है।
2: अरे इतनी सी देर में क्या हो गया?
1: वो तुम्हारे जाने के बाद मुझे अपने ऊपर ग्लानी होने लगी। देखो डेजी, मुझे तुमसे इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो डेजी।
2: लॉरेंस, तुम अचानक,
1: मैंने तुमसे कितनी कड़वी बातें कही, तुम्हें मैंने कितनी तकलीफ दी।
2: मैंने भी तो तुमसे झगड़ा किया।
1: हाँ, लेकिन अब मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं करूंगा, कोई कष्ट नहीं दूंगा डेजी।
2: मैं भी तुम्हें,
1: डेजी जो कुछ भी हुआ है सब भूल जाओ डेजी, सब भूल जाओ।
2: भुला दूंगी, हमेशा के लिए भुला दूंगी।
1: वो डेजी, मैंने अभी तक कॉफी नहीं पी है।
2: हाँ हाँ, मैं अभी लाती हूँ।
1: मैंने सोचा तुम्हारे लौटने पर हम दोनों एक साथ पिएंगे। डेजी, वो जो बेनी का फोटो है ना, हाँ, उसको फ्रेम करवा के यहाँ रखेंगे।

0: मुझे बहुत दुख है कि मैंने उसका किताब तोड़ दिया। मैं एक नया किताब ले आऊंगा जैसी। हाँ, उस गिटार को हम बहुत जतन से रखेंगे। और सुनो, वो तुम्हारी साड़ी बहुत अच्छी है, वही वाली। हाँ, आज उसे ही पहने। हाँ, वो डेजी, हम ऊटी का प्रोग्राम भी बनाएंगे। हम ऊटी भी जरूर चलेंगे, चलेंगे ना?
1: हाँ हाँ, जरूर चलेंगे। लो कॉफी पियो। डॉक्टर साहब,
0: देसी,
1: तुमने मेरे प्राण प्रिय बेनी को मार डाला ना?
0: ये क्या कर रही हो तुम देसी?
1: मेरे रूप और सौंदर्य ने तुम्हें ये घृणित काम करने की प्रेरणा दी थी ना?
0: नहीं, नहीं, देसी,
1: तुमने अपने सहपाठी और अपने परम की जान ली।
0: नहीं नहीं नहीं, देसी सुनो तो।
1: सुनो डॉक्टर, ये घृणित सत्य जान लेने के बाद अब हम साथ नहीं रह
0: सकते। देसी, ये सच नहीं है। मैं कहता हूँ डीसी,
1: झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। डॉक्टर रामदास का एक एक शब्द मैंने सुन लिया है।
0: ओह माय गॉड,
1: मैं जा रही थी लेकिन डॉक्टर रामदास को इधर आते देख एक कोने में खड़ी हो गई थी।
0: ओह नो,
1: मेरे लिए अब सब कुछ खत्म हो गया है। मैं आपसे विदा ले रही हूँ।
0: विदा?
1: मैंने अभी जो कॉफी पी है ना, उसमें जहर खुला हुआ
0: है। डेजी, डेजी,
1: मैं कुछ ही पल की मेहमान हूँ। मुझसे जो भी गलती हुई हो उनके लिए मुझे माफ कर देना।
0: प्रतिशोध लिया है डेसी?
1: नहीं लॉरेंस, नहीं, नहीं लॉरेंस, विश्वास करो मैंने प्रतिशोध नहीं लिया है। ओह, ये क्या हुआ? ये कॉफी की प्याले तो नहीं बदल दिए? ओह नो, ये क्या हो गया? ये पहली कॉफी तो मेरी थी, तुमने वो कप कैसे ले लिया? लॉरेंस, लॉरेंस, लॉरेंस, लॉरेंस, लॉरेंस, ये कैसे हो गया? करो करो बेटा, भागी भागी हॉस्पिटल गई। डॉक्टर आए लेकिन तब तक लॉरेंस खत्म हो चुके थे। मैं मूर्ति बनी खड़ी रही। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये गलती कैसे हो गई। मैंने तो दोनों प्याले अलग अलग और दूर रखे थे। फिर पुलिस, अदालत, मुकदमा, हत्या का आरोप, सजा और जेल की एक कोठरी। की लपटों का एक गोल घेरा जिसमें से मुझे बिना झूल से बाहर निकलना था। मुझे तो लगता है मेरा पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा और मैं इस अग्नि चक्र से बाहर नहीं निकल पाऊंगी।

0: सोचने लगे।
1: एक छोटी सी बात।
0: क्या?
1: यही कि संसार में प्राय निर्दोष और निरपराध व्यक्ति ही यातना क्यों पाते हैं? संसार में प्राय निर्दोष और निरपराध व्यक्ति ही यातना क्यों पाते हैं? संसार में प्राय निर्दोष और निरपराध व्यक्ति ही यातना क्यों पाते हैं?

आप सुन रहे थे नाटक अग्निचक्र का दूसरा और अंतिम भाग। ये था मलयालम नाटक अग्निवलयम का हिंदी नाट्य रूपांतरण। मूल लेखक सीएल जोस, रूपांतरकार पीजी वासुदेव, निर्देशक थे भारत रत्न भार्गव। ये थी केंद्रीय नाटक एकांश की प्रस्तुति।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: उजाले उनकी यादों के, उजाले

0: नमस्कार श्रोताओं, उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज ऐसे कलाकार की बातें जो पुराने जमाने के महान गीतकार और पार्श्व गायक हैं।
1: आओ बच्चों, तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की।
0: जिनके गीतों में ऐतिहासिक कहानियां सुनाई देती हैं और स्वतंत्रता संग्राम की गाथा भी।
2: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने लंगारा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो ऐ दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है।
0: जिनके गीतों में धार्मिकता भी है और

0: कभी छांव, कभी धूप तो कभी छांव।
1: जी हाँ, अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप की मंदाकिनी जोशी से बातचीत हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
2: दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ मंदाकिनी जोशी। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। नए जगत में हुआ पुराना ऊंच नीच का किस्सा, सबको मिले मेहनत के मुताबिक अपना अपना हिस्सा। ये पंक्तियां लिखने वाले कवि और गीतकार थे प्रदीप जी। जी हाँ, वही प्रदीप जिन्होंने लिखा दूर हटो ऐ दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। जिनकी कलम से निकला ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। जिन्होंने कहा साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। जी हाँ, वही कवि प्रदीप, यानी शब्दों की आकाशगंगा में एक चमकता हुआ सितारा। उनके गीतों में देशभक्ति का जज्बा था, यानी जब जब हम गंगा जमुनी तहजीब पर, भारत की सांस्कृतिक विविधता पर बात करेंगे, तब तब हमें महान कवि प्रदीप जी को, उनकी रचनाओं को याद करना ही होगा। और आज उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में हम कवि और गीतकार प्रदीप जी को ही याद कर रहे हैं। इसीलिए आज विविध भारती के स्टूडियो में ठीक हमारे सामने बैठी हैं गीतकार और कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप। स्वागत है आपका मितुल जी विविध भारती के इस स्टूडियो में।
3: बहुत बहुत आभार जो आज आपने मुझे यहाँ बुलाया
2: जी,
3: क्योंकि विविध भारती से हमारा नाता इतना पुराना है। आप ये समझ लीजिए कि हम उसी के साथ बड़े हुए हैं
2: जी,
3: है ना। मुझे लगता है कि पूरे भारत देश के लोग, ऐसा नहीं होगा कोई भी कि जिसने विविध भारती नहीं सुना होगा। तो ये हमारी रग रग में बसा हुआ है
2: जी।
3: तो खूब धन्यवाद, आभार आपका
2: जी। बिल्कुल, आपका भी आभार कि आपने अपना अमूल्य वक्त आज हमें दिया है। और आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे आपके पिता और राष्ट्रकवि प्रदीप जी के बारे में
3: जी।
2: सबसे पहले आप हमें बताइए कि आप कैसी हैं।
3: मैं तो अच्छी हूँ
2: मित्र जी। आप राष्ट्रकवि गीतकार प्रदीप जी की सुपुत्री हैं और आप अपने पिता जिनका नाम रामचंद्र नारायण द्विवेदी था, उनके बारे में हमें बताइए कि उनका नाम रामचंद्र नारायण द्विवेदी से प्रदीप कैसे पड़ा और किस तरह का पिता का प्यार था, किस तरह का व्यवहार था और आपके घर परिवार में कौन कौन थे।
3: सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी मतलब कवि प्रदीप, उन्होंने अपनी जो लेखनी की शुरुआत की, मतलब लिखना शुरू किया अपने स्टूडेंट्स डे से, जब वो विद्यार्थी थे, इलाहाबाद में पढ़ते थे।
2: अच्छा।
3: तो इलाहाबाद और लखनऊ की उनकी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई हिंदी भाषा के, मतलब जो एक उच्च स्तर का उनकी जो लेखनी थी वो बहुत उच्च स्तर की हिंदी थी। और वो कवि थे
2: जी,
3: कवि सम्मेलनों में जाया करते थे विद्यार्थी जीवन में भी। तो उनका जो उन्होंने उपनाम रखा रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप, तो प्रदीप उनका उपनाम था।
2: अच्छा जी।
3: और ज्यादातर लेखक हैं, कवि हैं, वो अपना उपनाम रखते
2: ही हैं।
3: तो जब कवि थे और वो कवि सम्मेलनों में जाते थे तब तो वो नाम चलता था रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप।
2: अच्छा।
3: लेकिन जब वो मुंबई आए, मुंबई तो वो घूमने के लिए आए थे और तब तो मुंबई नहीं बम्बई थी
2: जी। बिल्कुल।
3: और 1939 में वो बॉम्बे आए घूमने के लिए, ऐसा कोई नहीं था कि यहाँ पर वो बस जाएंगे, लेकिन ऐसा जैसे बोलते हैं ना कि नियति डेस्टिनी, तो उन्होंने उनको मुंबई तक खींच के ले आई उनकी नसीब। और ऐसा हुआ कि यहाँ पर उनको एक छोटे से कवि गोष्ठी में सम्मिलित होने का उस वक्त मौका मिला। तो वो छोटी सी कवि सम्मेलन नहीं था
2: जी,
3: बहुत बड़े बड़े यहाँ के नामी कवि जो मुंबई के थे वो उसमें बैठे हुए थे। और उन्होंने कहा कि ये जो लड़का आया है इलाहाबाद लखनऊ से, तो हम उनकी कविता सुनेंगे। तो यहाँ के जो बड़े कवि बैठे थे वो सब गुजराती थे।
2: अच्छा जी।
3: और हिंदी कवि वो सिर्फ एक थे, उन्होंने कहा मैं तो हिंदी में कविता कहूंगा। तो कहा कि कोई बात नहीं, हम लोग तो सब सुनेंगे आपकी कविता। तो उन्होंने वहां पर अपनी कविता सुनाई। तो उस कवि सम्मेलन में हिमांशु रॉय नाम के जो बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, उनके मैनेजर वो वहां पर थे
2: जी,
3: रावल जी।
2: अच्छा।
3: और उन्होंने उनको सुना, उन्होंने जाकर के हिमांशु रॉय को बोला

0: कि बहुत अच्छा एक कवि आया हुआ है घूमने के लिए, तो क्यों ना हम उनकी कविता सुने और हो सकता है उनकी कविता का हम उपयोग करें अपनी फिल्मों में। तो प्रदीप जी को बुलाया गया हिमांशु रॉय के ऑफिस में
1: जी।
0: वहां पर देविका रानी बैठी थी, हिमांशु रॉय बैठे थे, अशोक कुमार बैठे थे, ऐसे सब लोग बैठे थे। वहां पर प्रदीप जी को कहा कि आप अपनी कविता सुनाइए। बोलते मैं तो कवि हूं भाई।

0: बोलते मैं तो कवि हूं भाई, मुझे आपके फिल्मों विल्मों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो लगा कि आपने मुझे बुलाया है तो आप मुझे हीरो बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा नहीं, सुनाइए तो सही। फिर सुनाया अपनी शैली में, उन्होंने अपनी एक कविता सुनाई और वो लोग बहुत इम्प्रेस हो गए। और वो इम्प्रेस ऐसे हो गए कि अंदर जाके हिमांशु रॉय ने कहा कि मुझे ये कवि वापस नहीं जाने चाहिए, मैं चाहता हूं कि मेरी फिल्मों में ये लिखे। प्रदीप जी तो घर आ गए, उनको पता नहीं था कि पीछे पीछे क्या हुआ।
1: अच्छा,
0: तो वापस से वो मैनेजर आए उनके पास दूसरे तीसरे दिन कि भाई आप वापस मत जाइए, थोड़ा सा हमारे साथ आप फिर से चलिए ऑफिस में और हम आपको कुछ कहना चाहते हैं। प्रदीप जी को वो लेके गए, हिमांशु रॉय ने कहा हम आपकी कविता को हमारे फिल्म में आप लिखिए हमारे लिए। प्रदीप जी ने कहा मैं कोई तुक्कड़ कवि नहीं हूं, मैं तो कवि हूं और कवि फिल्मों में कैसे लिख सकता है। बोलते कोशिश तो करिए हमारे लिए, एक फिल्म करिए, नहीं जमा आप तो चले जाइए। तो फिर वो एक फिल्म में जब उन्होंने लिखा और वो फिल्म में इन्होंने जब सुना कि ये तो अलग तरीके का जो एक राइटिंग है, तो फिर प्रदीप जी को उसमें साइन भी कर लिया गया और उसमें वो कवि बन गए, गीतकार बन गए।
1: तो ये कौन से सन की बात है और किस फिल्म के लिए उन्हें लिया गया?
0: कंगन फिल्म उनकी पहली थी। तो अब आपके सवाल पे आती हूँ मैं
1: जी,
0: कि आपने कहा कि वो रामचंद्र नारायण द्विवेदी में से कवि प्रदीप कैसे बन गए।
1: बिल्कुल,
0: उनका जो उपनाम था प्रदीप, प्रोड्यूसर ने कहा कि भाई आपका नाम तो बहुत बड़ा है, वो तो अजीब सा लगता है जब स्क्रीन पे आता है रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी प्रदीप, तो ये ठीक नहीं है, हम इसको सिर्फ प्रदीप कर लेते हैं। तो इसमें से वो सिर्फ प्रदीप हो गए, है ना। और तो कवि प्रदीप कैसे हुए? उस जमाने में उसी दौरान एक और नाम था प्रदीप कुमार
1: जी, एक्टर
0: एक्टर तो लोगों को कन्फ्यूजन होता था कि ये प्रदीप और प्रदीप कुमार, अभी भी काफी कन्फ्यूजन होता है। तो प्रदीप कुमार और कवि प्रदीप के कन्फ्यूजन में फिर सोचा कि ये क्या करें, तो बोलते प्रदीप के आगे कवि लगा दो। तो कवि प्रदीप अलग हो गए
1: और
0: प्रदीप कुमार अलग हो गए। तो ये आपके सवाल का जवाब है।
1: तो मितुल जी, आपसे हम बातें कर रहे हैं, इस बीच एक गाना सुन लिया जाए आपकी पसंद का?
0: एक गाना तो सुनना ही चाहिए, सूरज रे जलते रहना।
1: वाह क्या बात है,
0: हेमंत कुमार की आवाज में। ये भी आप सुनिए कि हेमंत कुमार, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और कवि प्रदीप एक कैसा गोल्डन वो है साथ में,
1: त्रिकोणीय व्यक्तित्व।
0: हाँ
1: हाँ जी बिल्कुल, तो आइए सुनते हैं प्यारा सा गीत।

0: मितुल जी, हम ये भी जानना चाहते हैं कि वो कभी प्रदीप तो बने, लेकिन वो पिता कैसे थे, घर का माहौल कैसा था, घर में कौन कौन सदस्य थे, और जो मितुल नाम की उनकी सुपुत्री आज हमारे सामने बैठी है, बाल्यावस्था में उन्होंने क्या देखा, क्या सीखा पिता के साथ रहकर, घर में किस तरह का माहौल रहता था?
1: हम दो बहनें थी, मेरी बड़ी बहन सरगम और मैं छोटी, और हमारे बीच में 10 साल का फर्क था।
0: अच्छा।
1: दोनों बहनों के बीच में तो मैं छोटी और दीदी ज्यादातर बापू के साथ बहुत घूमी, उनके जो शुरुआत की जो फिल्में थी तो उसके प्रीमियर्स में या उनके कोई कोई ऐसे प्रोग्राम्स रहते थे उसमें। मुझे इतना मौका उस वक्त नहीं मिला क्योंकि मैं छोटी थी। उसके बाद में जब मैं बड़ी हो गई तब तो मैं काफी उनके साथ में हर एक प्रोग्राम्स में जाती
0: जाना
1: थी।
0: हुआ जी।
1: घर में कभी कोई फिल्मी माहौल नहीं रहा, हमारे घर में कोई भी फिल्मी माहौल बिल्कुल नहीं रहा, तो इसीलिए हम काफी अछूते रहे। उनके साथ प्रीमियर में जाना या फिल्म की रिलीज हुई या पार्टीज नहीं होती थी, ना हमारे घर में होती थी ना मेरे बापू हमको कोई पार्टीज में ले जाते थे।
0: जी।
1: लेकिन ऑफिशियल प्रोग्राम रहा, जैसे कोई प्रीमियर है या कोई जैसे उनको कुछ अवार्ड मिल रहा है या ऐसा कोई है तो उसमें हम जाते थे, तो हम अछूते रहे फिल्मी माहौल से। एकदम सीधे सादे व्यक्ति
0: और सिद्धांतवादी।
1: सिद्धांतवादी, लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं कि भाई आपको यही करना है, आपको यही करना है, नहीं। लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई। जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे तो कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं। जब कोई अवार्ड फंक्शन या हुआ, शुरुआत में तो वो अवार्ड फंक्शन में जाते थे, फिर उन्होंने वो भी बंद कर दिया, अवार्ड लेना ही बंद कर दिया।
0: अच्छा।
1: हाँ। तो जैसे घर में माहौल कैसा था, सीधा सादा, मध्य प्रदेश के हम लोग मेन, मेरे पिताजी, मेरी माँ गुजराती
0: जी।
1: तो दो कल्चर थे घर में। घर में बापू भी माँ के साथ गुजराती में बोलना शुरू कर दिया था, तो किसी बाहर वाले को तो पता ही ना चले कि ये इंसान गुजराती नहीं है, हिंदी भाषी है, उतना अच्छा बोलते थे।
0: अच्छा जी।
1: लेकिन घर में ये भी नहीं कि आपको हिंदी में ही बोलना है या गुजराती में, हमारी मर्जी, हम जो बोलना चाहें।
0: इतनी फ्रीडम थी।
1: फ्रीडम, हाँ
0: जी।
1: तो वो फ्रीडम भी बहुत अच्छी रही हमारे लिए जिंदगी में, मेरी और मेरी बहन के लिए, कि किसी प्रकार का फोर्सफुली हमको कोई चीज करने को नहीं बोली गई। नहीं तो इतने पुराने विचार के जो मध्य प्रदेश से आए हुए एक इंसान थे, यूपी में उनकी पढ़ाई हुई और बॉम्बे में आके एक अपने आप को ऐसे ढाल लेना कि दिमाग से भी काफी फॉरवर्ड विचार, उनकी विचारधारा कुंठित नहीं थी, है ना, मन में कोई कुंठा नहीं थी।
0: जी।
1: मेरी माँ और उनकी शादी, तो उन्होंने 7 फेरे की शादी नहीं की ना, रजिस्टर्ड मैरिज थी।
0: अच्छा जी। और हमने ये भी पढ़ा कि उन्होंने जब विवाह के लिए आपकी माताजी को देखा तो कहा कि मैं आग हूं और तुम पानी हो, अगर पानी बनकर रहोगी तो ही मैं विवाह करूंगा, तो इस तरह की बातें भी कभी परिवार में हुई होंगी।
1: बहुत बहुत बहुत सारी बातें हैं। तो शादी के बारे में ये बताऊं कि उन्होंने ये कोई मतलब लव मैरिज नहीं थी, ये प्रॉपर अरेंज मैरिज थी। मेरे नाना नानी वो भी काफी फॉरवर्ड विचारधारा के थे और उन्होंने देखा कि ये कवि है, ये लड़का हमारी ही कम्युनिटी के हैं, हमारी कास्ट के हैं, मतलब ब्राह्मण हम लोग परिवार से हैं, तो नाना नानी ने सोचा कि हम अपनी बेटी को क्यों ना हम इनके लिए हम लोग सोचें कि विवाह बंधन में दोनों बंधे। तो मेरे पिता को पूछा गया कि हमारी बेटी है तो हम चाहते हैं कि आप शादी कीजिए। तो ये तो मैं बहुत शॉर्ट में बोल रही हूँ, आगे तो बहुत सारी बातें हुई होगी इनके बीच में। तो बापू ने कहा कि ठीक है, लेकिन मैं

0: उनसे बात करना चाहता हूँ पहले।
1: अच्छा,
0: तो मेरी माँ हमको बताती थी कि पता नहीं क्या बात करेंगे, तो मैं तो खड़ी हो गई कि हाँ ठीक है, हाथ जोड़ के मैंने कहा कि देखिए जो पूछना है पूछ लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि मैं आग हूँ, मतलब मेरी जो तासीर है
1: जी, वो गर्म है,
0: मैं गर्म है, मैं नाराज भी बहुत होता हूँ, तो मैं आग हूँ, क्या आप पानी बन के रहोगी? दोनों आग होगी तो हम नहीं रह पाएंगे। तो मेरी माँ ने तो कहा कि मैं तो कुछ समझी नहीं, मैंने हाँ कह दिया।
1: उस जमाने में कितनी सादगी और सीधापन होता था ना।
0: तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, तो बात हो गई, पक्की हो गई। दूसरी शर्त तो ये रखी मेरे पिता ने, मैं बिल्कुल रिचुअल्स में नहीं मानता हूँ और मैं बिल्कुल फेरे नहीं करूंगा।
1: अच्छा।
0: हाँ, मैं चाहता हूँ कि रजिस्टर्ड मैरिज हो। नाना ने कहा ठीक है, हम भी यही चाहते हैं। वो बोलते हैं मैं कोई इसमें ज्यादा तामझाम नहीं चाहता हूँ, एकदम सादा विवाह होगा, आप लोगों की तरफ से मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मैं
1: अच्छा
0: कुछ लेना नहीं चाहता हूँ,
1: जी,
0: जो मैं दूंगा वही कपड़े वो पहनेंगी। तो ना मेरे नाना नानी ने कुछ मेरी माँ को दिया, ऑफकोर्स दो तीन साड़ियां तो दी होगी,
1: हाँ,
0: लेकिन कहने का मतलब ये है कि उसी वक्त इतने फॉरवर्ड विचार के मेरे नाना नानी और मेरे बापू।
1: पिता जी,
0: अब आप सोचेंगे कि फिर उनके परिवार का क्या? उन्होंने कहा कि मेरे परिवार से कोई नहीं आएगा, सिर्फ मैं रहूंगा। क्यों? क्योंकि यहां पर सब आएंगे तो मुझे बोलेंगे कि मुझे शूटिंग दिखाओ सब।
1: अच्छा।
0: तो बोले मैं नहीं चाहता हूं कि यहाँ पर सब लोग पूरे वहां से आ जाए लोग और फिर मैं उनको एक एक स्टूडियो में ले जाके शूटिंग दिखाता रहूं।
1: अरे हाँ,
0: तो उन्होंने बोल दिया माँ पर, मैं शादी कर रहा हूं, हम लोग को कोई यहाँ पर नहीं आएगा, हम लोग आ रहे हैं माँ को
1: जी
0: लेके।
1: जी
0: तो वहां से कोई नहीं आया, वहां मेरी दादी मेरे दादा परेशान। उस वक्त तो मोबाइल तो कुछ था नहीं,
1: जी
0: ना तो कोई ऐसे टेलीफोन्स थे, तो उनको लगा कि क्या हुआ होगा, कैसी लड़की होगी, किससे शादी की है। तो फिर मेरे दादा वहां से आए देखने के लिए कि लड़की कैसी है। तो उन्होंने बाहर आके देखा, घर पे कोई नहीं था। नाना ने कहा अरे आप आइए आइए, उनको पता था कि ये, उनका फोटो देखा था, अरे नारायण जी आप आए हैं आइए। बोलते माफ कीजिए लेकिन हमको भेजा गया कि देखने के लिए कि बेटे ने शादी किससे की है।
1: जी
0: तो दादा और मेरे नाना दोनों बैठे, प्रदीप जी को मतलब मेरे बापू को बुलाया गया कि देखिए आपके पिताजी आए हैं। बोलते अरे आप क्यों आए, तो हम तो आ ही रहे हैं अगले हफ्ते। बोलते नहीं, घर में से सबने कहा कि जाके देख के आओ भाई किससे शादी की है।
1: जी
0: खुश हुए, बहुत सेटिस्फाइड हुए, परिवार को देख के खुश हुए, माँ को देख के खुश हुए, और वैसे मतलब ये जो
1: विवाह,
0: यूनियन
1: हाँ,
0: था
1: वो संपन्न हुआ।
0: विवाह का, तो वो खुशी खुशी
1: जी
0: उसकी समापन हुआ,
1: जी तो आपकी माँ जिंदगी भर एक पानी बनकर रही उस
0: पानी बन के
1: दंपत्ति
0: रही।
1: जीवन में।
0: हाँ एक्चुअली वो भी आग थी लेकिन वो पानी बन के रही।
1: जी, ये सबसे बड़ी बात है। जी
0: क्योंकि मेरी माँ को, अब ये बताऊं कि उनको बचपन से ये सिखाया गया कि चाहे आप महिला हैं लेकिन आप लड़के की तरह आप लाठी भी चलाएंगी और आप कहीं कुछ होगा तो आप उसको गले से भी पकड़ेंगी,
1: वाह, उनकी
0: मतलब
1: शिक्षा दीक्षा भी इस माहौल
0: ऐसी
1: में की
0: थी।
1: गई
0: हाँ
1: नाना नानी के द्वारा।
0: हाँ ऐसे ही उनको सिखाया गया कि कोई भी चीज में आपको पीछे नहीं हटना है। तो वो भी उनकी तासीर भी आग वाली थी लेकिन जब बापू से शादी हुई तो उन्होंने अपने आप को ढाल लिया।
1: जी
2: गा रही है जिंदगी।

0: जब हम बात कर रहे हैं प्रदीप जी के व्यवहार के बारे में, तो पिता के रूप में आप उन्हें किस रूप में देखती रही, उनके बारे में आपके क्या विचार बने?
1: मुझे कब पता चला कि ये मेरे पिता कोई खास है? कब पता चला? जब मैं स्कूल में थोड़े आगे बढ़ी, जैसे मैं 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड में आई, तब मुझे पता चलने लगा कि मेरे पिता कोई स्पेशल है। तब तक तो बच्चों को पिता पिता होते हैं,
0: बिल्कुल
1: है ना, ये नहीं पता चलता कि दूसरे के अलग हैं, हमारे अलग हैं। लेकिन मेरे अलग कैसे हैं? क्योंकि जैसे ही 26 जनवरी आई, प्रिंसिपल बोलेंगे मितुल गाना गाएगी। मैंने बोला मेरे पीछे क्यों पड़ते हैं लोग? फिर पता चलने लगा कि क्योंकि मेरे पिता के देशभक्ति के गीत हैं, लोग सुनते हैं, तो उसी के कारण वो लोग मुझे बोलते हैं कि आप गाओ। तो मतलब इस तरह से एक पिता का क्या एक बड़ा रुतबा था, या उनकी क्या हाइट थी, और समाज में वो क्या थे, वो सब पता चलने लगा
0: जी।
1: और खैर वो तो बड़े इंसान थे, लेकिन उन्होंने घर में तो कभी नहीं बताया, मतलब दिखावा नहीं किया।
0: घर में एक आम पिता की तरह,
1: आम पिता की तरह
0: जी।
1: मेरी माँ ने सब संभाला हुआ था, चाहे वो स्कूल का एजुकेशन हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे सब्जी लेने के साथ में जो भी बैंक का काम हो या इनकम टैक्स का काम हो, सब मेरी माँ करती थी। तो मेरे पिता को एकदम अछूता रखा घर के कोई भी टेंशन से। तो उनको टेंशन घर में कोई नहीं रहा कि कोई स्ट्रेस नहीं रहा कि ये करना है वो करना है, कुछ नहीं, वो सब करती थी। इसके लिए उनकी जो लिखने की शक्ति,
0: बिल्कुल,
1: वो और बड़ी मेरी माँ के कारण।
0: बहुत बड़ी बात, और तभी वो राष्ट्र कवि तक का उन्हें दर्जा दिया गया, क्योंकि एक स्त्री का बहुत बड़ा हाथ होता है इस रूप में, और आपकी माँ ने उसे सार्थक कर दिखाया।
1: जी, जी।
0: तो मितुल जी, प्रदीप जी को देशभक्ति और मानवीय संवेदनाओं से भरे गीतों के लिए जाना जाता है, तो उनके गीतों में देशभक्ति का स्वर मुख्य रूप से कैसे मुखर हुआ?
1: जैसे मैंने कहा कि उनकी जो स्कूल की जो पढ़ाई थी, जो एजुकेशन था, वो रतलाम इंदौर वहां पर हुआ, मध्य प्रदेश में। लेकिन जब वो कॉलेज गए, तो कॉलेज वो गए इलाहाबाद में, क्योंकि उनके बड़े भाई मतलब मेरे ताऊजी वो इलाहाबाद में रहते थे और वहां पर उनका घर था। तो फिर मेरे दादा ने अपने छोटे बेटे रामू उसको भेजा इलाहाबाद, मतलब रामू अभी इसलिए बोल रहे हैं कि वो तब विद्यार्थी जीवन में थे। तो वो इलाहाबाद में गए, वहां पढ़ाई उनकी शुरू हुई कॉलेज की। वहां पर उसी वक्त आनंद भवन के आसपास में काफी अपनी जो इंडिपेंडेंस की जो लड़ाई का जो एक सेंटर पॉइंट था, वो इलाहाबाद में था, क्योंकि आनंद भवन में मोतीलाल नेहरू का घर था, जवाहरलाल जी थे, और बड़े बड़े जो वहां के नेता थे वो वहां पर रोज ही उनके वहां कोई मीटिंग होती थी, कुछ होता था, और इनका घर इलाहाबाद में आनंद भवन के पीछे था। तो तभी से एक माहौल भारत की आजादी के लिए लड़ाई
0: जी,
1: वो उन्होंने वहां बहुत नजदीक से देखा। और इलाहाबाद में ही काफी कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती थी कि

0: जहां पर उनको इसमें इन्वॉल्व होने का समय मिला कि जैसे विद्यार्थी जीवन तो पूरे दिन में हो गया, शाम को चले गए सुनने के लिए कि क्या हो रहा है, तो वो इसी बहाने उनको लिखने में एक बदलाव आ गया. पहले वो प्रेम की कविताएं लिखते थे और उसमें से फिर उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को राष्ट्रभक्ति के ऊपर, मतलब वो अपने आप से हुआ, अनायास हुआ है,
1: एक कोई जानबूझ के प्रेरित हुए, क्योंकि माहौल ही ऐसा था, राष्ट्रीय आंदोलन छिड़ चुका था. हाँ. तो उस माहौल में जब वो उन्होंने सांस ली तो उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं ये जो देशभक्ति का जज्बा है. हाँ. वो आम जन तक पहुंचना चाहिए.
0: हाँ. और उसी दौरान चंद्रशेखर आजाद की भी वहां हत्या हुई
1: जी,
0: इलाहाबाद में. तब भी प्रदीप जी वहीं पर थे.
1: अच्छा.
0: हाँ. तो ये सब चीजें उनको मन में बहुत अंदर तक वो झकझोर दिया.
1: हाँ. और तब तक वो कवि प्रदीप ही थे, मतलब गीतकार नहीं बने थे फिल्मों में.
0: नहीं नहीं नहीं, वो तो ये तो मैं उनकी विद्यार्थी जीवन की बात कर रही हूँ ना, यूनिवर्सिटी की. वो तो अपना पढ़ाई लिखाई खत्म होके वो जब ग्रेजुएट हो गए तब वो आए थे मुंबई.
1: जी. हाँ. तो आप बता रही थी उसी दौरान
0: चंद्रशेखर आजाद की भी उसी वक्त इलाहाबाद में उनकी हत्या कर दी गई. और वो काफी, मतलब वो आंदोलन काफी तेज हो गया था उस वक्त.
1: हाँ जी.
0: तो वहीं से उनका जो लिखने का जो स्टाइल है वो देशभक्ति के ऊपर ज्यादा हो गया शुरू.
1: जी. क्या आपको याद है कि उनकी पहली देशभक्ति कविता कौन सी रही होगी, आप हमें अगर सुनाना चाहें, या कोई भी उनकी देशभक्ति कविता जिसे आपको प्रेरित किया हो जिस कविता ने?
0: उन्होंने जो ये उसी वक्त जो लिखा था जब चंद्रशेखर आजाद की हत्या हुई थी,
1: जी,
0: तो मैं आपको वो सुनाना चाहती हूँ.
1: बिल्कुल.
0: और काफी कुछ उन्होंने ऐसी कविताएं लिखी. तो मैं आपको वो थोड़ा सा सुना दूँ. चंद्रशेखर आजाद के ऊपर ही ये कविता लिखी है. वह इस घर का दिया था, विधि ने अनल स्फुल्लिंगों से उसके जीवन का वसन सिया था.
1: बहुत कुछ.
0: जिसने अनल लेखनी से अपनी गीता का लिखा प्राकथन, जिसने जीवन भर ज्वालाओं के पथ पर ही किया पर्यटन, जिसे साध थी दलितों की झोपड़ियों को आबाद करूं मैं, आज वही परिचय विहीन सा पूर्ण कर गया अनंत के शरण. वह था जन्मजात विद्रोही जो विप्लय के तले जिया था.
1: क्या बात है. बहुत खूब.
0: एक थोड़ा सा अंश है, कविता तो लंबी है, लेकिन यही कविता है जो उन्होंने
1: लिखी
0: उसी वक्त लिखी.
1: उसी दौरान उनके भीतर ये अंकुर पैदा
0: अंकुर
1: हुआ
0: पैदा
1: और वहां
0: हुआ.
1: से वो एक देशभक्त कवि के रूप में उभर कर आए.
0: हाँ
1: जी. तो मितुल जी, आपसे हम बहुत बातचीत करने वाले हैं, आपकी पसंद का एक गीत सुन लेते हैं पहले, जो आपको बेहद पसंद हो, चाहे वो प्रदीप जी का गीत हो या आपकी अपनी पसंद का कोई गीत हो.
0: मैं तो सोचती हूँ कि इसी वक्त जो हम लोग आंदोलन की बात कर रहे हैं, तो क्यों ना हम ये सुनाएं, दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा.
1: बिल्कुल. हम भी ये गीत सुनना चाहते हैं और इसी गीत पर हम आगे भी आपसे कुछ पूछना चाहेंगे. पहले सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत.

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।
4: इस दुनिया में
5: जी
4: लेकिन जो बातें सुनी और हमारे घर में हमेशा ना बातें बहुत होती थी
5: जी।
4: जैसे हम लोग कभी बैठे, हमारे कोई रिलेशंस में रिश्तेदार आए, दोस्त आए बापू के, तो बातें होती थी। तो तब मैंने ये सब सुना था और उसमें ऐसा हुआ कि ब्रिटिशर्स इस गाने को सुन के बहुत ही नाराज हो गए, आग बबूले हो गए। उन्होंने कहा कि इस कवि को पकड़ो, इसको गीतकार को पकड़ो, इसने हमारे खिलाफ ये बहुत बड़ा खतरनाक सा गीत लिखा है। तो उनके लिए समन्स निकल गया, अरेस्ट वारंट। अब अरेस्ट वारंट निकला तो हमारे घर के लोग सब परेशान, माँ परेशान, दूसरे सब रिश्तेदार सब परेशान कि अब क्या होगा, इनको पकड़ के ले जाएंगे। उनको अंडरग्राउंड कर दिया। अंडरग्राउंड मतलब कहीं
5: भूमिगत।
4: तो भूमिगत हो गए तो ठीक है, ये लोग तो ढूंढते रहते थे कि कहाँ है, जब हाथ में आएंगे तो पकड़ लेंगे। उसी दौरान एक अपने जो भारतीय एक ऑफिसर थे वो वहां पर ब्रिटिशरों के साथ काम करते थे
5: जी।
4: उन्होंने कहा कि आप लोग ये इनको वारंट तो दिया है आपने, लेकिन आपको पता है कि ये गीत हमारे खिलाफ नहीं है। तो ब्रिटिशर्स बोलते, मतलब वो जो वहां के ऑफिसर बोलते, कैसे नहीं है, दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, तो हमको ही बोल रहे हैं ना कि निकलो यहां से। नहीं नहीं, देखिए ऐसा है साहब, इसमें ये लिखा है कि शुरू हुआ है जंग तुम्हारा, जाग उठो हिंदुस्तानी, अब न किसी के आगे झुकना, जर्मन हो या जापानी।
5: बिल्कुल,
4: तो ये तो जर्मनी और जापान के खिलाफ का गाना है, हमारा तो नाम लिया नहीं है। अच्छा ऐसा है। तो वो बात सुन के फिर अरेस्ट वारंट वापस हो गया। प्रदीप जी भूमिगत थे, वहां से वापस आ गए और सब ठीक हो गया।
5: लेकिन एक जंग जो है वो कहीं ना कहीं छिड़ी गई थी, कहते हैं शब्दों की जो जंग थी,
4: शब्दों की जंग, और वो शब्दों की जंग के कारण लोग काफी इसमें आंदोलित हुए थे और सब लोग गा रहे थे। और आज तक अगर आप सुने तो आज भी ये गाना उतना ही पॉपुलर है।
5: बिल्कुल, और इस गाने को सुनने के बाद आज भी हमारे जो है रोए खड़े हो जाते हैं और हम एक अजीब सी स्थिति में आ जाते हैं, लगता है कि देशभक्ति का ज्वार जो हिलोरे लेने लग जाता है।
4: और दूर हटो ये दुनिया वालों, तो अभी भी हम दुनिया वालों को कहते

0: हैं कि हमारे हिंदुस्तान पे नजर मत डालो।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और आज भी उनके लिखे जो गीत हैं वो आज भी लोगों को देशभक्ति से जोड़ते हैं। इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं कि आज इस वक्त भी जब उनके गीत सुने जाते हैं तो लोग उनके मुरीद हो जाते हैं?
0: ये उनकी स्टाइल है, मतलब स्टाइल ये है कि उन्होंने इतना सिंपल सादा, उन्होंने जो लिखना जो था वो हर एक के हृदय में कैसे उतर जाए, ये उनकी एक स्टाइल थी। वो जानबूझ के नहीं करते थे, वो उनकी एक स्टाइल थी कि वो जितना हो उतना सिंपल सी भाषा और लोगों को समझ में आए ऐसी भाषा। तो देशभक्ति की भाषा में भी आप कितने क्लिष्ट शब्द वापरेंगे तो वो लोग समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जितना सरल होगा, सरल भाषा होगी, तो आज भी अगर कोई कोई भी गीत सुनिए, चाहे वो गांधी जी के ऊपर हो, चाहे वो लोगों को गाइड करने का हो कि हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, तो लोग समझते हैं और समझने के बाद वो अपने आप में उतार लेते हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि उनकी जो भाषा थी वो बहुत ही सरल और सीधी भाषा थी जो लोगों के रूह तक सीधे पहुंचती थी। सबसे बड़ी बात
0: सही बात
1: है, है ना। और आपने कहा कि गांधी जी पर भी उन्होंने ये गीत लिखा कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, तो गांधी जी से बहुत प्रभावित रहे वो?
0: बहुत ज्यादा। गांधी जी उनके हीरो थे, तो गांधी जी के ऊपर जो उन्होंने लिखा तो वो आप देखिए कि एक बच्चों के भाषा में लिखा है।
1: बिल्कुल,
0: है ना,
1: बिल्कुल।
0: तो वो बच्चों की भाषा है चाहे, लेकिन वो भाषा इतनी सरल है। आप सुनिए तो आखिरी में आप जब उनको सुनेंगे कि जिस दिन तेरी चिता जली रोया था महाकाल, तो साबरमती के संत, बस ये चीज जो है वो लोगों को बहुत पसंद आई और वो गाना आज भी इतना ही, जब भी गांधी जयंती होती है ये इस गाने के सिवाय वो
1: कोई
0: पूरी नहीं
1: गाना
0: होती।
1: जी बजता नहीं। और उनकी जो सबसे बड़ी बात है कि उनकी कविताओं में, गीतों में सरल हिंदी और आम बोलचाल की भाषा का बहुत ज्यादा असर था। और चाहे उन्होंने बापू पर गीत लिखे हों या भजन लिखे हों, सभी की भाषा इतनी सरल थी कि हमारे आत्मा तक उसका बिल्कुल पहुंचना संभव हुआ।
0: जी,
1: तो आपकी पसंद का एक गीत और सुन लिया जाए, आप कहें तो ये गीत सुना जाए,
0: यही गीत
1: साबरमती के संत।
0: साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल।

0: मितुल जी, हमारे भारतीय सिनेमा की अगर हम बात करें, ऐसे बहुत से गीतकार हुए हैं जिन्होंने बहुत अच्छा लिखा, या यूं कहें कि बहुत सारे संगीतकार ऐसे हुए जिन्होंने संगीत भी दिया और गाया भी, है ना? लेकिन ऐसे गीतकार और गायक बिरले हैं जिन्होंने अपने लिखे गीत को स्वयं गाकर अमर ख्याति प्राप्त की हो। तो आप समझ सकते हैं मैं कवि प्रदीप जी की ही बात कर रही हूं। उनका ये गायन, जो उन्होंने गीत गाए हैं फिल्मों में, भजन गाए हैं फिल्मों में, ये गायन कैसे शुरू हुआ और क्या कोई शास्त्रीय संगीत की उन्होंने शिक्षा ली थी या किसी संगीतकार या कलाकार की मांग पर उनका गाना शुरू हुआ?
1: ऐसा है कि मेरे बापू बड़नगर में, उनकी पैदाइश बड़नगर मतलब उज्जैन के पास का एक छोटा सा कस्बा बड़नगर
0: जी,
1: और वहां पर भी एक छोटा सा गांव था गाराखेड़ी। तो मेरे दादाजी थे वो वहां के जमींदार थे गाराखेड़ी के, और बड़नगर में उनका घर था। गाराखेड़ी में अपने बच्चों को लेके वो हमेशा वहां जाते रहते थे, वहां खेत खलिहान थे। तो वहां पर एक भील कम्युनिटी, भील रहते हैं,
0: भील
1: जाति के लोग, तो भील जाति के लोगों के साथ मेरे बापू भी, उनको बोलेंगे रामू, क्योंकि रामू छोटा सा बच्चा, और रामू की माँ मतलब मेरी दादी वो खुद बहुत अच्छा गाती थी।
0: अच्छा। हाँ,
1: तो वहां क्या होता था, सुबह सवेरे 4 बजे उठ जाना, पानी भरना, फिर अपने चक्की चलाना, गेहूं डाल के आटा बनाना, वो रोज का काम रहता था गांव में। तो मेरी दादी जो है वो चक्की चलाते चलाते गाना गाती रहती थी, और रामू और उनके बड़े भाई साथ में बैठ बैठ के वो सुनते रहते थे। तो वो सुनते सुनते वो जो समझ में आता है कि गाना कैसे होता है, और वो कोई शास्त्रीय संगीत नहीं, लोकगीत, वहां पर लोकगीत बहुत लोग गाते थे
0: जी।
1: तो ये भील जाति के लोग भी, उनकी लोकगीत की एक परंपरा थी, रामू वहां जाके बैठे उनके साथ बैठ के गाए। तो आप अगर उनकी आवाज में देखेंगे ना, जो खनक है
0: जी,
1: वो कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये नेचुरल है, कहीं सीखी हुई
0: नहीं है,
1: सारे गामा नहीं है,
0: कॉपी की भी नहीं है,
1: कॉपी की हुई नहीं है, और कोई रियाज नहीं है। ठीक है, तो ये जो आवाज उनकी है वो एकदम अलग क्यों है, इसीलिए फिर यहाँ पर जब वो कवि बने, लेखक बने, गीतकार बने, तो जो म्यूजिक डायरेक्टर थे तो वो कहते थे कि कवि जी आप ही अच्छा गाते

0: गाते हैं, तो क्यों ना आप ही ये गाना गा दीजिए। तो ऐसे ऐसे करके एक एक गीत उनका गाने का शुरू हो गया,
1: जी
0: और उनके गाए हुए जितने गीत है वो सब आज तक पॉपुलर है।
1: बिल्कुल।
0: कोई लाख करे चतुराई, हाँ, फिर पिंजरे के पंछीरे, आज भी पिंजरे के पंछीरे सुन के भी लोग रोते हैं
1: बिल्कुल, वो
0: कि
1: दर्शन
0: एक
1: जो
0: छोटे
1: उन्होंने
0: पिंजरे
1: दिया
0: में
1: है।
0: पंछी क्या सोचता होगा, वो उड़ नहीं पा रहा है। तो ये दर्शन के गीत और भी कई, देख तेरे
1: अध्यात्म के
0: संसार
1: गीत
0: की
1: भी है।
0: हालत क्या हो गई,
1: हाँ
0: भगवान
1: हाँ
0: कितना बदल गया
1: बिल्कुल।
0: इंसान, हाँ। और मतलब ये मैं कहूं कि इतने सारे गीत हैं, हमने जग की अजब तस्वीर देखी,
1: देखी
0: हाँ, अरे बाप रे, मैं आपको
1: मुखड़ा
0: क्या
1: देख ले
0: बताऊं,
1: दर्पण में।
0: मुखड़ा देख ले दर्पण में, तो उनके गाए हुए हर एक गीत लोगों को छू गए हैं। और आज भी लोगों के पास सीडीज, कैसेट्स और उनके प्रदीप जी के गीतों की ये पूरी एक मतलब है,
1: सीरीज है उनके पास, और आज
0: हाँ,
1: भी उनके
0: सुनते हैं लोग,
1: प्रशंसक हैं जो आज भी शिद्दत के साथ प्रदीप जी को पसंद
0: सुनते
1: करते
0: हैं।
1: हैं। क्या कोई गीत अभी आप सुनना पसंद करेंगी?
0: पिंजरे के पंछी सुनिए।
1: चलिए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गीत।

0: मितुल जी, जब मैं छोटी थी हमारे घर में भी रेडियो का माहौल था। शुरू से प्रदीप जी के गीत हम सुना करते थे, तब शायद हमें समझ नहीं आता था, लेकिन जैसे जैसे समझ पकड़ी, इन गीतों को सुना समझा, लेकिन जितना समझा है वो ये समझा है कि बिरले कलाकार थे वो, और ऐसे कलाकार कहीं मिलते नहीं है जिन्होंने निस्वार्थ लिखा, प्रतिद्वंदिता नहीं रखी, पॉपुलर होने के लिए नहीं लिखा, वो प्रोफेशनल नहीं थे, हृदय के कवि थे, दिल के कवि थे,
1: एकदम सही कहा,
0: दिल से लिखा,
1: दिल से जो लिखा दिल से लिखा।
0: और सबसे बड़ी बात कि उनके गीतों में खरी सच्चाई भी हमें सुनने को मिलती है, और

0: आमतौर पर जो इंसानी कमजोरियों को उजागर करती है, तो यानी उनकी काव्य शैली में वो जबरदस्त प्रवाह होता था जिसमें वो 100% की बात भी जो है चुटकियों में कह डालते थे। तो उनके कई गीत हैं जैसे देखते रहे संसार की हालत का अभी आपने जिक्र किया, या हमने जग की अजब तस्वीर देखी, पिंजरे के पंछी रे या मुखड़ा देख ले दर्पण में। यानी कवि प्रदीप जी ने अपनी रचनाओं से जो संसार रचा वो अद्वितीय संसार है मितुल जी, तो आप उसे कैसे देखती हैं आज जब आप इस उम्र तक आ गई हैं? हम कवि प्रदीप जी के बारे में बात कर रहे हैं, आप रेडियो से उनके गाने सुनती होंगी, कहीं जाती होंगी उनका जिक्र होता होगा, उस समय क्या माहौल था उनके गीतों को सुनकर और आज क्या माहौल है, एक सुपुत्री क्या महसूस करती है?
1: आपको एक बात बताऊं कि मैं जब छोटी थी तब मैंने जैसे कहा कि उस वक्त तो रेडियो ही था और रेडियो में ही उनके गाने बजते थे। तो हमारे वहां पर एक हमारा घर में काम करने वाला भाई थे हमारे, मतलब जो घर का काम करते थे, उनके पास भी एक रेडियो रहता था। तो दोपहर होती थी तो वो उसको आराम करने के लिए वो बैठ जाते थे, लेकिन जब बापू के गाने आते थे तो रेडियो जोर से बजा के साहेबचा गाना आला साहेबचा, मतलब वो मराठी में दौड़ दौड़ के हमको के देखो देखो आई का सर्वा लोग आई का, तो सुनिए सब लोग। तो ऐसा होता था, वो माहौल था घर का। मैं छोटी थी, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। उसमें एक लाइन आती है, फूट फूट कर क्यों रोते प्यारे बापू के प्राण, कितना बदल गया इंसान। तो वो प्यारे बापू के प्राण, मैं सोचती थी कि मेरे बापू,
0: अच्छा
1: हाँ, तो मुझे ये लगता था कि मेरे बापू के प्राण रो रहे हैं, और मैं भी साथ में रोना शुरू करती थी। सब लोग, तुम क्यों रो रही हो? मैंने बोला, फूट फूट कर क्यों रोते प्यारे बापू के प्राण, कितना बदल गया इंसान। तो वो एक लाइन मुझे अभी भी याद है कि मैं जोर जोर से रोती थी और मेरी माँ मुझे वो कराती थी कि नहीं ठीक है, ये बापू मतलब गांधी बापू, और तब ये नहीं पता था कि बापू मतलब गांधी जी।

0: ने आपने कहा कि आज मैं क्या सोचती हूँ, हर एक दुख की घड़ी में कोई भी गीत आप ले लीजिए तो आपको मन की शांति देगा
1: जी।
0: जैसे कहीं पर हम लोग कोई दुख की घड़ी हो या कहीं पर ऐसा हो माहौल के जहां हम लोग सोचते हैं कि हमारा कुछ गलत हो रहा है या हमारे साथ कुछ अन्याय हो रहा है, तब अगर हम ये सुने कि कोई लाख करे चतुराई कर्म का लेख मिटे ना रे भाई, जरा समझो इसकी सच्चाई रे, गाने से भी हम अपने आप को उसमें से निकल जाते हैं कि हाँ ठीक है कई लोगों ने ठोकर खाई है तो हम क्या हैं।
1: मतलब हमें जीवन दर्शन समझ आता है और अपने मन को हम समझा लेते हैं
0: कि
1: अच्छा इस गीत में इस तरह से कहा गया है कि कर्म का लेख मीठे नारे हाँ। भाई तो हमें भी भुगतना है अगर हमारे कर्मों
0: में
1: कुछ लिखा है तो।
0: और दूसरा गीत है जो दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम, तो हमको प्रेरित करते हैं कि आप दूसरों का दुखड़ा जो है दूर करने की कोशिश कीजिए, आपके साथ हमेशा भगवान खड़े रहेंगे।
1: बिल्कुल
0: तो आपका भी जो दुख है वो भगवान ले लेंगे, तो दूसरों को आप मदद करिए। तो ये ऐसे ऐसे उनके बहुत साधारण से सरल शब्द है आज जो मैं अभी समझ पा रही हूँ कि उनके हर एक गीत को हमको एक एक लाइन को समझना बहुत जरूरी है।

0: अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का ये था पहला भाग। तकनीकी सहयोग अनुश्री गुप्ता का था, संपादन सहायक झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: उजाले उनकी यादों।

हम आकाशवाणी जोधपुर के FM सनसिटी चैनल से बोल रहे हैं। FM बैंड 102.1 MHz पर इस समय शाम के 5 बजे हैं। आइए सुने युवा दोस्तों का अपना कार्यक्रम युवा वाणी।

0: ये बात तो किसी ने बड़ी ही सच बोली है कि जिस दिन हम एक्सपेक्टेशन यानी उम्मीद छोड़ देते हैं उस दिन कुछ ना कुछ बहुत बेहतरीन हो ही जाता है। जी हाँ दोस्तों, कल हमने देखा ही था हमारे शहर में, जब हमने ये सोच ही लिया था कि गर्मी तो कहीं नहीं जा रही, इसी के साथ जीना पड़ेगा, तब जो आंधी और बारिश आई है उसने जो सुकून दिया है पिछले 2 दिन से, तो उसका तो क्या ही कहना है। एक तो हमारा शहर वैसे ही खूबसूरत है, उसके बाद जो ये बादल बारिश इन्होंने जो खेल खेला है, भाई साहब मज़ा ही आ गया। अभी तो हम आ चुके हैं आप ही का कार्यक्रम युवाणी लेकर, अभी जुड़ी है आपके साथ दो प्यारी आवाजें, मेरा नाम है रिद्धि।
1: जी हाँ, मैं हूँ आप लोगों के साथ आपका रेडियो दोस्त नीतीश 102.1 पे। आप ये वाणी इस वक्त आप इंजॉय कर रहे हो। और यदि आज है 31 मई, पूरी दुनिया मना रही है वर्ल्ड नो टबैको डे। तंबाकू से दूरी, स्वस्थ जीवन और एक मजबूत कदम बढ़ाने वाला दिन।
0: ये तो है ही है नितेश। देखते हैं कि हमारे भारत में लगभग सारे ही शहर बेहद खूबसूरत हैं, पर इस खूबसूरती पे जब तंबाकू के नाम पे उसे गंदा कर दिया जाता
1: दाग
0: है,
1: लग जाते
0: दाग
1: तंबाकू।
0: लग जाते हैं, दाग तो किसी भी चीज़ पे लगा हुआ सुंदर नहीं लगता, तो कभी कभी दुख होता है कि इसे खाने से नुकसान भी होता है और जो शहर की खूबसूरती है उस पर तो असर पड़ता ही है। और भारत में तो ये देखने को हर जगह मिल जाता है, भले ही चाहे जगह कितनी सुंदर हो, लोगों को उसकी परवाह नहीं रहती। तो आज का हमारा जो बात करने का विषय है, वैसे तो संडे है, सभी लोग जानते हैं कि आज ढेर सारी बातें होने वाली आप सभी के साथ, तो आज हमारा विषय भी यही रहने वाला है कि अगर आपने किसी से तंबाकू छुड़ाया है या फिर ऐसा कभी हुआ कि आप भी इसके एडिक्टिव थे और आपने छोड़ा है, तो आप जरूर से इसकी

स्टोरी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं. आज इस पे एक विशेषज्ञ भी जुड़ेंगे जिनसे हम बात करेंगे, पर ये शो में आगे आगे जुड़ता जाएगा. पर हाँ, आज का विषय यही है. एक बार आपको नंबर भी बता देंगे, लेकिन इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद.

0: तो श्रोताओं, जैसा कि आज हम जानते हैं कि दिन है संडे का, और संडे के दिन आप सभी से ढेर सारी बातचीत होती है, जिसके लिए नंबर आपको बता देती हूँ, वो है 02912553300, और दूसरा नंबर है 2554300। लेकिन बात करने से पहले आप सुनेंगे एक इंटरव्यू जो कि है वर्ल्ड नो टबैको डे पर अमन चौधरी तोड़ा भीम करौली से नितेश की फ़ोन आउट बातचीत, जिसकी प्रस्तुति की है राजेश लामरन में। तो आइए सुनते हैं ये इंटरव्यू।
1: दोस्तों, आप सुन रहे हैं युववाणी और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त आरजे नितेश। दोस्तों, हर साल 31 मई को पूरी दुनिया विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाती है। तंबाकू सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि लाखों लोगों की सेहत और जिंदगी के लिए खतरा है। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसे अधिकारी मौजूद हैं जिन्होंने जागरूकता संवाद और जनसभा

0: सहभागिता के माध्यम से 5,000 से भी अधिक लोगों को तंबाकू की लत से मुक्ति दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारे बीच मौजूद है SDM श्री अमन चौधरी जी। सर, युववाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद आकाशवाणी और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
0: सर, सबसे पहले आप अपने बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: श्रोताओं को मैं बताना चाहूंगा कि मैं नागौर जिले से आता हूं और मेरी स्कूलिंग राजस्थान से हुई है ग्रेजुएशन। उसके बाद 2007 से 2022 के बीच में भारतीय वायुसेना में एक अधिकारी के रूप में कार्यरत था और वहां के बाद में मैंने राजस्थान प्रशासनिक सेवा का ज्वाइन किया था और अभी वर्तमान में करौली जिले में टोडा भीम उपखंड है, वहां का एसडीएम हूं मैं।
0: जी सर, तो मतलब काफी लंबी जर्नी रही है। आपने पहले एयरफोर्स की तैयारी की, फिर एसडीएम बने और फिर एक अभियान चलाया जिससे एक माइलस्टोन आपने अचीव कर लिया कि 5,000 से

0: आया जिससे एक माइलस्टोन आपने अचीव कर लिया कि 5,000 से भी अधिक लोगों को आपने तंबाकू छुड़ा दिया। तो सर मैं जानना चाहूंगा कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है और आज के समय में इसकी प्रासंगिकता कितनी बढ़ गई है।
1: देखो, पहली चीज तो है कि वर्ल्ड नो टोबैको डे जो है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस, हर साल 31 मई को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो तंबाकू है उसके हानिकारक जितने भी प्रभाव है उनके प्रति लोगों को जागरूक करना और उसका जितना भी उपभोग हो रहा है उसको कम करना। इसके लिए सरकारों को भी निर्देश होता है कि नीति बनाना, क्योंकि अपने भारत की काफी बड़ी जनसंख्या है जो इसको तंबाकू का अलग अलग रूप में सेवन करती है और हर साल लगभग 13.5 लाख के आसपास लोग मरते हैं, तो हमारे लिए बड़े दुख की बात है। और राजस्थान जो है इसमें भी काफी ऐसी संख्या है जो जो मैं भारत का एवरेज है, उस एवरेज से हम ऊपर है, लगभग अपना 41% के आसपास लोग जो इसका सेवन करते हैं। तो वर्ल्ड नो टोबैको डे का उद्देश्य है कि जितने भी लोग हैं इसके प्रति जागरूक रहे।
0: सर आपने 5,000 से अधिक लोगों को तंबाकू छोड़ने के लिए प्रेरित किया, इस अभियान की शुरुआत कैसे हुई और शुरुआती चुनौतियां क्या थी?
1: शुरुआत देखो, मैं भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूँ और मेरे स्कूलिंग डेज हम देखते थे कि ग्रामीण जितने भी बड़े बुजुर्ग बैठते थे तो बैठने का एक इनका होता था कि जहाँ पे बैठेंगे वो बीड़ी पियेंगे। और जहाँ पे भी आज भी ये होता है कि जहाँ पे किसी की मृत्यु होती है लोग बैठने होती है तो वहाँ पे, और जितने भी धूम्रपान है, बीड़ी सिगरेट, उनका और तम्बाकू काफी ज्यादा सेवन होता है। मुझे बचपन से भी इस चीज से थोड़ी सी नफरत भी थी कि लोग ऐसा क्यों करते हैं, नुकसान होता है। शुरुआत तो काफी लोगों को मना भी था और 1 जुलाई 1999 को हुई थी, जब मैं स्कूल जा रहा था कि पहले दिन मेरा बर्थडे आता है तो मेरे पिताजी भी किसान थे, उन्होंने बोला था कि हाँ, हालांकि वैसे तो उस टाइम केक कटिंग ऐसा तो कुछ होता नहीं था, बोला तेरे को क्या चाहिए, तो मैंने कहा कि आप कुछ नहीं दे सकते। मुझे कहीं ना कहीं बचपन से ऐसे थी कि जो वो बीड़ी का सेवन करते थे वो अच्छी बात नहीं थी, तो मैंने कहा आप रहने दो, आप कुछ दे नहीं सकते। तो उनका ईगो थोड़ा और हर्ट हो गया, क्या बोला ऐसे कौन सी चीज है। मैंने कहा आप रहने दो, आप दे ही नहीं सकते। उन्होंने बोला नहीं तो जो मांगे दे दूंगा। उन्होंने बोला होगा कि बच्चा है क्या मांगेगा, साइकिल मांग लेगा, उस टाइम साइकिल बड़ी बात होती थी। तो मैंने कहा नहीं, तू जो बोलेगा वही दूंगा, मेरे ये मेरा वादा है। तो मैंने मम्मी के सामने करो, मैंने बोला कि आपके पॉकेट में जो बीड़ी का बंडल है वो निकाल के दे दो और आज के बाद आपको बीड़ी नहीं पीनी है, ये दे सकते हो तो मुझे दे दो, नहीं तो कोई मतलब नहीं आप दे नहीं सकते। ये उस दिन की शुरुआत थी जब मैंने ये देखा कि उनके भी विल पावर इतनी थी तो उन्होंने 1 मिनट का समय लिया और वहीं निकाल के दौड़ के सीधे बोला चलो आज के बाद नहीं पियेंगे। उसके बाद 2023 तक 23 साल जिंदा रहे तो उन्होंने कभी नहीं पिया। और मेरे लिए एक मोटिवेशन की बात थी कि जब घर से शुरुआत है, ठीक है, तो घर में एक दाऊजी भी थे, उनको भी छुड़वाई थी, तो ऐसे कई लोग थे वहां से शुरुआत हुई। और जहां मुझे दिखते थे एयरफोर्स में भी थे कई लोग ऐसे थे जो चेन स्मोकर्स थे, ड्रिंकिंग के एडीएस सिंड्रोम थे, तो चलता रहा। जहां लोग मिलते हैं उनको मोटिवेट करते हैं, अधिकतर लोग छोड़ते हैं। और ये है कि अगर डिसाइड कर लेते हैं इसको छुड़वाना है तो कई बार आपको ज्यादा समय देना पड़ता है, लेकिन लोग छोड़ते हैं, छोड़ने के बाद खुश होते हैं। हाँ, इसमें एक ये चीज है कि जितने भी तंबाकू इनका उत्पादों का उपयोग करते हैं वो सब ये चीज मानते हैं कि ये गलत बात, सब लोग 100% मानते हैं ये गलत बात है, तो उनको इमोशनली टेकल करना पड़ता है, थोड़ा सा मोटिवेट करना पड़ता है, पीछे पड़ना पड़ता है, आपको थोड़ा सा फीडबैक देना पड़ता है। लेकिन अधिकतर लोग छोड़ देते हैं और उनके लिए पॉजिटिव स्टोरीज भी आती है, ऐसे बहुत सारी आती है। वहां से शुरुआत हुई थी और ये चल रही है, लगभग 25-26 साल हो गए मुझे इस पे काम करते हुए। और ऐसे बहुत सारे और भी युवा हैं जिनको हम कहते हैं, अलग अलग कार्यक्रम में इसकी प्रचार करते हैं, लोगों को छुटवाते हैं और लोग खुश भी होते हैं, लोगों की जिंदगी में परिवर्तन आता है।
0: जी क्या बात है, मुझे घर से शुरुआत की और घर से जो मोटिवेशन मिला उसको आपने 5,000 लोगों तक पहुंचा दिया, तो सबसे पहले बहुत बहुत आपको बधाई हो कि आपने एक वो चीज अचीव की जो मतलब करना बहुत ही मुश्किल होता है, आदतें बदलना और तंबाकू जैसी आदतों से उन्हें बचाना। तो जब कोई व्यक्ति वर्षों पुरानी तंबाकू आदत में होता है और जब आदत वो छोड़ता है तो उसके जीवन में किस प्रकार के सकारात्मक बदलाव आते हैं और जो आपने देखे हैं खुद ने?
1: तो मैं देखो आपको किसी का भी अगर एग्जाम्पल लूं तो मैं एक बार पिछले साल की बात है, मैं ट्रेन में आ रहा था, ट्रेन में मेरी धौलपुर पोस्टिंग हुई थी, मैं वहां जा रहा था, एक आर्मी का कोई जवान था ऐसे मुझे सामने दिख गया था। तो उसने क्या है कि बड़े संजीदा तरीके से, उसको नहीं पता था कि मैं कौन हूँ कौन नहीं, ऐसे पूछा था कि मैं खा लूंगा, तो शरीफ इंसान था, उससे पूछा मेरे से कि मैं खा लूंगा, तो मैंने कहा बोले क्यों खाना, तो उसने बोला कि मुझे आदत है। वहां क्या है कि इमोशनल एंगल काम आता है, मैं उनसे सवाल पूछता हूँ कि आपकी वाइफ खाती है क्या, तो 100% लगभग का ये सवाल आता है कि नहीं खाती, होती है। मैं उनको बोलता हूँ आपके बच्चे खाते हैं क्या, बोला नहीं खाते। मैंने उससे पूछा कि ये बताओ कि आपके बच्चे आपके सामने खाएंगे तो आपको कितना अच्छा लगेगा। मतलब सर मुझे बहुत खराब लगेगा। मैंने कहा जितना आपको खराब लगेगा कि आपके वाइफ या बच्चे खाएंगे उतना उनको हर रोज बुरा लगता है आपके खाने से। लोग कहते हैं कि साहब हम उनको शायद पता नहीं। मैंने कहा कि यह सबसे बड़ी गलतफहमी है आपकी।

0: कि आप कहते हो मैं बाहर स्मोकिंग कर लेता हूँ, कुछ चबा के चला जाता हूँ। मैंने कहा नहीं, 100% पता होता है। और इमोशनली हर रोज सफर करते हैं, ऐसे आपके लिए कोई जरूरी नहीं है कि इसको खाओ। तो इस कारण लोग छोड़ देते हैं, और छोड़ने के बाद मैं उनको एक ही चीज बोलता हूँ कि जिस दिन आप 1 महीना हो जाएगा मुझे जरूर फोन करना, मैं आपके पास आऊंगा, चाय पीने घर पे आऊंगा आपके पास। तो उनको क्या खुशी होती है इस चीज के लिए भी, ठीक है मैंने प्रॉमिस किया है तो इसको निभाऊंगा। दूसरा, फिर वो हम इसको वहां तक नहीं रखते हैं। मैं जनरली कोशिश करता हूँ कि घर परिवार में किसी से बात करता हूँ ताकि वो उनको मॉनिटर करे कि छोड़ा कि नहीं छोड़ा। क्योंकि क्या होता है कि इनिशियली 1 वीक बहुत मुश्किल होता है उस इंसान के लिए भी। आप ये देखो कि जिसको 20-20 साल से, 25 साल से, 15 साल से आदत पड़ी हुई है, तो उस आदत से छुटकारा पाना मानसिक रूप से उसको बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने की जरूरत पड़ती है, उसको बहुत बड़ी विल पावर की जरूरत पड़ती है। उस विल पावर को सपोर्ट करने के लिए हर रोज उसको घर से, या तो उसके वाइफ हो, उसके बच्चे हो, माँ बाप हो, कोई ना कोई उसके दोस्त हो जो उसको मोटिवेट करे। मैं ये कोशिश करता हूँ हर इंसान को जिनको शपथ दिलाई है, जिनको छुड़वाया है, उससे घर से कांटेक्ट करके उसको मॉनिटर करें और मुझे हर रोज कम से कम ये मैसेज करें, बताएं हर हफ्ते में से छुड़ा नहीं छोड़ा। कुछ लोग वापस चालू कर देते हैं, उनको वापस फिर से मोटिवेट करते हैं हम। तो अधिकतर लोगों में सक्सेस रेट अच्छी होती है। मैं कल ही आपको बता देता हूँ, कल बाजार में गया था ऐसे खाने के लिए, तो एक मेडिकल स्टोर पे मैं मेडिसिन का पूछ रहा था, तो मुझे कोई मिला था, बोला सर मेरे को 4.5 महीने हो गए मुझे गुटखा छोड़े। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, बोला मैं 4.5 महीने हो गए आज के बाद, अभी तक मैंने नहीं खाए। तो ऐसे कई सारे स्टोरीज है, और छोड़ने के बाद उनके लिए एक मेंटली और परिवार के लिए बहुत ही अच्छी सकारात्मक न्यूज होती है।
1: सर, आप एक SDM अधिकारी है, आपके बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे दायित्व होते हैं कि आपको जनता के जनकल्याण के लिए, उनके लिए, उनको सारी चीजों से वाकिफ कराना। और उस बीच आप लोगों से कैसे मिलते हैं, उनसे कैसे फॉलोअप लेते हैं और तंबाकू नहीं खाना चाहिए और उनको ऐसी प्रेरणा देते हैं, तो ये सारी चीजें आप मैनेज कैसे करते हैं?
0: देखो, अगर आपने देखा होगा कि 3 मई का दिन नियम आया था सिगरेट और तंबाकू उत्पादन,
1: जी
0: उसमें पब्लिक ऑफिसर्स की ड्यूटी है कि एक तो जहां तंबाकू बिकता है वहां पे 18 वर्ष से कम के जितने भी नाबालिग हो उनको नहीं बिकना चाहिए, और शिक्षण संस्थाएं उनके 100 यार्ड के बीच में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पे पाबंदी है, और इन पे ऐसे जो लोग पब्लिक प्लेसेस पे स्मोकिंग करते हैं, इनके करते हैं, उनके ऊपर आपको 200 रुपए तक का चालान करने की, ये सरकार के हिसाब से हर पब्लिक ऑफिसर की ड्यूटी है। अब अगर हम उसकी बात करें कि इसके हिसाब से क्या करना है, तो मुझे जब भी कोई सामने दिखता है अगर उसके मुंह में गुटखा हो, कुछ होता है, उसकी बात को या उसके प्रॉब्लम को, तो बाद में सुनता हूँ, उसको पहले बोलता हूँ कि भाई आप पहले ये कहो, इसको थूक के आओ, कुला करके आओ, इस पे बात करेंगे 5 मिनट, फिर आपके प्रॉब्लम का 100% समाधान करेंगे। तो एक तो क्या है कि उसका एडवांटेज होता है, क्या होता है कि आप अधिकारी बैठा है वो कुछ कह रहा था, उसकी बात को तो दी जाती है, उसको सुना जाता है। मैं अपने कोर्ट में बैठता हूँ, कई सारे परिवादी आते हैं, तो वो क्या है कि वो मोटिवेट करते हैं इस कई कारण, मेरे कारण सुन लेते हैं, उसके आसपास लोग होते हैं उनके कारण सुन लेते हैं, सोशल मीडिया के कारण सुन लेते हैं, तो इससे उनको मोटिवेशन मिलता है और उनके विल पावर को स्ट्रोंग करने का थोड़ा सा जरिया मिलता है, तो इस पद का भी फायदा मिलता है। और मैं ये बताना चाहूंगा कि मेरे ऑफिस में पहले, मैं जिस एरिया में हूँ वहां पे लगभग 40% लोग जो गुटखा उटका खाते हैं, और पहले हर दूसरा बंदा कुछ ना कुछ गुटखा खा के आता था ऑफिस प्रमाइसिस में, कई सारे कर्मचारी वो भी खाते थे। आज ये है कि लगभग नहीं के बराबर कोई नहीं आता 5 महीने के अंदर, कोई मुश्किल से गलती से आ गया तो मेरे ड्रॉअर में अभी कई सारी पुड़िया रखी हुई है, मैं उनसे लेके यहाँ रख लेता
1: तो सर, आप अपने अधिकारी की जो ड्यूटी है, जिसका दायित्व है, आप 100% निभा रहे हैं, और आपकी बातचीत में हमारे श्रोताओं को भी पता चल रहा है। और वही साथ ही साथ मैं जानना चाहूंगा कि आज के युवाओं में गुटखा, बीड़ी, सिगरेट और जो इन दिनों ट्रेंडिंग में चल रहा है वेपिंग का चलन बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह आपको क्या लगती है? क्या होता है जो आजकल के युवा है वो बड़ी पर्सनैलिटी से क्या होते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं? तो आप भी एक अधिकारी, एक बड़ी पर्सनैलिटी है, एक तरफ आप लोगों को तंबाकू से दूर रख रहे हैं, और एक तरफ जो दूसरी जो बड़ी पर्सनैलिटी है जिससे आज का जो यूथ है वो इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो उसके बारे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को?
0: श्रोताओं का मैं ये कहना चाहूंगा, एक तो क्या है कि ये इन जो नया नशा करने की है, वेपिंग है या फिर और भी ड्रग्स है, इनकी तादाद धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन इसमें क्या है कि सोशल मीडिया के माध्यम से इनका जो प्रचार होता है उनसे हमें बहुत लगता है कि ऐसी तादाद बहुत ज्यादा है, इससे लोग तो कम होते हैं बट इनका सोशल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। तो एक तो इनका जो पीयर ग्रुप होता है वो एक रीजन है, कॉलेज का ग्रुप है या इनका वर्किंग है, जैसे IT प्रोफेशनल है कई जगह बैठते हैं साथ में, तो इन लोगों के पीयर ग्रुप के कारण ये लोग इन्फ्लुएंस में आते हैं और एक्सपेक्टेशन के रूप में देखते हैं कि हाँ ठीक है, हम अच्छा लग रहे हैं, ऐसा लग रहे हैं। उनको क्या है कि किसी भी लेवल पे, मैं ये कहना चाहूँ कि हमारी जो शिक्षा पद्धति है उसमें प्रैक्टिकल वे में इनके बारे में सही

0: इनसे सिखाने की हमें जरूरत है, इन चीजों के नुकसान क्या क्या है, इनसे खुद के बॉडी पे क्या फर्क पड़ेगा, इनसे फैमिली पे क्या फर्क पड़ेगा, इनसे सोसाइटी पे क्या फर्क पड़ेगा, इनकी कहीं ना कहीं अवेयरनेस की अभी कमी है। लगभग जितने भी लोग स्मोकिंग करते हैं इनके आदि होते हैं, उनको ये तो पता है गलत है, लेकिन कितना गलत है, कितना फर्क पड़ रहा है इनका, अधिकतर लोग इतने कहते हैं इकोनॉमिकल वे में या ज्यादा खर्च होता है, इसके बजाय इसका सोशल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, इनका मेडिकल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। ऐसी ऐसी बीमारियां हो या कैंसरस है प्रोडक्ट जितने भी मैक्सिमम सबके सब है, अगर सही ढंग से इनका इम्प्लीमेंट किया जाए तो 100% जितने प्रोडक्ट है वो इम्प्लीमेंट से बैन हो जाने। लेकिन एक इनका मेरा जितने भी नए युवा है उनको मैसेज है मैं देना चाहूंगा कि ये चीज जो है आपको सोशल इम्पैक्ट या रील्स के लिए आप बनाते हो या आप अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, अपने पेरेंट्स की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो और आने वाली जो पीढ़ी है जिंदगी बर्बाद कर रहा हूँ। इससे सोशल इम्पैक्ट इतने हैं कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जितनी भी आजकल गर्ल्स है महिलाएं हैं वो भी इसके इम्पैक्ट में आ रही है, इनको पीसीओएस हो रहा है, पीसीओडी हो रहा है, और बॉयज है इनकी फर्टिलिटी भी कमजोर हो रही है, इन सब के कारण हो रही है। ये अभी इनको पता नहीं चल रहा है, बट आने वाले टाइम में जब ये 30-35 क्रॉस कर जाते हैं इनके बाद इनको पता चलेगा, इनके स्टेमिना कम हो जाता है इनके पास, इनकी जो मेंटल स्टेटस है वो भी खराब हो जाती है। अब आज आप देखो कि धीरे धीरे करके अभी बैंगलोर या कहीं एक दो एग्जाम्पल आ रहे हैं, ज़ॉम्बी ड्रग होता है उसके कारण कई कई घंटों में उसी पोजिशन पे रहता है आदमी, सो पता ही नहीं चल रहा है कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं है। देखो एक इसके पीछे गैंग और चलती है, मैं तो ये मानता हूँ इनको बेचने वाली कंपनियां या जो गलत धंधा करते हैं वो लोग एग्रेसिव कैंपेन करके पहले लोगों को खिलाने की कोशिश करते हैं ताकि उनका बिजनेस चले। इन चीजों से इन युवाओं को थोड़ा समझने की जरूरत है, इन लोगों से दूर रहे और पुलिस और प्रशासन की मदद करे। अगर आपके एरिया में कोई भी अगर ऐसा है कि जो गलत रूप से नशा या ये ड्रग्स बेच रहा है उनकी मदद करे ताकि हम उनको थोड़ा सा उन पर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे।
1: और ऐसा भी सर देखा गया है कि जब छोटी जगह से कोई युवा बड़े शहरों में जाता है काम की तलाश में या फिर वो वहां नौकरी करता है तो जब वो उनके नाइट आउट कल्चर से जुड़ जाते हैं या फिर वहां के जो नए दोस्त बनते हैं वो बोलते हैं यार एक दो बार से क्या ही फर्क पड़ जाएगा, ट्राई तो कर। तो ऐसी चीजों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
0: देखो ये तो पहले छोटे छोटे शहर से जब बड़े जाते हैं तो उनको जो चकाचौंध दिखती है उनको ये लगता है कि यही लाइफ है, तो आप उस लाइफ को जीने का तरीका अलग हो सकता है। मैं आपको बताऊं मैं भी कई जगह ऐसे जहाँ बैठा हूँ यार ऐसे लोग करते थे, मेरे पास भी बड़े शहरों में गए हूँ तो ऐसे लोग आए थे, लेकिन है कि मैंने ये कोशिश की इन चीजों से दूर रहने की। पहले चीज तो आपको अवेयरनेस होना चाहिए कि इनका नुकसान क्या है। दूसरा ऐसे दोस्त अगर आपको इन्फ्लुएंस कर रहे तो कोशिश करो उनको भी इनसे दूर करने की कोशिश करो। वो नहीं हो रहे तो कम से कम आपको स्ट्रैप में नहीं आना है, आप दो चार दिन के चक्कर में आदि हो जाओगे और उसके कारण आपके जीवन बर्बाद हो रहा है, घर परिवार वालों का बर्बाद हो रहा है, तो वो एक शहरी क्षेत्र का जीवन यापन करने का तरीका नहीं है, बट ये बर्बादी के रास्ते पे जाने का एक तरीका है। इनसे बचने की कोशिश करनी चाहिए और लोगों को इससे अवेयर करें।
1: बिल्कुल। और सर हाल ही में आरएस का रिजल्ट आया है, काफी युवा विद्यार्थी है वो अधिकारी की पोस्टों पर उनका चयन हुआ है, तो उनका दायित्व है कि गुड गवर्नेंस लॉ एंड ऑर्डर का अपने जो भी आपको उपखंड मिलता है जो भी आपको ब्लॉक मिलता है वहां पे आप वो सारी सेवाएं प्रदान करें और उसके साथ साथ ऐसे जो कैंपेन होते हैं ऐसे जो अभियान होते हैं जैसे तंबाकू छुड़ाने का पर्यावरण के लिए, तो ये सारी चीजें एक अधिकारी के लिए क्यों जरूरी है? आप उन सभी जो नए ट्रेनी हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे?
0: ट्रेनिंग के लिए भी मैसेज होगा अपनी अच्छी ट्रेनिंग करें और जो सरकार ने भी योजनाएं हैं पब्लिक के वेलफेयर के लिए उनको धरातल पे अच्छी तरह वहां पे उतारने की कोशिश करें ताकि आम जो नागरिक है भारत का उसको उनका फायदा मिले, चाहे वो नशे के खिलाफ हो या पर्यावरण के लिए हो, चाहे आपको ट्रैफिक नियमों के लिए किसी को जागरूकता हो, चाहे शिक्षा के लिए हो। उससे भी ज्यादा मैं मानता हूँ कि ऑफिसर्स तो करने की कोशिश कर रहे हैं और करेंगे भी, साथ साथ में हमारे समाज के ऐसे वॉलंटियर्स है, ऐसे युवा है, ऐसे कई सारे सोसाइटी तो इन पर काम करती है, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनका भी एक कंट्रीब्यूशन। जैसे राजस्थान को अगर आप देखोगे, राजस्थान को WHO ने भी सम्मानित किया था कि हमने लगभग एक साथ 8% की गिरावट की थी जितने भी ये नशा तंबाकू सेवन कर रहे थे उनमें, तो एक बड़ा अचार था। इतने लोगों ने इनके लिए राष्ट्रीय तंबाकू की हेल्पलाइन भी जारी कर रखी है, कई सारे ऐसे ऐप भी है, कई सारे अलग बाहर ब्लॉक नशा मुक्ति केंद्र भी खुल रहे हैं। तो अपने आसपास जो समाज के युवा है या अधिकारी है उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने आसपास के ऐसे लोगों को आप आइडेंटिफाई करो जो इतने आदि हो चुके हैं कि वो अपने खुद के मेंटल कंट्रोल में नहीं है कि इसी से बाहर आ सके, ऐसे लोगों को काउंसलिंग के थ्रू, मोटिवेशन के थ्रू या फिर नशा मुक्ति केंद्र के थ्रू, आप उनके थ्रू उनको नशा छुड़ाने की कोशिश करें और आने वाली जनरेशन को, आने वाली पीढ़ियों को, हमारे समाज को, हमारे देश को बचाएं। इससे खुद को भी एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ ये

0: आने वाली हमारी युवा पीढ़ी है जो इनसे दूर जा रही है, जो हमारा एक समाज है वो एक सभ्य बन रहा है, जागरूक बन रहा है, ताकि हम अपने समाज और अपने देश की प्रगति में योगदान दे सके।
1: सर, आप स्कूलों कॉलेजों में युवाओं के बीच लगातार संवाद करते हैं, तो युवाओं की प्रतिक्रिया कैसी रहती है उस वक्त?
0: आज के लगभग 80% युवाओं की प्रतिक्रिया तो बहुत सकारात्मक है, अगर आप देखोगे वो ये मानते हैं। लेकिन एक सोशल मीडिया में सिर्फ 5-7% युवा है। प्रॉब्लम ये है कि जो सकारात्मक है जो लोग हैं उनका प्रचार नहीं होता, बट जो नकारात्मक है 2-4% उनका प्रचार ज्यादा होता है, उनकी ज्यादा रीले बनती है। जो हमें है कि सकारात्मकता का या फिर जो लोग इनको छोड़ने कर रहे हैं उनका भी प्रचार करने की जरूरतें होगी। इनका जो है नुकसान क्या होता है इसके बारे में हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट है, वो भी कई तरह कैंपेन चलाते रहता है। हम सबको मिलके थोड़ा सा इस चीज का प्रचार करना पड़ेगा। आसपास मैं तो कह रहा हूँ आप अपने घर में शपथ ले लो कि मेरे घर में तंबाकू का सेवन नहीं होगा, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो अधिकतर, और अपने आसपास पड़ोस मेरे परिवार में होने नहीं। इस लड़ाई में अगर इतने लोग शामिल हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि आज के दिन जो राजस्थान में लगभग 39 से 40% के आसपास लोग तंबाकू का सेवन कर रहे हैं वो 20% से कम आ जाएंगे, और आने वाले टाइम में इनको भी हम टैकल कर ले। हर साल अपने जन्मदिन पे वैवाहिक वर्षगांठ पे आपको शपथ लेनी चाहिए कि मैं आने वाले टाइम में 5 ऐसे लोगों को कम से कम तंबाकू की लत से छुड़वा दूंगा, तो डेफिनेटली हमारे समाज में और राजस्थान में अच्छा काम हो जाएगा।
1: सर, आपके अनुसार भारत को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए प्रशासन, समाज और युवाओं को मिलकर क्या कदम उठाना चाहिए?
0: एक तो अवैध रूप से जितना भी बन रहा है बिक रहा है इसमें सरकार की पॉलिसी और उसका इम्प्लीमेंटेशन सही ढंग से हो, पूरा प्रशासन एक साथ मिलकर काम करें कि जहां पे भी अवैध रूप से बिक रहा है, और समाज युवा ये मिलकर भी प्रशासन का सहयोग करें और खुद भी इस चीज में लग जाए। 10 युवा अगर एक साथ आ जाए तो मेरी गारंटी है उस एरिया में गलत ड्रग्स नहीं बिक सकता। बेचने वाले लोग कम होते हैं, उनके पास कई तरह के डायरेक्ट इनडायरेक्ट पावर्स होती है, लेकिन 10-15 युवा अगर एक साथ आ जाए, मेरे एरिया में हर जगह ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी संस्थाएं बनी हुई है जिसमें 10 युवा एक साथ लगते हैं और वो कहते हैं साहब हमारे एरिया में हम अच्छा काम करेंगे, कर रहे हैं। मैं ऐसे कई सारे एग्जांपल दे सकता हूं मैं। तो ऐसे अगर धीरे धीरे जागरूक होंगे तो अपने आप ही इनका प्रभाव कम हो जाएगा। इनको प्रचार ना करें, जो लोग हैं उनको सजा के बजाय उनको काउंसलिंग करें, परिवार में समझाएं, उसको धीरे धीरे इस लत से बाहर निकालें। एकदम से निकलना मुश्किल होता है बट कंटिन्यूअसली काउंसलिंग और उनके माध्यम से डिफरेंटली निकल सकते हैं ये लोग।
1: अमन जी, आपने 5,000 से अधिक लोगों को तंबाकू छुड़वाने के सफर में आपकी जो सबसे बड़ी सीख है वो क्या रही?
0: मेरी सबसे बड़ी सीख ये कि किसी भी इंसान को अगर इंसान होने के लिए अगर आपको कोशिश करना है तो हमेशा रिजल्ट पॉजिटिव आता है, चाहे वो किसी भी उम्र में हो। मैंने 10 साल का युवा है वो भी छोड़े हैं, और 75 साल के बुजुर्ग उन्होंने भी तंबाकू छोड़ा है। तो जो आदत चाहे वो 5 साल की पुरानी हो चाहे 25 साल की है, अगर आप सही ढंग से मेहनत करते हो और उनके भले के लिए काम कर रहे हो तो आप जरूर सफल होते हो, चाहे तंबाकू छुड़वाना हो, चाहे सिगरेट छुड़वानी हो, चाहे किसी परिवार को एक साथ चलाना।
1: जी सर, बिल्कुल सही कहा। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर आप युवाओं और हमारे प्यारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मैं इनको कहना चाहूंगा खुश रहो हमेशा, और अपने आसपास के समाज में जो गलत चीजें होती है अगर तंबाकू का सेवन हो रहा है तो उनको प्यार से सही ढंग से कानून के तरीके से उनको बंद कराने की कोशिश करें। अपने आसपास के माहौल को सुचारू रूप से अच्छा बनाएं ताकि हम अपने आसपास का आपका मोहल्ला, आपका गांव, आपका समाज, शहर इस चीज से तंबाकू मुक्त हो सके। हमारा भारत देश में जितने भी हर साल इतने मौतें हैं वो कम हो जाए और हम किसी न किसी परिवार के चिरा चरागों को बचा सके। थैंक यू सो मच। और आकाशवाणी के क्षेत्र श्रोताओं को ऐसे ही आकाशवाणी है और बाकी लोग भी है ऐसे प्रचार करते रहे ताकि जो 5,000 की संख्या है वो अधिकतर अधिक से अधिक बढ़े, और आप लोग अगर सभी साथ रहेंगे तो फिर इस संख्या का नहीं हमारे लिए ये रहेगा कि हमारे पास आज 1 से 2% ही, आज जैसे हम 40% की बात करते हैं 40% लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, वो 4% से आने वाले टाइम में उससे भी कम हो जाए।
1: जी बिल्कुल सही कहा। धन्यवाद सर, आपने अपने अनुभवों और विचारों के माध्यम से तंबाकू के दुष्प्रभावों तथा इससे मुक्ति के उपायों पर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। दोस्तों, कार्यक्रम में बने रहिए हमारे साथ, ऐसी शख्सियत हमारे साथ और भी जुड़ती रहेगी। और एक छोटी सी पंक्ति के साथ मैं ये कहना चाहूंगा, जो खुद से जीत जाता है वही असली विजेता कहलाता है। तंबाकू को छोड़ जो जीवन अपनाता है वही स्वस्थ भविष्य को बनाता है। इसी संदेश के साथ मैं आपका रेडियो दोस्त नीतीश, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और तंबाकू को हमेशा के लिए ना कहिए। थैंक यू वेरी मच सर।
0: थैंक यू सो मच। थैंक यू।
2: तो श्रोताओं, अभी आपने सुनी वर्ल्ड नो टोबैको डे पर अमन चौधरी, SDM, टोडा भीम करौली से नितेश की फोन

अबाउट बातचीत, जिसकी प्रस्तुति की थी राजेश लामरो ने। तो दोस्तों, अभी जैसा कि हमने सुना है इस इंटरव्यू में कि जो तंबाकू है वो हमारी सेहत के लिए भी कितना नुकसानदायक होता है और अब इसकी क्वांटिटी ऑफ कंजम्पशन है वो भी बढ़ता जा रहा है। अभी हम ये भी देखते हैं कि पहले तो बड़े बुजुर्ग खाते दिखते थे, पर अब टेंशन की चीज़ ये हो गई है कि बच्चे भी तंबाकू का सेवन करने लग गए हैं और कहीं ना कहीं इसके हेल्थ के इम्पैक्ट लेटर लाइफ में दिखने लगेंगे। तो अब ऐसा क्या है कि यंगस्टर्स में या तो जो फेयर था वो ख़त्म हो गया या फिर सिर्फ शोबाजी के लिए उखा रहे हैं? तो ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर ढूंढने में सब लोग लगे हैं। अगर आपको भी लगता है कि आपके परिवार में कोई तंबाकू का सेवन करता है और आपने इस आदत को उनसे अलग किया है, उनको तंबाकू से मुक्त किया है, तो आप इस कहानी को हमारे साथ साझा कर सकते हैं। या फिर आपके पास कोई ऐसे टिप्स हो या फिर ऐसे कोई नुस्खे हो जिससे ये एडिक्शन छूट जाए, क्योंकि क्या होता है कि तंबाकू एक एडिक्टिव चीज़ है जिसको छोड़ने में टाइम लगता है और इससे शरीर को कहीं ना कहीं तकलीफ भी होती है। तो ये लंबा प्रोसेस है। अगर आप अपनी कोई राय देना चाहें तो ज़रूर से हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारे नंबर है 02912553300, दूसरा नंबर है 2554300, और हिंदी में बताएं तो ये नंबर है 2553300 और दूसरा नंबर है 2554300। तो जल्दी से फोन घुमाइए। हाल फिलहाल एंजॉय कीजिए ये वाले गाने।

0: श्रोताओं, इसी के बीच हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो।
1: हेलो जी, नमस्कार मैडम।
0: नमस्ते सर, क्या नाम है आपका?
1: नाम राजेश है, भोपालगढ़ से बोल रहा
0: हूं। तो राजेश जी बताइए, आपने आज का सुना होगा टॉपिक हमारा।
1: हाँ जी
0: जी जी, बताइए आपके क्या विचार है।
1: मैडम, जो हमारे परिवार तो किसी प्रकार का जो भी लोग नशा करते वो बिल्कुल नहीं करते।
0: अच्छा।
1: हाँ जी बिल्कुल।
0: तो पहले करते थे, मतलब आपने उनसे ये लत छुड़वाई?
1: नहीं मैडम, पीढ़ी से नहीं कर रहे हमारे, तो 2-3 पीढ़ी हो गई।
0: अरे वाह, क्या बात है, ये काफी अच्छी चीज है कि अगर आपके घर में कोई भी इसे यूज नहीं करता तो ये काफी अच्छी सराहनीय चीज है।
1: परिवार वाले कोई भी सदस्य नहीं करते।
0: तो ये तो कई ऐसा होता होगा ना कि बचपन से सिखाया गया होगा कि ये चीज हानिकारक होती है, इसे दूर रहना।
1: जी मैडम, हमारे परिवार में कोई भी नशा नहीं करते, एक भी बच्चा।
0: क्या बात है सर, ये तो बहुत अच्छी चीज है, और ऐसे ही आगे आपके आने वाली जनरेशन इस चीज को फॉलो करे। अरे बहुत ही बढ़िया सर, कल बारिश हुई थी, आज फिर धूप आ गई, लेकिन उम्मीद होगी कि वापस बेटर हो जाए।
1: जी मैडम।
0: ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सर।

इस प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है आपके फेवरेट कार्यक्रम युवानी में, जिसे आप एंजॉय कर रहे हैं नितेश और रिद्धि के साथ। और रिद्धि बहुत ही शानदार अरिजीत सिंह की आवाज़ में वालम सुना है हम सब ने, और वाकई मौसम भी बहुत सुहाना होता जा रहा है। और जो आज का ये फोन इन प्रोग्राम स्पेशल संडे स्पेशल चल रहा है, उसे आप इंजॉय कर रहे हैं और आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और जो टॉपिक है वो है वर्ल्ड नो टबैको डे।

0: भी आपको हमारे साथ बात करनी है, अगर आपके परिवार में कोई नशा करता है और आपने किसी का नशा छुड़वाया है तो ये आज का प्रोग्राम बिल्कुल आपके लिए है। तो बस आपको एक सिंपल सा काम करना है, एक नंबर बता रहा हूँ मैं आपको हमारे स्टूडियो का, उस नंबर को आपको डायल करना है और सीधे युवानी प्रोग्राम में आप होंगे लाइव, और वो नंबर है 02912553300। और यदि जो दूसरे नंबर है
1: वो है 2554300। तो दोस्तों जहाँ पर बात होती है नशे की, तो नशा होना चाहिए खुशी का, प्यार का। ऐसे जो नशे होते हैं ये हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहीं पे भी आप जाओ तो हर सिचुएशन में अगर आपने कहीं खुशी ढूंढ ली, अगर आपने आपके अंदर एक छोटा सा स्पार्क है जो हर जगह खुशियां ढूंढता हो, पॉजिटिविटी ढूंढता हो, तो ये भाई ये नशे होते हैं जो आप शरीर में लाइए और इससे आपको भी फायदा होगा और आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी फायदा होगा। पर ये जो नशे हैं जो आपके शरीर को नुकसान पहुँचाते हैं, कहीं ना कहीं आपके घर वालों को तकलीफ देते हैं और उसी के साथ आपके शहर आपके देश को भी नुकसान पहुँचाते हैं, तो इससे दूर रहना बहुत ज़रूरी है। और आगे जाकर ये बहुत डेंजरस डिजीज़ में भी कन्वर्ट हो सकते हैं हम सभी जानते हैं, तो इससे दूर रहिए। और अगर आप भी कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो जरूर से हमें कॉल कीजिए। हाल फिलहाल आगे बढ़ते हैं और इस प्यारे से मौसम में एंजॉय करते हैं ये प्यारे प्यारे गाने।

0: बोल बोल के थक गया।
1: क्या हुआ?
0: नया किडबैग चाहिए।
1: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
2: करेक्ट। तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले
1: ले आ गया नया किडबैग।
3: RBI कहता है
4: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
5: श्रोताओं, इस कमर्शियल ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके फेवरेट कार्यक्रम युवानी में, जिसे आप एंजॉय कर रहे हैं ओनली ऑन 102.1 पे नितेश और रिद्धि के साथ। और रिद्धि, वीकेंड्स की बात करें तो कल सैटरडे खत्म हुआ, आज संडे भी लगभग खत्म होने वाला है, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई इस वीकेंड्स किसी के साथ कुछ फनी चीजें ना हो।
6: यार नितेश, फनी तो कल एक इंसिडेंट हुआ था। मैं ट्रैवल कर रही थी और उसी दौरान ये जो सायरन की आवाज़ आई थी, जो अलर्ट आया था फ़ोन पे, तो हुआ ऐसा था कि जहाँ मैं थी वहाँ पर आसपास बहुत सारे अनजान लोग थे और एक साथ सबके फ़ोन बजने शुरू हो गए। तो वहाँ पर ये बताया, हम राजस्थानियों की खासियत है कि कोई भी अलर्ट वाली सिचुएशन आई या फिर कोई एकदम ऐसे डेंजरस सिचुएशन भी आ गई ना, अब कल कैसे आंधी आई थी और कितना तेज़ तूफान आया था, तो बहुत लोगों को ना इससे ठंडक और अच्छा लगा। वो जैसे ही अलर्ट आया था तो बहुत सारे लोग आसपास थे और सब हंसने लग गए, वही हंसी का माहौल बन गया कि सबके फोन बज रहे और इतनी तेज आवाज आ रही है। तो लोगों ने ये चीज डिस्कस नहीं की थी कि उस अलर्ट में क्या लिखा है, क्या मेंशन किया। वहां पर लोग आपस में ये गॉसिप कर रहे थे कि थारो ही फोन बाजी हो गई। तो ये वाली जो चीज थी मुझे बहुत फनी लगी कि लोग कैसे हर सिचुएशन में पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हैं और कहाँ पर जैसी ऐसी कोई सिचुएशन आ गई कि लोगों को अलर्ट होना चाहिए या फिर सीरियस मोड में जाना चाहिए, वहीं पर हमारे राजस्थान के लोग एकदम चिल होके बस हर एनवायरमेंट में, हर माहौल में खुद को ढाल लेने की वो कोशिश कर लेते हैं। और ये कह सकते हैं कि ये हमारे यहाँ का नशा है, जो खुशी और जो ह्यूमर हर चीज में ऐड करना, छोटी छोटी खुशियां ढूंढ लेना, इसमें तो हम लोग भाई एक्सपर्ट है। पर आज बात हो रही है वर्ल्ड नो टबैको डे पर, और ये थोड़ी डेंजरस चीज है, ये सीरियस मुद्दा है, ये हंसने की बात नहीं है और इस पर जोक भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम देखें तो तंबाकू के चलते बहुत से लोग अपनी जान भी गंवा बैठते हैं और उनके फैमिली मेंबर्स हैं उन्हें ज़्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि इससे होने वाले डिजीज़ बहुत डेंजरस होते हैं। कैंसर तो सबसे बड़ा इसका रीज़न है। तो ये जो मुद्दा है इसे सीरियसली लेना चाहिए, और अगर आप में से बहुत लोग सोच रहे हैं कि अगर आपको भी तंबाकू की लत लग चुकी है और अगर आप इसे छोड़ने का प्लान बना रहे हैं, तो ज़रूर से इसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए, क्योंकि आप तो खतरे में हैं ही, पर आगे आने वाले समय में आपके परिवार को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। अगर आप उनसे प्यार हैं और आपको लगता है कि नहीं, मैं और मेरा परिवार दोनों स्वस्थ रहने चाहिए, तो इस लत से दूर हो जाइए। हाल फिलहाल संडे का दिन है और शाम का टाइम हो चुका है और मौसम भी थोड़ा सा बेटर तो हो ही गया है, तो आप हो सकता है चाय कॉफी के साथ थोड़ा सा नमकीन भी इंजॉय कर लेना, पर अच्छे गाने तो हम आपको सुनाई रहे हैं, तो यस, इट्स अ गुड कॉम्बो ऑफ अ गुड इवनिंग। तो आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये वाला ट्रैक।

0: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
1: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
2: बन गया बजट?
1: हाँ,
2: 5,000 बच गए।
1: तो नई साड़ी ले ले।
2: ना,
1: पिछले महीने तो ली थी।
2: एक और
1: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
2: बढ़िया,
1: जाओ भाई।
3: आरबीआई कहता है,
0: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
4: श्रोताओं, आप एंजॉय कर रहे हैं कार्यक्रम युववाणी, जहां पर बात हो रही है आज वर्ल्ड नो टबैको डे पर। और ये जो विषय है थोड़ा सा गंभीर है, और इसी बीच में मेरे दिमाग में ये विचार आया था कि जैसे कि हमने बात की थी अभी मोबाइल अलर्ट्स की, तो इसे सीरियसली लेना भी बहुत

0: जरूरी है। जो हमने कल देखा है कि शहर में आंधी के साथ कितने पेड़ गिरे हैं, कितने होर्डिंग्स गिरे हैं, तो बहुत से लोगों को ये होता है कि एंजॉय करने के लिए घर से बाहर निकल गए कि चलो अच्छी हवा चली है, अच्छा मौसम है, कहीं बाहर घूम कर आना चाहिए। तो ये मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि खुद का ख्याल जरूर रखिएगा, क्योंकि अच्छा मौसम आप घर पर बैठ के भी इंजॉय कर सकते हैं, अपनों के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, पर जो नेचुरल कलामिटी होती है या फिर नेचुरल चीज़ों से जो चीज़ हो जाती है, बस हैपन हो जाती है कि पेड़ गिर गया, होर्डिंग गिर गई, ये किसी के हाथ में या बस में चीज़ नहीं होती। पर अगर इससे आपको कोई नुकसान पहुंचता है तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो सकती है। तो आप अपना ख्याल रखिए, और साथ ही में ये जो वार्निंग्स आती है, ये तो पता बढ़िया भाई, ये सारी सीरियस वार्निंग्स है, क्योंकि जितनी बार भी आई है उस वक्त बहुत तेज तूफान आया है। तो यस, यू नीड टू टेक दिस वार्निंग्स एज अ हाई टाइम। तो ये चीज़ जो है आज इस पे डिस्कशन चल रहा है कि नो टोबैको डे। तो नितेश, आपने भी देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि लाइफ में हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो ये चीज़ छोड़ चुके हैं, क्योंकि पहले भी मैंने देखा था कि हमारे एक दो श्रोता जुड़े थे, उन्होंने बताया था कि उनको बहुत सालों से एडिक्शन था और उन्होंने इसे छोड़ दिया। तो आपने कभी ऐसा सुना अपने आसपास?
1: आसपास काफ़ी बार सुना है कि जो लोग पहले सबसे ज़्यादा एडिक्ट थे वो इन चीज़ों से दूर होने लगे, बट दूर होने के पीछे कारण कई बार फैमिली होती है और कई बार एक सिंपल सा मोटिवेशन ही उनके लिए काम आ जाता है। तो अगर आपके आसपास भी अगर कोई लोग तंबाकू यूज़ करते हैं या फिर एक बार उन्हें ज़रूर उनकी इस लत को आप ज़रूर छुड़वाइए, क्योंकि एक आपका ये कदम उनकी लाइफ बदल सकता है। और आज का ये दिन वही है कि हर कोई एक संकल्प ले कि मैं कम से कम एक आदमी को इस नशे से जरूर छुड़वाऊंगा।
0: और बहुत से ऐसे अब तो सेंटर्स भी बन गए हैं जहाँ पर जो लत होती है या फिर एडिक्शन होता है उसे छुड़ाया जाता है। तो आप ऐसे सेंटर्स की भी मदद ले सकते हैं, और कई बार साइकोलॉजी में भी ये जो चीज़ है इसमें भी बहुत ज़्यादा योगदान होता है कि साइकोलॉजिकल पैटर्न अगर समझा जाए, अगर किसी साइकैट्रिस्ट की मदद ली जाए तो आप वो भी ले सकते हैं, क्योंकि एडिक्शन छोड़ना एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। तो अगर आप भी इस विषय पर बात करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो इसका नंबर है 02912553300, और दूसरा नंबर है 2554300। तो आप जल्दी से फोन घुमाएं और हमारे साथ जुड़ के इस टॉपिक पर बात कर सकते हैं।

0: तो हमारे पे कॉलर आ चुके हैं हमसे बात करने के लिए, तो आइए करते हैं उनसे बातचीत। हेलो,
1: हाँ जी नमस्ते, गुड इवनिंग आपको और नितेश भाई को। मैं
0: गुड इवनिंग
1: थोड़ा
0: सर।
1: सा
0: गुड इवनिंग,
1: ब्लैबर
0: गुड
1: हूँ
0: इवनिंग
1: आपका।
0: सर। क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम दिनेश सोडा है।
0: दिनेश जी, तो बताइए आपने जैसा आज का विषय सुना या सुना है ये है।
1: नो टॉबैको डे। देखिए
0: हाँ
1: एडिशन ऐसा होता है कि मैं उस पाउच पे लिखा रहता है कि टॉबैको किल्स है, कि तंबाकू जानलेवा है और काफी इफेक्ट डालता है बॉडी पे, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी होती है। और एक सिगरेट का धुआं
0: हाँ
1: जिंदगी के 11 मिनट कम करता है। तो
0: ये तो बात है।
1: आप बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन मैंने 16 लोगों को तंबाकू छोड़ा है जो मेरे आसपास रहते थे, और मैंने उनको गिफ्ट देखे है ना, ये
0: अच्छा
1: छोड़ा है। उनको मेरे मोबाइल शॉप है, मैं
0: हाँ
1: मेरे फ्रेंड को बोलता था कि अगर आप तंबाकू छोड़ेंगे, मेरे आज प्लेट लेते हो, अगर आप ये मेरे साथ संकल्प लेते हो तो मैं आपको एक शानदार गिफ्ट दूंगा।
0: क्या बात है सर, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपने 16 लोगों को इससे दूर किया है तो आपको बहुत
1: जी,
0: बहुत
1: 16 लोगों
0: बधाई
1: को मैंने तंबाकू छोड़ा दिया है और आज वो एकदम स्वस्थ जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि गुटखा खाने की वजह से 3 लोग ऐसे थे जिनका मुंह बंद हो गया था, बिल्कुल मुंह नहीं खुल रहा था। वो
0: जी
1: जनरल फिजिशियन के पास गए तो
0: हाँ
1: जनरल फिजिशियन ने उनको बोला कि आपको इग्नोर करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, चीज नहीं खानी चाहिए, लेकिन फिर भी वो इतने एडिक्ट है कि मतलब कहने के बावजूद भी छोड़ नहीं पा रहे थे।
0: हाँ
1: वो कह रहे थे कि जिंदगी छोड़ देंगे लेकिन हम तंबाकू गुटखा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन
0: नहीं
1: मैंने
0: नहीं
1: कहा
0: ये
1: कि देखो
0: आपने
1: आपकी ये आदत
0: बहुत
1: है
0: ही
1: मैडम, व्यसन का शौक कुत्ते की मौत, गुटखा खाकर गाल गला या कल कहते थे ये फैशन है, दुख नरक का भोग रहे हो, अभी ये कोई जीवन है, जरा
0: हाँ
1: सोचिए।
0: आपने बहुत अच्छा कार्य किया है सर। अगर आपने 16 लोगों को छुड़ाया है, और आप भी आगे प्रयास कीजिए कि आप इस चीज को कंटिन्यू करें, इस प्रैक्टिस को, क्योंकि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
1: बहुत दूर की बात है, मेरे घर में कोई मतलब इस्तेमाल नहीं करता, चाहे गुटखा बीड़ी सिगरेट ना, हर
0: जी सर,
1: चीज तो
0: आपसे बात करके
1: इंसाफ
0: बहुत अच्छा
1: करते
0: लगा।
1: हैं। ठीक है,
0: हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।

0: श्रोताओं, इसी के साथ हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो, जी सर नमस्कार, आपकी आवाज़ थोड़ी धीरे आ रही है।
1: हमारे यहाँ मौसम खराब है, आंधी भी आ रही है।
0: अच्छा अच्छा आंधी आ रही है, ओके। तो सर आपने आज का विषय सुना होगा, नो टबाको डे पर हम बात कर रहे हैं।
1: पढ़ लिया है नो तंबाकू डे।
0: आप क्या कहना चाहेंगे इस पे?
1: मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैंने मेरे परिवार में 20 जनों को तंबाकू छोड़ा दिया है।
0: अरे वाह।
1: और मेरे परिवार में तंबाकू बीड़ी सिगरेट कोई नहीं पीता है।
0: अरे आपने 20 जनों को कैसे छुड़ाया सर? ये बड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस होता है, कैसे किया?
1: परिवार जो मेरे दोस्त थे उन सबको मैंने छोड़ा दिए।
0: तो कोई आपने ऐसा उनको संकल्प दिलवाया या फिर एकदम तंबाकू दूर कर दिया, कैसे किया आपने?
1: मैंने उनको संकल्प दिलाया था, मैंने कहा अगर दोबारा कभी नशा बिल्कुल मुक्त करना है हमारे समाज में,
2: नशा छोड़ के भारी नशा चालू कर दिया।
3: बिल्कुल, बहुत ही अच्छा काम किया है। बस ये संख्या रुकनी नहीं चाहिए, बढ़ती रहनी चाहिए, आपको और भी लोगों को छुड़वाना चाहिए।
0: ये जो चीज थी नितेश, ये सुन के अच्छा लगा कि हमारे आसपास ऐसे भी जागरूक लोग हैं जो इस चीज से दूर जा रहे हैं और अपने परिवार और अपने दोस्तों की मदद कर रहे हैं इस नशे से दूर होने में। तो आप सब भी अगर ऐसा कुछ कार्य कर रहे हैं तो जरूर इसे कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है कि आपके आसपास तंबाकू की क्वांटिटी कम हो, क्योंकि देश के लिए, उनके परिवार के लिए और उनके खुद के लिए बहुत ही बेटर है। तो आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं हमारा अगला म्यूजिकल ट्रैक।

0: तो आज की चर्चा से हमें ये समझने का अवसर मिला है कि तंबाकू छोड़ना कठिन जरूर है लेकिन असंभव नहीं। जिंदगी की राह में उजाला बनाए रखिए, हर बुरी आदत से खुद को बचाए रखिए, सांसों की कीमत समझिए जनाब, तंबाकू नहीं मुस्कान को साथ रखिए। इसी संदेश के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। मैं था आज की शाम आपके साथ नितेश, और मेरे साथ
1: और मैं हुरुधी। जैसा नितेश ने कहा, आप इस बात को जरूर फॉलो कीजिएगा और आप सभी स्वस्थ रहे, खुश रहे और अपना और अपने अपने लोगों का ख्याल रखिए। इसी के साथ दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी जोधपुर का एफएम सेंसिटी चैनल है, एफएम बैंड 102.1 MHz पर। इस समय शाम के 6 बजे हैं। आइए सुने हिंदी में समाचार जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में 6वीं-7वीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
2: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
2: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
1: आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री रेहड़ी पटरी दुकानदार आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना ने पूरे देश में छोटे उद्यमियों के कारोबार के मूल आधार को बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक रूप से रेहड़ी पटरी वाले दुकानदार स्थानीय साहूकारों पर निर्भर रहते थे, जो उनसे अत्यधिक ब्याज वसूलते थे। पीएम स्वनिधि योजना ने सफलतापूर्वक इस ऋण चक्र से उन्हें मुक्ति दी है। केंद्रीय मंत्री आज अगरतला में रेहड़ी पटरी दुकानदारों को पीएम स्वनिधि के ऋण चेक और क्यूआर कोड युक्त क्रेडिट कार्ड वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। जल शक्ति मंत्रालय कल नई दिल्ली में जल अनुसंधान और विकास पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। इसका उद्देश्य भारत के जल अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य जल संसाधन प्रबंधन, पेयजल और जलवायु परिवर्तन से निपटना है। दिल्ली के साकेत में

0: मेट्रो स्टेशन के पास एक चार मंजिला कमर्शियल इमारत गिरने की घटना में मृतकों की संख्या पांच हो गई है। इस मामले में दो इंजीनियरों को निलंबित कर दिया गया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अनुसार 13 पीड़ितों को इलाज के लिए जयप्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेंटर लाया गया। इनमें से पांच को अस्पताल पहुंचने पर ही मृत घोषित कर दिया गया, जबकि पांच की हालत गंभीर है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में हुई सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया है कि बातचीत विफल होने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अब हम बैंड 102.1 मेगा हर्ट्ज पर, यह आकाशवाणी जोधपुर का एफएम सेंसिटिव चैनल है। श्रोता, इस समय शाम के 6:05 हुए हैं। आइए सुने गुड इवनिंग जोधपुर।

गुड इवनिंग जोधपुर के आज के इस सफ़र में एक बार फिर से मैं हूं हाजिर, आपका दोस्त संजय कौड़ लेके आज का ये सफ़र। इस सफ़र में हम बातें करेंगे कुछ कड़वी, लेकिन है आज के इस ज़माने के लिए वो सच्ची बात। लेकिन सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे हमारे मारवाड़ के कुंभ बौगी शैल परिक्रमा यात्रा की। दोस्तों जिस प्रकार से कल शाम को एक तूफान आया, प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाया, उस रौद्र रूप को देखते हुए तमाम जो श्रद्धालु थे उनके हौसले किसी भी सूरत में पस्त नहीं हुए। उन्होंने अपनी आस्था को चरम पर रखते हुए इस भोगीशैल परिक्रमा को आज पूर्ण विराम दिया। घनश्याम मंदिर के दर्शन करके आज की इस यात्रा को पूर्ण किया। दोस्तों कहते हैं कि प्रकृति के इस रौद्र रूप के सामने भक्तों की जो आस्था थी, उनका जो विश्वास था, वो किसी भी सूरत में नहीं डगमगाया, नहीं डगमगाया उनका विश्वास ईश्वर के प्रति। थोड़ा नुकसान जरूर हुआ जोधपुर में, लेकिन भक्तों की आस्था के आगे ये मौसम भी नाकारा साबित हुआ। लेकिन दोस्तों इस प्रकार के जब मौसम आते हैं तो प्रशासन भी एकजुट होकर तमाम सुविधाएं करते हैं उन भक्तों के लिए और नागरिकों के लिए भी। लेकिन साथ ही साथ हम लोगों का भी एक दायित्व होता है कि हम ऐसे समय में धैर्य रखें और उन तमाम चीज़ों का हम ध्यान रखें जो हमें प्रशासन के द्वारा समय समय पर बताई जाती है। ये मौसम है दोस्तों, मौसम का कोई भरोसा नहीं है कि कब मौसम पलटा मार जाए और कैसा मौसम आ जाए, क्योंकि ये प्रकृति है।

0: सुविधाएं, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: कितनी तन्हा हूँ मैं, कितना अकेलापन, ऐसे में कौन मेरे साथ रहे। मेरा मोबाइल और मेरे मोबाइल में मेरा फेवरेट रेडियो सन सिटी। कोई मिल गया हमेशा मेरे साथ, मेरा अपना चैनल रेडियो सन सिटी। सुनते रहिए 102.1 FM रेडियो सन सिटी, इट्स माय चैनल।

0: थ्री प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायका हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
1: RGHS व चिरंजीवी योजना के अंतर्गत निःशुल्क ऑपरेशन। पथरी मतलब विनायका हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।

दोस्तों, मौसम बदला बदले थोड़े से हालात, यानी जो गर्मी अपना चरम रूप ले रही थी, जो हमें परेशान कर रही थी इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी, उससे कहीं ना कहीं जो बारिश हुई है उससे हमें राहत मिली है। एक पानी की जो कमी थी पशु पक्षियों के लिए, कहीं जंगल में, कुछ मीनारों पे, कुछ पहाड़ों पे, इस बारिश से वहाँ पर पानी थोड़ा बहुत भी इकट्ठा हुआ है, तो उन पशु पक्षियों की प्यास बुझाने के लिए वो थोड़े समय के लिए पर्याप्त रहेगा। तब तक इंद्रदेव वापस मेहरबान होंगे और होगी जोरदार बारिश, तब जाके खुशहाली का संदेश लेके आएगी ये आने वाली बारिश। बात हम आज इस कार्यक्रम में करने वाले हैं दोस्तों, कुछ कड़वी बातें, लेकिन वो बातें आज के इस परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल सही साबित हो रही है दोस्तों। काफ़ी लंबे समय से मन में एक विचार था, एक बात थी जो आपके साथ साझा करने का मन कर रहा था, वो ये थी कि हम ये देख रहे हैं कि रिश्ते आजकल एक दिन विशेष के बन के रह गए हैं, यानी फादर डे, मदर डे, ब्रदर डे, सिस्टर डे, टीचर्स डे, न जाने और कौन कौन से डे हमें अभी देखने बाकी रह गए हैं। तो मेरा मानना यह है कि रिश्तों के लिए एक दिन विशेष बिल्कुल ही पर्याप्त नहीं है। अगर हम इन रिश्तों को निभाना चाहें तो पूरे 365 दिन ही हमारे लिए फादर डे हैं, मदर डे हैं, ब्रदर डे हैं, सिस्टर डे हैं। जब ये रिश्ते हम फेसबुक, इंस्टाग्राम या जो भी अपनी सोशल साइट है उसके ऊपर जब हम डालते हैं, पोस्ट करते हैं, तो वो बस उस दिन विशेष के लिए ही होकर रह जाते हैं। सच्चे मन से इन रिश्तों को निभाने के लिए कड़ी अग्नि परीक्षा से हमें गुजरना पड़ता है। एक अच्छे भाई का फ़र्ज हमें निभाना पड़ता है, बेटे का फ़र्ज निभाना पड़ता है, और रिश्तों की जो अहमियत है उनको समझकर यदि हम अपना व्यवहार रखें तो शायद इन एक दिन विशेष की हमें हमारे जीवन में ज़रूरत नहीं रहेगी और ना ही ज़रूरत रहेगी उन पोस्टों की, क्योंकि हमारा रिश्ता अटूट है, सरल है, बिना किसी स्वार्थ के हैं। जी हाँ, सबसे बड़ी बात तभी आती है रिश्तों के बीच में दरार और कुछ अन कही बातें जब उनके बीच में स्वार्थ नाम का ये शब्द जो है वो घुस जाता है। जहाँ स्वार्थ आते हैं दोस्तों, वहाँ पर रिश्ते जो हैं वो धीरे धीरे धूमिल होने लगते हैं, और जहाँ स्वार्थ नहीं होता है वहाँ ये रिश्ते बिल्कुल प्रगाढ़ रहते हैं और उनकी खुशबू बहुत दूर तक जाती है। तो हमें इन एक दिन विशेष के रिश्तों से बाहर निकल कर आने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत अपने परिवार में, अपने दोस्तों के बीच में एक सामंजस्य स्थापित करने की, और पुराने उन दिनों को याद करके वापस लौटेंगे हम जरूर उन दिनों की तरफ जहाँ इन दिन से दिन विशेष की कोई महत्वता नहीं रहती थी।

0: सौम्यता है इसकी पहचान।
1: ये शहर है अमन का, यहाँ की फिजा है निराली।
0: FM Sun City, Sun City, Sun City।

0: दुनिया का सारा सुख एक तरफ, हर माँ बड़न रसुख एक तरफ।
1: निसंतान दंपत्यारे जीवन में खुशियाँ री उम्मीद। विनायका हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर, गीता भवन रोड, जोधपुर।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: जो बातें सुनता है, जो बातें करता है, जो अपनी कहता है, जो अपनी सुनाता है, जो गाता है, गुनगुनाता है, आपका अपना FM Sun City।

दोस्तों बिल्कुल सही इस गीत के अंदर कहा गया है कि अपने तो अपने होते हैं, बस रूठे हुए लोगों को मनाने की हिम्मत अपने अंदर होनी चाहिए। बस उन सब चीज़ों को एक तरफ रख के, क्या मनमुटाव के कारण रहे हैं, क्यों हुआ है, किस तरह हुआ है, कैसे हुआ है, उन सब चीज़ों को रख के बस एक बार वापस जाइए और उनको मना के अपने रिश्तों की एक नए तरीके से शुरुआत करिए। दोस्तों जीवन में जब हम कई बार असफलता हमें घेर लेती है, अवसाद हमें घेर लेते हैं, उस समय जो सबसे ज़्यादा जो नज़दीक हमारा होता है वो होता है हमारा फ्रेंड, हमारा दोस्त। और अगर दोस्त सच्चा और अच्छा और निस्वार्थ भाव वाला हो तो वो दोस्त हमें उन अवसाद से बाहर निकालने में बहुत बड़ी मदद करता है, मदद करता है एक नई दिशा दिखाने में, और हमें ये याद करवाता है कि हम किसी भी सूरत में किसी भी मायने में कमज़ोर नहीं हैं। तो वो दोस्त सच्चा है, और अगर हमें गलत राह पर ले जाता है तो वो दोस्त हमारे लिए काम का नहीं है। इसलिए सच्चे और अच्छे दोस्त होना किस्मत की बात होती है और उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो इस ज़माने में भी अपनी दोस्ती को निभा रहे हैं और आगे भी निभाते रहेंगे। ऐसे दोस्तों को बस हम यही कहेंगे कि ऐसे दोस्तों का जो दोस्ताना है वो सलामत रहे और एक दूसरे का हाथ पकड़ के, चाहे सुख हो या दुख, आगे बढ़ते रहें।

0: आकाशवाणी के खजाने में खूबसूरत हर जमाने के गीत, आकाशवाणी के प्रोग्राम पेश करने वालों की बेमिसाल आवाजें।
1: नमस्कार।
2: दिल ये चाहे हवाओं से खेलो,
1: अपना शहर अपनी शान,
3: मेरा फेवरेट रेडियो सन सिटी।
4: जो बातें सुनता है, जो बातें करता है,
3: एफएम सन सिटी,
5: जोधपुर एफएम, हार्ट बीट ऑफ जोधपुर,
6: नए अंदाज में।
7: जो दिन भर घर घर में गूंजती है,
1: ट्यून कीजिए एफएम।

दोस्तों, बात जो हम रिश्ते की कर रहे थे कि नए ज़माने में ये जो रिश्ते हैं वो धीरे धीरे क्यों कम होते जा रहे हैं और एक दिन विशेष पे आगे ही क्यों रुक गए, इसका यदि हम आकलन करें तो हम पाएंगे कि हम लोगों ने, यानी आज की जो जनरेशन है, उसने अपने बुज़ुर्गों को, अपने बड़ों को समय देना बंद कर दिया है, यानी उनके पास बैठ के उनके अनुभव साझा करना कम कर दिए हैं। उसी का नतीजा है कि आज ये जो रिश्ते हैं वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। अगर हम अपने बुज़ुर्गों को, अपने बड़ों को बैठकर उनके अनुभवों को अपनी ज़िंदगी में साझा करें और अपनाने लगें तो बेशक इन रिश्तों की एक दिन विशेष की हमें ज़रूरत नहीं रहेगी।

0: कितनी तन्हा हूँ मैं, कितना अकेलापन, ऐसे में कौन मेरे साथ रहे। मेरा मोबाइल और मेरे मोबाइल में मेरा फेवरेट रेडियो सन सिटी।
1: कोई मिल गया
0: हमेशा मेरे साथ, मेरा अपना चैनल रेडियो सन सिटी। सुनते रहिए 102.1 FM रेडियो सन सिटी, इट्स माय चैनल।

दोस्तों, आज के इस गुड इवनिंग एफएम के सफर में हम बात कर रहे हैं बदलते मौसम की, रिश्तों का एक दिन विशेष में होना और धीरे धीरे अपनापन जो है वो ख़त्म होना। दोस्तों, साथ ही साथ एक और कड़वी बात जो आज हम बात कर रहे हैं कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो नशे की प्रवृत्ति को एक फैशन का नाम देके अपने आप के साथ जो धोखा कर रही है, उस धोखे से वो लोग कैसे निकल सकते हैं, इसके ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। दोस्तों, जो बात हमने की कि रिश्ते जो होते हैं, चाहे वो दोस्ती का रिश्ता हो, चाहे वो परिवार में अपनापन का जो रिश्ता है, वो भाई बहन, माँ बेटे, बहन, जो भी रिश्ता है, उन तमाम रिश्तों में यदि परिवार का कोई व्यक्ति, कोई लड़का या लड़की जो यंग है और इस नशे की प्रवृत्ति में घिर गया है किन्हीं कारणों से, अनेकों कारण हो सकते हैं, तो उनके साथ बैठ के, उनके साथ वक्त बिता के उन कारणों का पता लगा के और किस तरह से वो युवा पीढ़ी का, अपना परिवार का सदस्य उस नशे की प्रवृत्ति से बाहर निकल सके, इसके लिए हमें प्रयास करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये फैशन नहीं है, अपने कैरियर को बर्बाद करने की एक दिशा है जो व्यक्ति चुन लेता है किन्हीं कारणों की वजह से। या तो उसका फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं होता है, या परिस्थितियाँ कुछ ऐसे हो जाती है कि वो उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। क्योंकि आज की इस चकाचौंध की दुनिया में युवा जो हैं वो नशे की प्रवृत्ति को, या जिस प्रकार से वो नशा करते हैं, जिस स्टाइल में वो नशा करते हैं, माफ़ करना, ये कहना सही नहीं होगा कि स्टाइल में भी नशा किया जाता है, लेकिन वो ऐसा प्रतीत करवाते हैं लोगों को, या अपना आप को धोखा देते हुए वो ऐसा शो करते हैं कि हम ये जो कर रहे हैं वो हमारे लिए अच्छा है, और ये आजकल की युवाओं की फैशन नहीं है। तो माफ़ कीजिएगा, आज के युवाओं की ऐसी कोई फैशन नहीं है। ऐसे बहुत से अच्छे युवा और लड़कियां भी हैं जो इन चीज़ों से कोसों दूर है और अपने कैरियर पाथ को एक नई दिशा देते हैं, अपनी सोच और अपनी उम्मीदों को कायम रखते हैं इन सब चीज़ों से दूर रखे। तो हमें प्रयास करने पड़ेंगे उन युवाओं को इस प्रवृत्ति से बाहर लाने के लिए, और यह तभी सार्थक होगा जब हम उनके मन की बात सुन के, उनसे बात करके और उस चीज़ का समाधान करेंगे। तभी वो इस एक अंधेरी दुनिया जो जिसको वो चुन चुके हैं या चुनने जा रहे हों, उसे हमें बाहर निकालना बहुत ज़रूरी रहेगा।

0: रिटर्न गणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी के खजाने में खूबसूरत हर जमाने के गीत, आकाशवाणी के प्रोग्राम पेश करने वालों की बेमिसाल आवाजें।
3: नमस्कार।
4: दिल ये चाहे हवाओं से खेलो,
3: अपना शहर अपनी शान।
5: मेरा फेवरेट रेडियो सन सिटी।
6: जो बातें सुनता है, जो बातें करता है।
5: FM सन सिटी,
7: जोधपुर FM, हार्ट बीट ऑफ जोधपुर।
8: नए अंदाज में
9: सबके लिए।
10: जो दिन भर घर घर में गूंजती है।
11: ट्यून कीजिए FM सन सिटी।

दोस्तों, एक और कड़वी बात जो हम जाते जाते कर रहे हैं आपसे कि पर्यावरण और प्रकृति, पशु पक्षियों की बातें भी सिर्फ कभी ना कभी एक दिन विशेष या पोस्टर विशेष में बनकर रह जाती है। जैसे ही गर्मी आती है, हम सब लालायित हो जाते हैं अपने घरों में पशु पक्षियों के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था करनी है, छत पर ये रखना वो रखना। क्यों ना हम इसको 365 दिन की आदत में शुमार कर लें, ताकि ना तो हमें इन चीज़ों को याद रखने की ज़रूरत रहेगी और ना ही दिन विशेष पर इन्हें याद रखने की ज़रूरत रहेगी। क्योंकि 365 दिन तक हर पशु पक्षी को प्यास लगती है, भूख लगती है और उनका ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। पेड़ लगाएं, ये भी बहुत ज़रूरी है। और पूरे दिन यानी 365 डेज, जो एक वर्ष होता है, उसके प्रत्येक दिन में उसका हम अपने परिवार के सदस्य की तरह अगर ध्यान रख के उसका लालन पालन करेंगे, तो वही पेड़ आने वाले समय में हमें ठंडी छाँव देगा, फल देगा, फूल देगा और देगा ढेर सारी ऑक्सीजन, ढेर सारी ठंडक। तो क्यों ना इन सभी चीज़ों पे जा हमने आज बात की है, चाहे वो बदलता मौसम हो, रिश्ते जो एक दिन विशेष के रह गए हैं, नव पीढ़ी जो फैशन के नाम पर नशा कर रही है, और प्रकृति की देखभाल हमें पूरे 365 डे करनी है, तब हमें इन एक दिन की ज़रूरत नहीं रहेगी। ऐसा ही संकल्प आज के इस कार्यक्रम में हम लेकर विदा लेते हैं आपसे। फिर मिलेंगे आपके अपने दोस्त संजय गौड़ के साथ। आज आपने साझा किया आज का ये कार्यक्रम, बने रहिए इस खूबसूरत नगमे के साथ।

0: ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सेंसिटी चैनल है, FM बैंड 102.1 MHz पर। श्रोता, इस समय शाम के 7 बजे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम जयमाला, जिसे हम रिले करेंगे हमारे विविध भारती केंद्र मुंबई से।
1: ऐसी बना ये गाना
2: घुंगरू की तरह बजता ही
3: शोधन, एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
1: संगीतकार रविंद्र जैन।
3: शोधन ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे की शोधा आ गई सुबह सुबह, मुझे वो गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।

0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।
1: जय माला।

0: آزادی ذرا یاد کرو قربانی سینکوں کی شوریہ گاتھا مہاویر چکر
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम विशेष जयमाला सैनिकों की शौर्य गाथा। फौजी साथियों और श्रोताओं को नेहा शर्मा का नमस्कार। जब हम प्रकृति से मिले उपहारों की बात करना चाहते हैं तो खुद को बेहद सीमित पाते हैं। ऐसा लगता है कि हमारे पास जो भी है वो सब प्रकृति का ही तो है। कुछ यही भाव हम अपने सैनिकों के लिए भी मन में महसूस करते हैं। देश के इन वीर जवानों के लिए कुछ कहते हुए जैसे बड़े से बड़ा शब्द छोटा मालूम होता है। इनकी वीरता साहस

निस्वार्थ भावना के लिए दुनिया भर की सारी उपमाएं घुटने टेकने को तैयार नजर आती हैं। उस पर हमारे वीर सैनिक विनम्रता से मुस्कुराकर हमारी किसी छोटी सी मुस्कान, एक सैल्यूट, एक अभिवादन को पूरे स्नेह से स्वीकार कर हमें उत्साह से भर जाते हैं। आज हम एक ऐसे वीर सैनिक की गाथा लिए आए हैं जिनका सीना सेना की ओर से मिले सम्मानों से लदा हुआ है, लेकिन इन सम्मानों की आभा से ज्यादा उनके चेहरे पर विराजती है एक विनम्रता भरी मुस्कान। आप हैं देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट जनरल जोरावर चंद बख्शी उर्फ जोरू।

लेफ्टिनेंट जनरल जोरावर चंद बख्शी, जिन्हें फौज में उनके साथी प्यार से जोरू और जूनियर कैप्टन जोरू के नाम से बुलाया करते थे। ये कहा जा सकता है कि मातृभूमि से प्रेम की भावना उनकी रगों में दौड़ती थी। पिता ब्रिटिश भारतीय सेना में सम्मानित सैनिक रहे। जनरल जोरू अविभाजित भारत में जन्मे। पंजाब प्रांत के रावलपिंडी में उनका जन्म हुआ साल 1921 में। लेफ्टिनेंट जनरल जोरावर चंद बख्शी एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें हर वो व्यक्ति याद करता है जो उनसे एक बार भी मिला हो। लेफ्टिनेंट जनरल जोरावर चंद बख्शी ने स्नातक की उपाधि हासिल करने के बाद देहरादून की भारतीय सैन्य अकादमी में दाखिला ले लिया। 21 साल की उम्र में आप ब्रिटिश भारतीय सेना की बलूच रेजिमेंट में कमीशन हो गए।

देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट जनरल जोरावर चंद बख्शी की शौर्य गाथा आप सुन रहे हैं विविध भारती पर। जनरल जोरावर सिंह बख्शी ने अपना पहला युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लड़ा। यहाँ वो एक पैदल सेना में शामिल थे, लेकिन अपनी भारी किलेबंदी रणनीति के कारण स्थिति पर काबू पाया और उन्हें एक यादगार के तौर पर डिस्पैच में उल्लेख हासिल हुआ। इसके बाद अपने कार्यों से उन्होंने मेजर की उपाधि हासिल की। भारत विभाजन के बाद लेफ्टिनेंट जनरल जोरावर चंद बख्शी भारतीय सेना की 5वीं गोरखा राइफल्स रेजिमेंट का हिस्सा बने। ये एक ऐसी रेजिमेंट रही जिसने जनरल बख्शी के दिल में अपनी जगह बनाई रखी। इस रेजिमेंट का हिस्सा बने हुए लेफ्टिनेंट जनरल जोरावर चंद बख्शी ने अपनी वीरता का परचम लहराया। लेफ्टिनेंट जनरल जोरावर चंद बख्शी सेना के सबसे सम्मानित जनरल्स में से एक रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य भी हो सकता है कि साल 1962 के युद्ध के अलावा उन्होंने देश के तकरीबन हर युद्ध में अपना योगदान दिया। वो जब मैदान में आ जाते तो हर एक के चेहरे पर मुश्किल वक्त में भी मुस्कान आ जाती। जनरल बख्शी का व्यक्तित्व कुछ ऐसा रहा कि उनके जीवन से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। वो जब भी किसी युद्ध का हिस्सा बनते तो अग्रिम पंक्ति में होते। उनके साथी बताते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल जोरावर चंद बख्शी दुश्मनों के सामने एक अलग ही रूप में हुआ करते। बाद के वर्षों में जब वो जम्मू सीमा में तैनात थे तब उन्हें उनकी सुरक्षा के लिए 2 एस्कॉर्ट जीप दी गई, तो भी वो उसका उपयोग नहीं किया करते, बल्कि एक खुली कार में तिरंगा लहराते हुए यात्रा किया करते। ये एक बेहद जोखिम भरा काम हुआ करता था क्योंकि हमले का खतरा हर पल बना होता। लेकिन जनरल बख्शी ये कहते कि इस काम से सेना में जोश का संचार तो होता ही, साथ ही वो दुश्मनों को ये संदेश भी दिया करते कि दुश्मनों का सामना एक शेर दिल से है।

आज हम बात कर रहे हैं भारत के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट जनरल जोरावर चंद बख्शी की। इस सम्मान के मिलने का किस्सा जितना साहस, वीरता और जोश से भरा हुआ है, उस जोश की शुरुआत लेफ्टिनेंट जनरल जोरावर चंद बख्शी के जीवन में बहुत पहले से हो गई थी, जब उन्होंने अपने रण कौशल से विभिन्न सम्मान अर्जित किए। बात साल 1947-48 की है, जब पड़ोसी देश के साथ युद्ध का हिस्सा बने जनरल बख्शी ने मुख्यालय में एक स्टाफ अधिकारी होते हुए भी अपनी वीरता का ऐसा प्रदर्शन किया कि उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया। आमतौर पर स्टाफ कर्मचारियों के द्वारा ऐसी वीरता कम ही देखी जाती है, पर कहते हैं ना कि वीर की वीरता और साहस सही वक्त पर सामने आ ही जाते हैं। वीरता प्रदर्शन की चीज नहीं, बल्कि ये तो एक ऐसा गुण है जिसकी चमक हर ओर फैलती है और इसकी रोशनी से भय का अंधकार मिट जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल जोरावर चंद बख्शी के नाम एक ऐसा सम्मान भी है जो भारत की आजादी के बाद पहली बार किसी को मिला। ये पदक है मैकग्रेगर मेमोरियल मेडल। ये सम्मान उन सैनिकों को मिलता है जो देश के दूर दराज के क्षेत्रों में सेना के लिए महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करने का काम करते हैं। इस दौरान उन्हें अपनी पहचान छुपाकर ज्यादा से ज्यादा जानकारियां इकट्ठा करनी होती हैं। ये एक कठिन यात्रा होने के साथ ही बड़ी जिम्मेदारी से भरा काम होता है। इस सम्मान को हासिल करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल जोरावर चंद बख्शी पूरी तरह से हकदार रहे। जब उन्हें रणनीतिक सैन्य टोही का काम सौंपा गया तो उन्होंने तिब्बत की यात्रा की, हिमालय के कई ऊंचे दर्रों को पार किया, तकरीबन 400 किलोमीटर की दूरी तय की और अपना लक्ष्य हासिल किया। इस काम के लिए वो 80 दिनों तक एक तिब्बती भिक्षु के भेष में रहे। देखा जाए तो एक भिक्षु और सैनिक विरोधाभासी होते हुए भी एक से होते हैं। दोनों ही स्वयं के प्रति निर्मोही होते हैं और अपने लक्ष्य पर एकाग्रता रखते हुए कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी डटे रहते हैं। अपने लक्ष्य के प्रति कुछ ऐसी ही एकाग्रता बनाए रखने वाले वीर सिपाही रहे लेफ्टिनेंट जनरल जोरावर चंद बख्शी।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं विशेष जयमाला सैनिकों की शौर्य गाथा। इस श्रृंखला में आज देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट जनरल जोरावर चंद बख्शी की शौर्य गाथा। के सबसे सम्मानित जनरल्स में से एक लेफ्टिनेंट जनरल जोरावर चंद बख्शी अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, साहस और वीरता के कई प्रतिमान सीने पर सजाए आगे बढ़ते रहे। महावीर चक्र, वीर चक्र, परम विशिष्ट सेवा पदक, सैन्य सेवा पदक जैसे तकरीबन 20 सैन्य सम्मान उनका मान बढ़ाते रहे। हालांकि उन्होंने अपने इन सम्मानों से अपना सीना चौड़ा किया, पर इसे सिर पर चढ़ने नहीं दिया। उनका सिर मातृभूमि के लिए हर पल विनम्रता से नतमस्तक ही रहा। कहा जाता है, जो वृक्ष फलों से लदा होता है वो विनम्रता से झुक ही जाता है। कुछ यही गुण लेफ्टिनेंट जनरल जोरावर चंद बख्शी के व्यक्तित्व में भी नजर आता है। एक ओर दुश्मनों के सामने वो फौलाद बनकर खड़े होते हैं और दूसरी ओर अपने साथियों के लिए इतने नरम कि बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा उनका कायल हो जाए।

युद्ध क्षेत्र में अपना परचम लहराना हर सैनिक का सपना होता है। देश की माटी के लिए अपनी जान न्यौछावर करने से भी हमारे वीर सैनिक पीछे नहीं हटते। जहां युद्ध मैदान में उपस्थित होना आवश्यक है, वहीं जरूरी है नए सैनिकों को उचित प्रशिक्षण देकर तैयार करना। लेफ्टिनेंट जनरल जोरावर चंद बख्शी ने यहां भी अपनी भूमिका निभाई। 50 के दशक में वो कुछ समय के लिए प्रशिक्षक के रूप में काम करते रहे। ये यकीन के साथ कहा जा सकता है कि उन्होंने अपनी ही तरह कई बहादुर सैनिकों को तैयार किया होगा। यही नहीं, उनकी विनम्रता के कुछ अंश भी जरूर उनके विद्यार्थियों में आए होंगे। किसी वृक्ष की छाया में जो बीज अंकुरित होते हैं, उनमें वृक्ष के कुछ अंश आते ही हैं। कई बार वृक्ष से लिपटी बेलें वृक्ष के सानिध्य में अपना गुण भी बदल लेती हैं। एक सच्चे गुरु के मार्गदर्शन में शिष्य भी अपनी क्षमता को बढ़ा हुआ पाते हैं। बतौर प्रशिक्षक लेफ्टिनेंट जनरल जोरावर चंद बख्शी ने कुछ दिनों तक अपनी सेवाएं दी और जल्द ही एक बार फिर युद्ध क्षेत्र से उन्हें बुलावा आ गया। एक सच्चे सैनिक की यही निशानी होती है कि वो केवल वीरता की डींगे नहीं हांकता, बल्कि उसे जीवंत कर दिखा

0: और साहस से भरी ये शौर्य गाथा जारी रहेगी इस अंतराल के बाद।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं विशेष जयमाला सैनिकों की शौर्य गाथा। इस श्रृंखला में आज देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट जनरल जोरावर चंद बख्शी की शौर्य गाथा। यहाँ इस बात का उल्लेख करना लाजमी है कि लेफ्टिनेंट जनरल जोरावर चंद बख्शी अपनी रणनीति के लिए जाने जाते रहे हैं। उनकी एक बेहतरीन रणनीति का उदाहरण है हाजी पीर की जीत, जिसने आगे जाकर देश की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसकी विस्तार से बात करें उसके पहले यहाँ जिक्र करते हैं प्रसिद्ध चिकन नेक की, जिसे ये नाम जनरल बख्शी ने ही दिया। ये जगह चिनाब नदी और उसके आसपास फैला एक लंबा क्षेत्र है। इससे कुछ ही दूर पर अखनूर पुल मौजूद है, जो सेना के लिए यातायात का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इस जगह की जितनी उपयोगिता है उतना ही खतरा यहाँ बना रहता है। दुश्मन देश ने इस स्थान का नाम खंजर रखा हुआ था, जिसका कारण यहाँ के खतरे से ही था। भारतीय सेना के लिए इस स्थान से गुजरना खंजर की धार से गुजरने जैसा हुआ करता। लेकिन साल 1971 में लेफ्टिनेंट जनरल जोरावर चंद बख्शी ने इस स्थान का नाम बदलकर चिकन नेक किया और कहा कि यह स्थान उसी तरह से सेना के कब्जे में आएगा जैसे एक मुर्गी का बच्चा आ सकता है। इस नाम से ही उन्होंने अपने साथियों के मन में ये बात बिठा दी कि इस इलाके को कब्जे में करना इतना मुश्किल नहीं है, जबकि मामला इसके विपरीत था। हालांकि लेफ्टिनेंट जनरल जोरावर चंद बख्शी ने जो बात कही थी उसे कर भी दिखाया। मात्र 48 घंटे के अंदर इस क्षेत्र में तिरंगा शान से लहरा रहा था। सेना का मनोबल ऊंचा हो चुका था। जनरल बख्शी ने कुछ इसी तरह का साहस और पराक्रम दिखाया था हाजी पीर पास को अपने कब्जे में लेने के दौरान भी।

लेफ्टिनेंट जनरल जोरावर चंद बख्शी ने साल 1965 में सेना के सबसे महत्वपूर्ण, शानदार और सफल अभियानों में से एक ऑपरेशन बख्शी का नेतृत्व किया। इस ऑपरेशन का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया था। उन्होंने न सिर्फ इसका नेतृत्व किया बल्कि अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। ये लक्ष्य था 9000 फीट की ऊंचाई पर स्थित हाजी पीर पास पर देश का झंडा लहराने का। हाजी पीर दर्रा सेना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि ये देश में घुसपैठ करने का एक प्रमुख प्रवेश मार्ग बना हुआ था। साथ ही पूंछ और उरी के बीच एक सुगम रास्ता भी था। हाजी पीर दर्रा तीन ओर से पहाड़ों से घिरा है, पूर्व में बेदौरी, पश्चिम में संक और दक्षिण पश्चिम में लेड़ वाली गली। हाजी पीर तक पहुंचने के लिए इन तीनों पोस्ट पर कब्जा जमाना बहुत जरूरी था। ऐसे में दुश्मनों की नजर से बचना आसान काम नहीं था। एक रणनीति तय की गई जिसके तहत दो तरफा अभियान चलाया गया। पहला उरी से हाजी पीर पास तक और दूसरा पूंछ से हाजी पीर पास तक। अनुमान था कि इस दो तरफा हमले से दुश्मन को भाग निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। उरी से हाजी पीर जीतने के लिए 5 इन्फेंट्री बटालियन ब्रिगेडियर जोरावर चंद बख्शी के नेतृत्व में आगे बढ़ी। इस अभियान को नाम मिला ऑपरेशन बख्शी। ऑपरेशन बख्शी और ऑपरेशन फौलाद को सफल बनाने के लिए सेना निकल चुकी थी। ब्रिगेडियर बख्शी का अनुमान था कि विरोधी सेना तकरीबन 3.5 बटालियन के साथ उनकी राह देख रही है। उन्होंने बाएं से उरी, संक, लेड वाली गली फतह करते हुए हाजी पीर पहुंचने की योजना बनाई, तो दाएं से उरी, बेदौरी, कुटनारदी गली, किरण होते हुए हाजी पीर पहुंचने की योजना थी। ब्रिगेडियर जोरावर चंद बख्शी के साथ दूसरी ओर से सेना का नेतृत्व मेजर रणजीत सिंह दयाल के हाथ में था। ये पूरा मिशन 3 फेस में होने वाला था और 26 अगस्त को हाजी पीर पास पहुंचने की योजना थी। ये सारा अभियान रात के अंधेरे में करने की योजना बनाई गई, लेकिन पहाड़ी इलाके में योजना आपके अनुसार नहीं, प्रकृति के अनुसार चलती है। मौसम बिगड़ने के कारण कुछ देरी होती गई और एक दिन की देर हो गई। भारी बारिश के कारण, संक तक धीमी गति से पहुंचने के कारण रात के अंधेरे में पहुंचने की योजना दिन के उजाले में तब्दील हो गई। दुश्मन भारी हथियारों के साथ तैयार था। सेना को देखते ही हमला बोल दिया गया। सामना करते हुए हमारी सेना ब्रिगेडियर जोरावर चंद बख्शी के नेतृत्व में आगे बढ़ती गई और एक निश्चित दूरी पर पहुंचकर जवाबी हमला किया गया। आखिरकार सफलता ने भारतीय सेना के कदम चूमे।

ब्रिगेडियर जोरावर चंद बख्शी के नेतृत्व में हाजी पीर की ओर बढ़ती सेना ने संघ पर कब्जा कर लिया था। दूसरी ओर से भारी हमले का सामना करते हुए जवाबी हमला करके

आखिरकार सर और लेड वाली गली पर भी तिरंगा फहरा दिया गया, जहां एक और ब्रिगेडियर जोरावर चंद बख्शी और मेजर रणजीत सिंह हाजी पीर की ओर कूच करने को तैयार थे, वहीं दूसरी ओर से आती सेना अभी पहुंची नहीं थी। लेकिन मौके की नजाकत को देखते हुए अब आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ब्रिगेडियर जोरावर चंद बख्शी ने सेना को आगे बढ़ने की मंजूरी दे दी। अब दुश्मन से सीधा सामना था। तकरीबन 1220 मीटर की चढ़ाई सामने थी। भारी बारिश का सामना करते हुए सेना आगे बढ़ी जा रही थी। ये एक मुश्किल मिशन था, क्योंकि पूरी पलटन दो दिन से भी ज्यादा समय के लिए इस तरह की परिस्थिति का सामना करते हुए आगे बढ़ी। तभी दुश्मन को भनक लगी और उसने हथियारों के मुंह खोल दिए। सेना ने जवाबी हमला कर उन्हें शांत कर दिया। तब तक शाम ढल चुकी थी और हाजी पीर तक अंधेरे में ही आगे बढ़ने का निर्णय लिया गया। ब्रिगेडियर जोरावर चंद बख्शी और मेजर रणजीत सिंह दयाल के साथ सेना मुख्य लक्ष्य हाजी पीर पास की ओर बढ़ रही थी। एक बड़ी चढ़ाई करने के बाद अब हाजी पीर तक पहुंचने के लिए रात का समय चुना गया। साथ ही एक और रणनीति बनाई गई और दुश्मन को दोनों ओर से घेरने के लिए पलटन को विभाजित किया गया। जैसे ही दोनों ओर से सेना हाजी पीर पहुंची, दुश्मन के होश उड़ गए। हड़बड़ी में उसने वार करने की कोशिश तो की, लेकिन नाकाम रहा। आखिर 28 अगस्त को हाजी पीर दर्रे पर भारतीय झंडा शान से लहरा रहा था। ये एक बड़ी रणनीतिक जीत थी, क्योंकि इससे घुसपैठ की गतिविधियों पर तो लगाम लगा ही, साथ ही भारतीय सेना के लिए आवागमन आसान हो गया। जहां पहले पूंछ से उरी के बीच सड़क की दूरी 282 किलोमीटर थी, वो अब मात्र 56 किलोमीटर में सिमट गई। बसाली, हाजी पीर दर्रे और कहुता पर कब्जा करने के लिए इस पूरे ऑपरेशन के दौरान ब्रिगेडियर जोरावर चंद बख्शी व्यक्तिगत रूप से सभी का मार्गदर्शन करने के लिए उपस्थित रहे। दुश्मन के तीव्र गोलाबारी से अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए वो सबसे आगे बने रहे। उनके उत्कृष्ट नेतृत्व, दृढ़ संकल्प और हर परिस्थिति में त्वरित कार्यवाही करने की क्षमता का ही नतीजा रहा कि सैनिकों में भी साहस का संचार हुआ। उनके इस अदम्य साहस के लिए उन्हें देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित किया गया।

सेना में आगे भी अपनी सेवाएं देते हुए ऐसे कई उदाहरण पेश करते हुए कई सम्मान प्राप्त करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल जोरावर चंद बख्शी सेवानिवृत्त हुए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उन्हें वैधानिक सेवानिवृत्ति आयु से आगे तकरीबन 3 वर्ष का विस्तार भी दिया गया। 24 मई 2018 को वो परिवार के सदस्यों के बीच मातृभूमि में लीन हो गए। ऐसे बहादुर सिपाही विरले ही होते हैं। हम उनके सामने नतमस्तक हैं।

विशेष जयमाला सैनिकों की शौर्य गाथा श्रृंखला में आज आप सुन रहे थे देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट जनरल जोरावर चंद बख्शी की शौर्य गाथा। शोध, आलेख और स्वर नेहा शर्मा का, प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, जय हिंद।

0: घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। आइए सुनते हैं कार्यक्रम साज और आवाज़।

0: हवा महल में आइए आज सुनते हैं गंगा प्रसाद माथुर की लिखी और निर्देशित नाटिका मूड।
1: आए हाय तोड़ डाल, अरे तेरा सत्यानाश है, सारा दूध बह गया।
2: ओहो, क्या शोर मचा रखा है। अरे भाई शन्नो, ए शन्नो, हद हो गई। एक घंटे से कोशिश कर रहा हूँ मगर चार लाइन नहीं लिख सका। मजाल है कि कोई काम इत्मीनान से करने दिया जाए। दो घड़ी की शांति मयसर नहीं है इस घर में।
1: शांति शांति शांति, ये भी कोई घर है जहाँ हरदम मरघट का सा सन्नाटा छाया रहता है? जरा कहीं खटका हुआ कि पर ले।
2: शन्नो
1: शन्नो नहीं, शांति शांति है मेरा नाम, समझे?
2: अरे समझ गया।
1: क्या समझ गए?
2: अरे यही कि तुम्हारा नाम शन्नो नहीं शांति है। और ये
1: और क्या? अरे कहते कहते रुक क्यों गए? और क्या?
2: कुछ नहीं, बस यही कि हमारे घर वाले भी कैसे कैसे नाम रखते हैं, फिर सुनते ही हंसी आती है।
1: क्या मतलब?
2: अरे मतलब यही कि जिसे आंखों से दिखाई नहीं देता उसका नाम रखा जाता है नैन सुखलाल, और जो सारी जिंदगी एड़ियां घिस घिस कर मरता है उसका नाम होता है चैन सुखदास। कुछ समझी?
1: मैं कुछ नहीं समझी।
2: अब देखो ना, मेरा नाम है अमीर चंद, है ना?
1: हाँ हाँ है।
2: और तुम्हारा?
1: शांति
2: शांति शांति और अमीर चंद।
1: इसमें हंसने की क्या बात है जी?
2: अरे हंसने की बात नहीं है तो और क्या है। अब देखो ना, ना तुम मैं अमीर हूँ और ना तुम। खैर छोड़ो, मेरा नाम अमीर चंद है ना, मगर जेब में भुनी भांग भी नहीं। मेरा नाम होना चाहिए था फकीर चंद या गरीब चंद। और तुम्हारा?
1: मेरा?
2: तुम्हारा नाम अगर शांति देवी की जगह क्रांति देवी होता तो कितना जचता।
1: हाँ हाँ ठीक है, ना जाने तुम कवियों को क्या बैर होवे है अपने घर वालों से। कितना ही अच्छा नाम रखे माँ बाप, मगर ये उसे बदल कर ही छोड़ेंगे। अच्छा खैर छोड़ो, मुझे क्या ये बताओ कि चीख चीख कर आसमान को क्यों सर पर उठा रहे थे?
2: मैं चीख रहा था? भाई वाह, ये भी खूब रही, उल्टा चोर कोतवाल को डांट।
1: आए लो, सुनो इनकी बातें, अब मैं चोर भी हो गई और आपको देखो बड़े आए हैं कोतवाल बनकर। सुबह से शाम तक दफ्तर में लोहा कूटते हैं और समझ

0: सकते हैं अपने आप को कोतवाल।
1: नो शन्नो, मेरा मतलब है शांति जी, लगी फिर तुम वही उल्टी सीधी बातें।
0: उल्टी सीधी की क्या बात है, नहीं पीटते रहते तुम दिन भर दफ्तर में लोहे से लोहा।
1: अरे ठीक है ठीक है ठीक है, तुम एक टाइपिस्ट को लोहा कूटने वाला कहकर मुझे चिढ़ा सकती हो, मगर देख लेना देख लेना, एक दिन इसी टाइपिस्ट के नाम का साहित्य की दुनिया में तहलका मचा होगा। आज के इस लोहा कूटने वाले का लोहा सारे संसार को मानना पड़ेगा, समझी? मगर छोड़ो, तुम क्या समझोगी, भैंस के आगे भी बजाने से भी क्या फायदा है। अब तो तुम भगवान के लिए यहाँ से जाओ और मुझे कुछ लिखने पढ़ने दो।
0: अजी लिखो खूब, काले करते रहो कागज। मैंने कौन सी तुम्हारी कलम पकड़ रखी है? हाँ नहीं तो, एक तो खुदावास थी, उस पर कभी मुझे चोर बना रहे हैं तो कभी मुझे भैंस।
1: ओहो, बड़ी गलती हो गई शांति देवी जी, जो मैंने तुम्हें आवाज दी, अब मुझे उसके लिए माफी दे दो, मेरा मूड खराब मत करो।
0: हाँ हाँ, मैं तो जानू हूँ मुझसे बात करने में तुम्हारा मूड खराब ही होता है। ओ, पर कान खोलकर सुन लो, मेरे भी काले कुत्ते ने नहीं काटा कि बेकार में तुमसे अपने भेजे के ठीकरे करूँगी। मैं जा रही हूँ पड़ोस में धनों की माँ के पास, तुम बैठे रहो इन कागजों में सर दिए।
1: हाँ, हाँ बाबा जाओ, जरूर जाओ, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। सुनो,
0: कहो क्या है, अब क्या बात है?
1: अरे मेरी कोई चिट्ठी विट्ठी तो नहीं आई?
0: नहीं। अरे हाँ याद आया, मेरे पिताजी के पास से एक आदमी आया था।
1: तुम्हारे पिताजी के पास से?
0: जी हाँ, हमारे गांव से।
1: अरे आया होगा, मुझे इससे क्या मतलब है, मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि मेरी कोई चिट्ठी तो नहीं आई। तुम भी अजीब हो, कहो खेत की तो सुने खलियान की।
0: खलियान का क्या जिक्र है जी, मैं भी तो खेती की बात कर रही हूँ।
1: खेत की बात, क्या मतलब?
0: पिताजी ने कहला भेजा है कि आजकल चने की फसल है, खेती लहला रही है, दो चार रोज के लिए गांव आ जाओ और खेतों से ताजे ताजे चने तोड़कर खाओ।
1: खेतों से ताजे ताजे चने तोड़कर खाओ, वाह वाह वाह, क्या कहने, बहुत खूब। अरे तुम्हारे पिताजी ने क्या मुझे बैल भैंस बकरा ऊंट समझ रखा है कि खेत खेत चने चरता फिरूं मैं?
0: अरे मैं कहती हूँ आपको खेतों में चने तोड़कर खाना अच्छा नहीं लगता?
1: बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे तुम्हारे खेतों और चनों से कोई दिलचस्पी नहीं है, बख्शो मुझे, मुझे लोहे के चने ही चबाने दो। अरे मेरी किस्मत में तो यही लिखे हैं।
0: आपको तो हर वक्त अपनी किस्मत का ही रोना रहता है। खैर आप जाए या ना जाए, मैं तो जरूर जाऊंगी, वरना पिताजी नाराज हो जाएंगे।
1: हाँ, शौक से तुम जरूर जा सकती हो।
0: और हाँ मुझे याद आया, पिताजी ने उस आदमी के हाथ असली घी की एक हांडी और ताजे गुड़ की दो भेलियाँ भी भेजी हैं।
1: ओहो मैं कहता हूँ तुम्हारे पिताजी का इरादा क्या है, आखिर चाहते क्या है वो? मुझे बनिए की दुकान खुलवानी है जो रोज रोज ये असली घी और गुड़ भेजते रहते।
0: इसमें क्या बुरी बात है?
1: बात बुरी हो या भली हो इससे बहस नहीं है, पर उन्हें लिख दो कि मैं असली घी खाने का आदि नहीं हूँ, जब से पैदा हुआ हूँ वनस्पति घी खाया है और मरते दम तक यही खाता जाऊंगा, असली घी भेज भेज कर मेरी आदत खराब न की जाए, असली घी खाने से मेरा तो गला खराब हो जाता है। ये गुड़ की थैलियाँ, अरे तौबा तौबा, उनकी तरफ देखने से तो मुझे मतली आने लगती।
0: हाय हाय, इतना अच्छा गुड़ तुम्हें कभी नसीब भी हुआ है? जरा चलकर तो देखो जी, तुम्हारे शहर में तो ढूंढे से भी नहीं मिलेगा इतना अच्छा गुड़।
1: अरे मेरा दिमाग खराब नहीं है श्रीमती जी, के शहर में मैं जाकर गुड़ ढूंढता फिरूं?
0: ओहो तुम तो चौमुखे चले हो जी, मैंने कब कहा कि बाजार में जाकर गुड़ ढूंढो, मैंने तो एक बात कही थी, पर तुम तो लगे है लड़ने को ही बैठे हो। ना जाने पिताजी की भी क्या ममता की रग फड़के हैं जो तुम जैसे नाशुक्रों के लिए इतनी अच्छी चीजें भेजते हैं।
1: भगवान,
0: अब उन्हें कोई कैसे समझाए कि उनकी मोहब्बत की यहाँ पर यह कदर होती है।
1: हो हो हो, अब ये शुरू हो गए ना तस्वे बहने। अरे उनकी मोहब्बत से कौन कमबख्त इनकार कर रहा है, लेकिन मोहब्बत जाहिर करने के लिए ये असली घी, ये ताजा गुड़, ये तिल के लड्डू, गन्ने के रस की खीर, मैं कहता हूँ इन सब चीजों की क्या जरूरत है। अरे सच कहता हूँ शन्नो रानी, तुम्हारे पिताजी के लिए मेरे दिल में जो इज्जत है, जो एहतराम है।
0: बस बस, मैं सब जानती हूँ, बंद कीजिए ये किस्सा नहीं तो।
1: हाँ, मेरा भी यही ख्याल है श्रीमती जी, कि इस किस्से को यहीं खत्म कर दिया जाए। क्यों खामखा मेरा भी मूड खराब हो और तुम्हारा भी?
0: देखो जी, एक बात आज तुमसे मैं साफ साफ कह देना चाहती हूँ, ये तुम अपना मूड चाहे खराब करो चाहे अच्छा, पर मेरे मूड के खराब होने की बात मत किया करो।
1: मूड?
0: भगवान ना करे कि मेरा मूड खराब हो।
1: मूड? अरे मूड नहीं शन्नो रानी, मैं मूड की बात कर रहा हूँ। लेकिन तुम मूड को क्या समझो, अरे अगर ये समझ लेती कि मूड क्या चीज है तो अच्छे ही दिन ना होते।
0: अजी नहीं समझती हूँ तो समझा दो ना, अगर पढ़ी लिखी नहीं तो क्या, इतनी कम अकल तो नहीं हूँ कि कोई चीज समझाई जाए और मैं समझ भी ना पाऊँ।
1: अच्छा अच्छी बात है, तो बैठो आज तुम्हें समझा ही दूं कि मूड क्या होता है।
0: हाँ हाँ समझाओ कि मूड

0: क्या होता है
1: मूड? मेरा मतलब है मूड, मूड दिमाग की वो स्थिति होती है कि अगर वो बिगड़ जाए तो।
0: अच्छी, यही तो मैं कह रही थी, मूड दिमाग के बिगड़ने का अंग्रेजी नाम है। तुम जिसे अंग्रेजी में मूड खराब होना कहो, हम उसे अपनी भाषा में मूड बिगड़ना कहें।
1: नहीं, नहीं नहीं नहीं भाई, नहीं नहीं, तुम पूरी बात तो सुनती नहीं हो। मूड को अगर आसान और सरल शब्दों में तबीयत का रुझान या मन की वो स्थिति कह सकते हैं कि जब हम एकाग्रचित होकर अपने मन को बड़ी लगन और शौक के साथ किसी एक कार्य विशेष की ओर केंद्रित कर लें।
0: ओहो,
1: अब जैसे फर्ज करो तपती दोपहरी में हम तुम ऊपर बरसाती में बैठे हो, मैं तुम्हें एक टक निहार रहा हूँ और तुम पसीनों में तर बतर बैठी अपनी

0: नहीं हो। मूड को अगर आसान और सरल शब्दों में तबीयत का रुझान या मन की वो स्थिति कह सकते हैं कि जब हम एकाग्रचित होकर अपने मन को बड़ी लगन और शौक के साथ किसी एक कार्य विशेष की ओर केंद्रित कर लें।
1: ओहो।
0: अब जैसे फर्ज करो तपती दोपहरी में हम तुम ऊपर बरसाती में बैठे हो, मैं तुम्हें एक टक निहार रहा हूँ और तुम पसीनों में तर बतर बैठी अपनी धोती के पल्ले से हल्के हल्के अपने को हवा कर रही हो, तभी मैं कहूं शन्नो जी तुम इस वक्त मुझे बड़ी लुभावनी लग रही हो, जी चाहता है तुम्हारी पेशानी पर चमकने वाले पसीने के इन पिल्लौरी मोतियों की माला गूंथ कर तुम्हें पहना दूं। तुम्हारे पल्लों के हिलाने से जो भीनी भीनी हवा निकल रही है इसमें आओ हम तुम मुड़कर आसमानों को छू जाएं। तो जानती हो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि मैं इस वक्त मूड में हूँ, रोमांटिक मूड।
1: कौन समझदार आदमी तुम्हारी बातें सुनकर नहीं कह देगा कि इनका मूड फिर गया है।
0: ओ, अभी तो नहीं, लेकिन अगर तुम्हारा साथ रहा तो जरूर एक दिन ये मूड फिर जाएगा। जाओ बाबा जाओ, तुम नहीं समझ सकोगी कि मूड क्या होता है। मैं हारा तुम जीती महारानी।
1: मैं तो पहले ही कहती थी कि तुम कुछ समझा ही नहीं सकते हो। रही बात मूड फिरने की, वो तो भगवान ही जाने है कि किसका मूड फिरेगा, तुम्हारा या मेरा। पर तुम अपना मूड अच्छा करते रहो, मैं तो कुछ दिन के लिए अपने पिताजी के पास गांव जाके रहूंगी।
0: हाँ जरूर जाओ, मेरी तरफ से पूरी इजाजत है श्रीमती जी।
1: पर खाली हाथ थोड़े ही जा सकूं हूँ, कुछ रुपए पैसे का भी तो बंदोबस्त होना चाहिए। लाओ निकालो रुपए, मैं आज ही चली जाऊंगी।
0: लेकिन मेरे पास तो अभी कुछ भी नहीं है श्रीमती, यही कोई बस 5-7 रुपए पड़े होंगे, इसमें पूरा महीना निकालना है।
1: ये तो मैं जानती हूँ, मेरे नाम के तुम्हारे पास कभी पैसे नहीं होते। पर अगर मुझे भेजना है तो रुपयों का इंतजाम करना ही होगा।
0: अरे इंतजाम तो मैं सब कर दूं, लेकिन तुम करने दो तब ना। अब सुबह से बैठा हूँ, एक लाइन नहीं लिख सका। अरे अगर तुम मुझ पर कृपा करो भवानी तो रुपयों के ढेर लगा दूं।
1: अच्छा तो क्या जो तुम लिखने जा रहे हो उसके रुपए मिलेंगे?
0: जी हाँ, वरना मेरा क्या दिमाग खराब हुआ है जो कागज काले कर रहा हूँ।
1: अच्छा तो लो मैं जाती हूँ, तुम लिखो, पर जब रुपए मिले तो मुझे गांव जरूर भेज।
0: अरे जरूर भेज दूंगा, जरूर भेज दूंगा, लेकिन इस वक्त तो जाओ यहाँ से।
1: जाती हूँ जाती हूँ, पर हाँ कब तक आएंगे रुपए, कब तक भेजोगे मुझे गांव?
0: अरे बस जरा एक पब्लिशर फंस जाए।
1: ये कब तक फंसेगा तुम्हारा पब्लिशर?
0: पब्लिशर बस ये उपन्यास पूरा हो जाए, समझ लो पब्लिशर।
1: कब तक पूरा होगा ये उपन्यास?
0: बस बस बस शुरू होने की देर है, पूरा हुआ समझो।
1: पर कब शुरू करोगे?
0: अरे कोई अच्छा सा थीम मिल जाए तो शुरू कर दूंगा।
1: पर ये अच्छा सा थीम कब तक मिलने की उम्मीद है तुम्हें?
0: थीम की बात तो बस वही मूड पर है शन्नो रानी, जब जरा मूड आया कि थीम सूझा।
1: मूड फिर वही कमबख्त मूड।
0: अरे मूड नहीं शन्नो जी, मूड मूड।
1: मैं सब जानती हूँ, जिसे तुम अंग्रेजी में मूड कहो हो उसे हम अपनी भाषा में मूड मूड कहते हैं।
0: हो, अरे अब तुम्हें कैसे समझाऊं?
1: अजी बस समझा लिया, जो बात तुम खुद नहीं समझते हो मुझे क्या समझाओगे। अच्छा मैं चली रसोई में, वरना कहोगे मूड खराब।
0: अरे हाँ जाओ, वरना सचमुच मेरा मूड खराब हो जाएगा।
1: मूड नहीं मूड।
0: अरे हाँ बाबा मूड मूड मूड, तुम जीती मैं हारा, मूड नहीं।

गंगा प्रसाद माथुर की लिखी और निर्देशित ये नाटिका अभी आप सुन रहे थे। अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: फिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑन मार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। हिमाचल प्रदेश नगर निकाय चुनाव में भाजपा ने 4 में से 3 नगर निगमों में जीत हासिल की। म्यांमा में एक इमारत में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत। भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष युगल खिताब जीता। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की और उनके प्रेरणादायक कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने केरलम के साजी वलाशेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के अलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते हैं। जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में बस्ती के आकाश गुप्ता के प्रयासों का भी उल्लेख किया जिन्होंने अपने मित्रों के साथ मनोरमा नदी को साफ करने का अभियान चलाया।
1: बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी।
0: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु की शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए रोज 1 रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे।
1: तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरिजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतिस्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड

0: बनाए, मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: श्री मोदी ने देश की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के सरकार के प्रयासों पर भी बात की। प्रधानमंत्री ने नीदरलैंड की हाल ही की अपनी यात्रा का उल्लेख किया, जहां एक विशेष समारोह में चोल काल के प्राचीन ताम्रपत्र भारत को वापस किए गए। प्रधानमंत्री ने नमामि गंगे पहल के अंतर्गत संरक्षण के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की एक नहर में फंसी गंगा डॉल्फिन को भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाओ एम्बुलेंस की मदद से सफलतापूर्वक बचाया गया है। देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की एक टीम तैनात की है। बोर्ड ने कहा कि वो अपने सेवा प्रदाता के ऑनमार्क पोर्टल में पाई गई खामियों पर कड़ी निगरानी रख रहा है, जिन्हें हाल ही में सार्वजनिक रूप से उजागर किया गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने कहा कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का एक दल पिछले कुछ दिनों से इन प्रणालियों को मजबूत करने और पोर्टल को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए काम कर रहा है। बोर्ड ने बताया कि पहचानी गई खामियों को दूर कर लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के 4 नगर निगमों में से 3 में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई।
2: हिमाचल प्रदेश के नगर निगम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए धर्मशाला, सोलन और मंडी नगर निगमों में कब्जा जमाया है। वहीं पालमपुर नगर निगम में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। धर्मशाला में भाजपा ने 17 में से 11 वार्ड जीते हैं, जबकि कांग्रेस को 5 वार्डों में सफलता मिली है। सोलन में भाजपा ने 10 और कांग्रेस ने 6 वार्ड जीते। मंडी में भाजपा ने 14 में से 12 वार्डों में जीत दर्ज कर दबदबा बनाया, जबकि कांग्रेस को 1 वार्ड मिला। पालमपुर में कांग्रेस ने 15 में से 11 वार्ड जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया, जबकि भाजपा को 4 वार्ड मिले। इस बीच जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनावों की मतगणना भी पूरी हो गई है। ये चुनाव पार्टी चिन्हों पर नहीं लड़े गए थे, फिर भी भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने समर्थित उम्मीदवारों की जीत का दावा किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 14454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। चीन की सीमा से लगभग 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित ये क्षेत्र सशस्त्र गुट तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी के नियंत्रण में है। ये गुट म्यांमार की केंद्रीय सरकार के खिलाफ संघर्ष में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे थे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है जिसमें कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और उद्योगपति शामिल हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष के तकनीकी बदलाव के दौरान भारत प्रौद्योगिकी लेने वाले की बजाय प्रौद्योगिकी का नेतृत्व करने वाला बनकर उभरा है। उन्होंने दूरदर्शन न्यूज के साथ एक पॉडकास्ट

0: में आज ये बात कही। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत तेजी से वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी के विकास में भागीदारी कर रहा है और नवाचार की दिशा में भविष्य तय कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश ने अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में विशेष प्रगति हासिल की है। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए सामूहिक रूप से आवश्यक वैज्ञानिकी और तकनीकी आधार बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एआई तकनीक स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, संचार और जनसेवा के क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी शक्ति बनकर उभर रही है। उन्होंने कहा कि भारत कुशलता में सुधार करने के लिए एआई युक्त प्रणाली और मानव विशेषज्ञता के बीच समन्वित तरीका अपनाकर चल रहा है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: आवासन और शहरी कार्य तथा विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने त्रिपुरा में शहरी स्वच्छता और विद्युत अवसंरचना को मजबूत करने के लिए कई पहलों की घोषणा की है। अगरतला में त्रिपुरा के विद्युत मंत्री रतन लाल नाथ के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को उन्नत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि राजनीतिक नेतृत्व सार्वजनिक जीवन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है और रचनात्मक आलोचना निष्पक्ष और संतुलित होनी चाहिए। उन्होंने ये बात केरलम के कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह के उद्घाटन के दौरान कही। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर में सेना ने पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर स्थिति द्वारों पर आधार के जरिए प्रवेश और निकास प्रणाली की शुरुआत की है। इससे सीमा के पास रहने वाले निवासियों की आवाजाही सुगम होगी। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस जीत पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस का मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटंस ने 17वें ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 115 रन बना लिए हैं। फ्रांस में चैंपियंस लीग में पेरिस सेंट जर्मेन की आर्सेनल पर जीत का जश्न मना रहे फुटबॉल प्रशंसकों और पुलिस के बीच हुई झड़पों में कुल 219 लोग घायल हो गए हैं। मौसम विभाग ने कल गुजरात, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, दक्षिण भीतरी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तूफान की संभावना है। अगले दो दिनों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान में भी तूफान का अनुमान है। मंगलवार तक तेलंगाना, कोंकण, गोवा, सौराष्ट्र में भी इसी तरह की स्थिति रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला

0: जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपके लिए।

0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
1: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
1: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
1: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। वो बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर कर

दोस्तों, फिल्मकार राज खोसला के कृतित्व की बातों का जिक्र जब होता है तो तमाम लोग उन्हें बतौर निर्देशक, निर्माता या पटकथा लेखक के रूप में जानते हैं, लेकिन राज खोसला एक प्रशिक्षित क्लासिकल सिंगर भी रहे थे। 31 मई 1925 को पंजाब के लुधियाना में जन्मे राज खोसला बहुआयामी प्रतिभा के स्वामी थे। वो जब गायक बनने की चाह लेकर तत्कालीन बॉम्बे आए तब वो ऑल इंडिया रेडियो में बाकायदा म्यूजिक स्टाफ के रूप में

लीजेंड फिल्मकार और जाने माने अभिनेता गुरुदत्त के सहायक रहे राज खोसला ने 1956 में जो फिल्म निर्देशित की वो थी फिल्म सीआईडी।

पृथ्वीराज खोसला को आरंभ से ही वुमेन्स डायरेक्टर कहा जाता रहा है। दोस्तों, फिल्में जो भी हों, लेकिन नारी के चरित्र को राज खोसला ने बड़ी महत्ता दी है अपनी फिल्मों में। 1964 में उन्होंने निर्देशित की फिल्म वो कौन थी, जिसमें अभिनेत्री साधना को मिस्ट्री गर्ल कहा गया था।

1966 में आशा पारेख अभिनीत फिल्म बनाई दो बदन। इस फिल्म के लिए अभिनेत्री सिमी गरेवाल को फिल्म फेयर का बेस्ट सपोर्टिंग

0: 1969 में राज खोसला निर्देशित फिल्म आई थी दो रास्ते। अभिनेत्री मुमताज के अभिनय को भला कौन भुला सकता है।
1: नहीं

राज खोसला निर्देशित 1978 की फिल्म थी मैं तुलसी तेरे आंगन की। दोस्तों इस फिल्म के लिए अभिनेत्री नूतन को मैच्योर एज में फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी प्राप्त हुआ था।

जाने माने फिल्मकार और सदाबहार हीरो देवानंद ने राज खोसला की प्रतिभा को पहचाना था शुरू में, और राज खोसला के डायरेक्टर बनने का ये सिलसिला शुरू हुआ था 1954 में बनी फिल्म बिलाप के साथ। इस फिल्म के हीरो थे देवानंद और नायिका थी गीता बाली, और इसके बाद राज खोसला ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।

चूंकि राज खोसला शास्त्रीय संगीत के जानकार थे, क्लासिकल सिंगर थे, यही वजह है कि अपनी फिल्मों की नायिकाओं के किरदार की महत्ता बनाए रखने के साथ साथ ही उनकी फिल्मों का संगीत भी बेहतरीन होता था।

राज खोसला ने अपनी शैली से हटकर, टाइल से हटकर भी चंद फिल्मों का निर्देशन किया दोस्तों। इसमें प्रमुख है 1958 की फिल्म 16वां साल।

1971 में डकैत ड्रामा जैसी फिल्म बनाकर राज खोसला ने धूम मचा दी थी। याद होगा आपको, वो फिल्म थी मेरा गांव मेरा देश।

ऋतुराज खोसला ने अपने फिल्मी करियर में लगभग 21 फिल्मों का निर्देशन किया, जिसमें अमिताभ बच्चन, जीनत अमान और शत्रुघ्न सिन्हा अभिनीत फिल्म भी शामिल है, और ये फिल्म है दोस्ताना।

0: चोरी हो चोरी ताली पलक पिया मूरी।
1: राज खोसला निर्देशित मैं तुलसी तेरे आंगन की फिल्म को 1978 का बेस्ट मूवी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। दोस्तों, राज खोसला ने अपनी हर एक फिल्म के संगीत को बेहतर से बेहतरीन बनाए रखा। 9 जून 1991 को राज खोसला ने अपने जीवन की अंतिम सांस मुंबई में ली।

वो तो यकीनन इस दुनिया में नहीं है, लेकिन राज खोसला की फिल्में और उन फिल्मों का गीत संगीत हमेशा उनकी यादों को तरोताजा बनाए रखे।

0: क्या।
1: तो ये था कार्यक्रम आज के फनकार, केंद्रित था अपने दौर के जाने माने फिल्मकार राज खोसला पर। कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग दिया आकांक्षा सिंह ने, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। और अब दीजिए आज के इस प्रोग्राम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।
2: आज के फनकार।

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। मन की उड़ान धरती और आसमान के परे है। मन की उड़ान शहरों, समंदरों, पहाड़ों और घाटियों के पार जाती है। खींचा चला जाता रहा मन तुम्हारी तरफ, तुम्हारे आने से बहुत पहले से, बहुत पहले से तुम्हारा था ये मन तुम्हारी तरफ। खींचा चला जाता रहा सदियों से, सदियों के सफर में तुम हो हमारे मन।

तुम्हें देखना सिर्फ तुम्हें देखना नहीं है, जब तुम्हें देखते हैं हम तो अपने सपनों को जीते जागते देखते हैं। हम देखते हैं तुम्हारी आंखों की चमक, तुम्हारे बिखरे बालों की अदा, तुम्हारा अपने ख्यालों में खो जाना, तुम्हारा गुनगुनाना, होठों में उंगली दबाकर दूर कहीं देखते चले।

कहीं कोई आवाज नहीं हुई, कुछ टूटा जरूर, पर भी आवाज दिल टूटने की आवाज नहीं होती, दिल बेआवाज टूटता है। चेहरों पर नकली मुस्कान का लेबल चिपकाए जीते रहते हैं लोग, एहसास नहीं होने देते कि उनका दिल टूटा है।

कुछ कहना नहीं होता है, न ही कुछ सुनना जरूरी है। किसी बुजुर्ग ने जब कहा था लफ्ज बातचीत का सबसे कमजोर जरिया है, तब शायद ये बात समझ में नहीं आई थी। पर वक्त के साथ समझ गए हम कि सब कुछ भाषा में नहीं कहा जा सकता। सब कुछ होंठों पर लाना जरूरी नहीं है। एक अदृश्य सा पुल है जो एहसास बना

तुम्हारे साथ मौसम सुहानी हो जाते हैं, तुम्हारे साथ बारिश गुनगुनाती है, तुम्हारे साथ ठंड बहुत अलग है और तुम्हारे साथ गर्मियां भी चमकीली हैं। ये बारिश तुम्हारे बिना बस बरसता हुआ पानी है। पानी और बारिश में फर्क होता है।

समय सिकुड़ जाता है कभी और कभी फैल जाता है। विज्ञान इसे भली न माने, पर देखो ना तुम्हारे साथ के लम्हे कितने कम हैं और तुम्हारे बिना कितना लंबा हो जाता है वक्त। वक्त का ये सिकुड़ना और फैलना बेचैन करता है हमें, पर थाम भी तो नहीं सकते हम वक्त को। ये वो मुसाफिर है जिसे बस चलते ही जाना है।

दुनिया की रीत है, प्यार की राहों में दुनिया अड़चनें खड़ी करती है, पर प्यार करने वाले तमाम रास्तों, रस्मों और तरीकों से अलग अपने नए रास्ते तैयार करते हैं। प्यार की राहें बस राहें होती हैं उनके लिए, इन पथरीली राहों पर सुनहरी जिंदगी उनका इंतजार कर

आज का छाया गीत इतना ही। इजाजत दीजिए यूनुस खान को। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी जोधपुर का एफएम सेंसिटी चैनल है। एफएम बैंड 102.1 MHz पर इस समय रात्रि के 11 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे पहले हिंदी उसके बाद अंग्रेजी में समाचार, जिन्हें हम दिल्ली के अंदर से रिले करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने केरल के शाजी वाला शेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
2: केरलम के अलुवा में साजी वला शेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वला शेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में

0: बदलाव लाया जा सकता है।
1: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरविंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्वी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
0: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के चार नगर निगमों में से तीन में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने धर्मशाला, सूरन और मंडी नगर निगमों में जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस ने पालमपुर नगर निगम में जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीट पर चुनाव लड़ेंगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी थी, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना UBT 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। शेष नासिक और नांदेड़ सीटों पर अभी विचार विमर्श जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। अहमदाबाद में IPL क्रिकेट के फाइनल में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 156 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 14 ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। Prime Minister Narendra Modi today lauded several citizens for their outstanding contributions towards nature conservation, solving local problems and other social causes, highlighting their inspiring initiatives and achievements. Addressing the nation in his monthly program Mann Ki Baat on Akashwani, Mr. Modi spoke about Saji Valasheril of Keralam, who runs a free swimming club that has helped more than 15,000 people learn swimming. Highlighting India's sporting achievements, Mr. Modi applauded record-breaking performances by emerging athletes at the National Senior Athletics Federation competition held in Jharkhand's Ranchi. Expressing concern over the prevailing heatwave conditions, the Prime Minister urged people to follow official advisories and take precautions to stay safe. He also encouraged the consumption of traditional summer beverages.
0: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है।